0: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। खूबसूरत दिन तो है यार, इतनी फ्रीजिंग ठंडी वाली चिल मॉर्निंग निकली थी आज, और उसके बाद आपने ऑफ कोर्स यू नो जो सुबह आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ओवर हियर हैव एक्सपीरियंस द फ्रोजन कार। वेल यस, मैं जब सुबह उठा था तो सुबह उठने के बाद मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की, वो थी कार इतनी ज्यादा फ्रीज हो चुकी थी, जो मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज यूजुअली अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है दैट सुबह सुबह कार के हैंडल्स जो हैं वो सब जाम हो जाए, लेकिन आज जब जाम हुआ देखा मैंने तो आई वॉज लाइक दैट मीन्स दैट बहुत ही बढ़िया ठंड पड़ी होगी रात में। ऑब्वियसली हमारे रूम में इनसाइड तो हीट पंप चालू था तो मुझे इतना पता नहीं पड़ा, बट सुबह जब मैं बाहर गया तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि यार इतनी ठंडी थी। वैसे आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ठंडेपन का जो मॉर्निंग आपको फ्रीजिंग मॉर्निंग हुई है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 5599 पे, या फिर थोड़ी देर में आप 0800 004866 पे कॉल भी करेंगे, वहां उसके जरिए भी मुझे बता सकते हैं। पर यस, मेरा नाम केतन, मैं हूँ 3 बजे तक यहाँ पे, अभी से लेके बहुत सारी बातें करेंगे, गपशप करेंगे। होमसिक रेमेडीज के लिए आप मुझे कुछ भेजिए, कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा मुझे भेजते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं आपकी बातें जो आप फील करते हैं बीइंग हियर फ्रॉम नॉट योर होम टाउन। सो यस, क्या चीजें बताइए मुझे,
1: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और बात करेंगे होमसिक रेमेडीज की। एक मैसेज आया मुझे, काइंड ऑफ वेरी सिमिलर, यार ये वही मेरे को राज भाई ही हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया है। काफी एक्टिव है। वैसे यहाँ पे उस पर टिप्पणी देने के लिए आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 0800-004-866 पे, 0800-004-866। जी हाँ, वेल यस, क्योरा केतन, बैक होम इन इंडिया आफ्टर डिनर माई फैमिली एंड नेबर्स वुड ऑलवेज सेट आउट ऑन द बालकनी और टेरिस ड्रिंकिंग चाय एंड चैटिंग विद एनीवन वॉकिंग बाय। माई फीजियन फ्लैटमेट सेज इन फीजी इवनिंग आई स्पेंड सिटिंग ऑन द पॉट कॉलिंग आउट टू नेबर्स एंड जस्ट एंजॉइंग द कूल ब्रीजी टुगेदर। बट दे हियर इन ऑकलैंड एज सून एज द सन गोज डाउन एवरी सिंगल हाउस शट्स इट्स कर्टन, lock the door and the whole neighborhood turns into the ghost town. Sitting inside looking at the silent dark street makes us miss that casual neighborhood vomit so much. How do we beat this suburban isolation homesickness? Well, yahan pe main chahunga ki is pe jawab mujhe call karke bataya jaye taki raj bhai ko iska jawab mil sake. 0800-004-866 pe main is pe koi tippni nahi dunga। यहाँ पे मुझे 11 साल हुए हैं, 12th year इज रनिंग राइट नाउ, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम योर फीडबैक। लाइक आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, इसका सुझाव क्यों है। बट सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ। सो जल्दी से फ़ोन उठाइए 0800-004-866 पे। क्यों यहाँ पे शाम होते ही लोग अपने अपने मी टाइम में घुस जाते हैं। यहाँ पे शाम के बाद का जो टाइम है तो वो मी टाइम क्यों माना जाता है। आई मीन द होल डे यू आर देयर इन द ऑफिस, यू स्पेंड अ वेरी गुड टाइम एंड देन इन द इवनिंग यू जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, विच इज़ गुड। बट जैसे इंडिया में होता ना, अड़ोस पड़ोस से बात करने चले गए या फिर दोस्तों से बात करने चले गए, तो ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे। फोन उठाइए और मुझे बताइए। वैसे अगर यहाँ पे कोई है जो मुझे फोन करना चाहता है तो जल्दी से मुझे फोन उठाइए और फोन करिए मुझे 0800-004-866 पे। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक कि यहाँ पे शाम होते ही क्यों बाहर कोई नहीं आता एंड दे जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड मी टाइम। सो यस, जल्दी से आप फोन करिए 0800-004-866 पे और बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपके कॉल्स का। बट यस, एट द सेम टाइम मैं और भी चीजें बताऊंगा कि यू नो क्या कुछ हो रहा है एंड ऑल रिगार्डिंग द यू नो एनवायरनमेंट बाहर। सॉरी माय बैड, मैं एकदम से, क्योंकि किसी का मैं कॉल आया था, मैं कॉल उठाने जा रहा था, वो कॉल टच नहीं हो रहा था, शायद यहाँ पे टच का कोई दिक्कत हुआ था बट उठा नहीं पाया फॉर श्योर। बट यस, मैं और भी चीजों की बात बताऊंगा। 0800-004-866 is the number जहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। Let's pick up the call. Hello.
1: Hello, Ketan. How are you?
0: Good. How are you? किससे बात हो रही है?
1: Ketan, मेरा नाम आयुष है, मैं ऑकलैंड से बोल रहा हूँ। आपका भी रेडियो सुन रहा था, थोड़ा should give you call.
0: अरे क्या बात है आयुष भाई, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया, आप कैसे हो?
0: ये आयुष भाई, मैं जस्ट टू मेक इट क्लियर, अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल आया था शायद किसी का, ये द बेनाम्स वाले आयुष तो नहीं लग रहे?
1: नहीं, ये वो नहीं है, वो बेनाम वाला सुन के ही मैंने कॉल किया है कि उनका कॉल आपसे टच पैड में कोई इशू था, आपने अटेंड नहीं किया, कर नहीं पाए, तो थोड़ा शुड गिव इट ट्राई।
0: व्हाई नॉट, चलिए आपका ट्राई भी देखो लग गया है, बताइए। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक।
1: सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मी टाइम का मतलब है क्योंकि यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। यू कैन नॉट कॉल एनीवन और से कि यार मुझे मिलना है, हम मिलते हैं, बाहर चलते हैं। सबको होता है घर आए हो थक के, ठीक है, व्हाई नॉट स्पेंड टाइम विद द फैमिली।
0: पर एक चीज ऐसा नहीं, डोंट यू थिंक,
1: यू कैन बाइक उठाओ, एक्टिवा उठाओ, यू कैन गो एनी टाइम। यहाँ पे यू हैव टू आस्क देम आर यू फ्री और कैन वी जॉइन और कैन वी कम फॉर ए पार्टी और समथिंग। इसलिए मुझे लगता है कि मी टाइम ज्यादा जरूरी है।
0: राइट, बट डोंट यू थिंक, आप इंडिया से राइट?
1: हाँ जी,
0: आप इंडिया से हैं राइट?
1: हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ।
0: सो मतलब डोंट यू थिंक दैट इंडिया में लोग ज्यादा काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स कंपेयर टू न्यूजीलैंड, राइट? तो वहां पे इतने 10 से 12 घंटे काम करने के बाद स्टिल पीपल हैव एनर्जी टू गो आउट टू सी द फ्रेंड्स. डजंट मैटर वो वीकेंड है या नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों? यू नो दैट आपने अगर 8 बजे या 9 बजे काम शुरू किया है, फिक्स 5 बजे बंद हो जाता है. यहाँ पे ओवर टाइम हार्डली अपन सुनने को मिलता है, बट स्टिल रेस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वांट टू स्पेंड विद देयर फैमिली, विद देयर हाँ कंप्लीटली विद देयर फैमिली.
1: तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे ना, इवन इवन अगर आप 10 बजे भी फिनिश कर रहे हो, आपके पास इनफ टाइम है. आई डोंट नो कैसे है, मतलब दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे टाइम ही नहीं है. मेरा फ्रेंड रहता है मेरे घर के पास, आप टू कॉल हिम कि भाई तू फ्री है, वहां पे यू कैन पिक योर बाइक, यू कैन गो एनी टाइम, लाइक यस लेट्स गो. यहाँ पे मुझे लगता है टाइम ठीक है, टाइम तुम्हारे पास, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, बट स्टिल देयर इज समथिंग व्हिच क्लिक कि यार अंदर रहो, ठंड बहुत है, क्या करना है बाहर जाके,
0: राइट?
1: अंदर मूवीज देख, नेटफ्लिक्स एंड एंजॉय इट. दिस इज व्हाट माय थॉट्स आर.
0: मुझे ना एक्चुअली ना एक खुरापाती एक बात आई है. मेरे को ऐसा लगता है, पता है क्या, इंडिया में आपकी शादी नहीं हुई थी, यहाँ पे आपकी शादी हो गई है. इसलिए टाइम का कम डिफरेंस है. यार देखो इंडिया में, डू यू थिंक आप वो जो बाइक उठाने वाली बातें हैं वो यहाँ पे कर सकते हो? डू यू थिंक, मान लो आपके पास हेलमेट है, सब कुछ है,
1: अगर अगर आप मुझे परमिशन दे दो कि एक्टिव और बाइक, यू कैन कैरी एक्टिव और बाइक, मैं हर रोज आपके घर आ जाऊंगा.
0: मतलब परमिशन, किसकी परमिशन जी? आपको मेरी,
1: काउंसिल की, गवर्नमेंट की, कि आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है.
0: तो वो उन्होंने कब मना किया?
1: सर बिना लाइसेंस के चला नहीं सकते ना.
0: हाँ लेकिन अंडर 50 वाले, आपके पास कार लाइसेंस है तो आई एम प्रीटी श्योर आप अंडर 50 सीसी तो चला सकते हो.
1: सर मैं आप कितने बजे फ्री हो? मैं आपके घर आता हूँ आज मिलने आपसे.
0: बस मैं 5-6 बजे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मोस्ट वेलकम.
1: आप बजे फ्री हो जाओगे ना?
0: आपको मैं
1: तो आज हम आज ही मिलते हैं सर.
0: डन. आपको पता मेरा घर का है?
1: मुझे आपका घर पता है सर.
0: अरे क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. बट वेरी नाइस ऑफ यू, आपने कॉल किया और आपने हमसे बात की, आपने शेयर किया अपने थॉट्स. ऐसे ही बस सुनते रहिए हम लंच बॉक्स शो अंटिल 3. थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू सो मच.
1: Also, I've also listened to your Sapphire 2 and it was amazing. We're still listening every day.
0: Oh, that's so cool, yeah. Thank you so much. I hope आपको पसंद आया वो गाना.
1: बहुत पसंद आया, मेरा ब्रदर इंडिया से आया हुआ है, वो कहता है ये Sapphire 1 से ज्यादा अच्छा है.
0: क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है यार. ये तो आप मेरा दिल खुश करने के लिए बोल रहे हो.
1: नहीं.
0: बट कूल, नो वरीज यार. बस ऐसे ही आप शेयर करिए अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे प्यार बांटते रहिए. थैंक यू सो मच आयुष भाई, यू हैव अ लवली डे, वंडरफुल डे. टेक केयर.
1: यू टू. बाय बाय. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हां.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere.
4: अच्छा Hunua west में.
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 80.
10: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihoroto station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
11: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
12: क्यों, क्या हुआ?
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
13: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
14: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At AssureOne, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. AssureOne, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as AssureOne, is a licensed financial advice provider.
2: Non-stop Bollywood.
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम playing Bollywood's biggest hits.
6: Lunchbox with Ketan.
16: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
6: हम.
17: हाय हाय हाय हाय.
2: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है। वैसे यस, एक अभी की जो हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड है उस पर थोड़ी नजर डाल देते हैं। आज के दिन, आज 27 तारीख है, 27 जुलाई 1953 की बात है, जब कोरियन वॉर के आर्मिस्टिस यानी कि सीज फायर साइन हुई, और इस एग्रीमेंट के बाद नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड नेशन फोर्सेस के बीच फाइटिंग जो है वो रुक गई थी। इस वॉर में न्यूजीलैंड ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। न्यूजीलैंड के की फोर्स ने साउथ कोरिया की सपोर्ट की और कैपयोंग बैटल में बहुत ही बहादुरी दिखाई। लगभग 47,000 सोल्जर्स और 1,300 नेवी पर्सनल ने सर्विस दी, जिसमें 45 न्यूजीलैंडर्स ने अपनी जान भी गई, यानी कि शहीद भी हुए थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मिस्टिस सिर्फ सीज फायर था, पीस ट्रीटी नहीं। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया टेक्निकली आज भी ऑफिशियली वॉर की स्टेट में ही है, यानी कि जो वॉर है वो कभी ऑफिशियली रुकी ही नहीं है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि शांति की तरफ पहला कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन परमानेंट पीस के लिए डायलॉग और एग्रीमेंट भी जरूरी होते हैं, नॉट जस्ट सोचना और समझने।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rusby on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
2: SIT Online. Learn without limits.
3: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Kukar 50-inch smart TVs, $499. Vogue black glass wall ovens, $349. 60cm black range hoods, $79. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Danny didn't think he needed a DVS system.
5: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
4: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
5: Nah, only one room. It was just too noisy.
4: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: Branchy Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine Prastut Kareche Raj Gadvi live in Auckland.
7: Hey, hello, bhai, hello, hello.
6: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz
8: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
0: Lunchbox with Kathan.
10: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
11: Chutney shots.
12: वेल आज की ताज़ा खबर मैं बता देता हूँ. सबसे पहले वेदर अपडेट. न्यूजीलैंड के कई हिस्सों में आज साल की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली. मेट सर्विस ने लोगों को वार्म कपड़े पहनने और सुबह ब्लैक आइस से सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि अगले दिन भी फ्रॉस्ट का सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि आज रात भी सेम सिचुएशन हो सकती है. लोकल गवर्नमेंट से एक इंटरेस्टिंग खबर आई है. कुछ काउंसिल कस्टमर्स सर्विस स्टाफ पर ड्यूटी के दौरान क्रॉस वर्ड सॉल्व करने और पर्सनल काम करने के एलिगेशंस लगा रहे हैं, जबकि इमरजेंसी कॉल्स का ब्लॉक बैकलॉग भी काफी बढ़ चुका है. पॉलिटिक्स से अपडेट. प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी पार्टी की पेड पैरेंटल लीव रिकॉर्ड को लेकर कोई क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट किया है. उनका कहना है कि गवर्नमेंट फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड रहती है. इंटरनेशनल न्यूज में फ्रांस के बॉर्डियोक्स रीजन के पास वाइल्ड फायर तेजी से फैल रही है. सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि लगभग 250,000 लोगों ने इवैक्यूएट कर दिया है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए एआई स्मार्ट ग्लासेस प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर डिस्कशन में है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी के साथ प्राइवेसी रूल्स को और भी मजबूती चाहिए रहेगी. स्पोर्ट्स में ऑल ब्लैक्स ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए अपने स्क्वाड अनाउंस कर दी है. फैंस की नज़र अब टीम सेलेक्शन और अपकमिंग सीरीज पर रहने वाली है. और आखिर में एक इंस्पायरिंग स्टोरी. एक माओरी फादर अपनी पर्सनल सक्सेस के बाद अब न्यूजीलैंड सिटीजनशिप के क्लियर पाथवे के लिए कैंपेन कर रहा है. उनका कहना है कि सिस्टम को और फेयर और एक्सेसिबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: दिल से

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के वेदर के हाल चाल, 14 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 4 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज वैसे बहुत ही खूबसूरत दिन है, ओवरऑल बहुत ही सनी रहने वाला है, लेकिन सनसेट होगा 5:33 PM पे।

0: लंच के मंच पे।
1: Well, yes, sir. Thank you so much. सबसे पहले तो आप सभी का, अगर आपने मुझे अभी भी ज्वाइन किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एंड अगर आप मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस बने रहिए अंटिल 3। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गपशप करने हैं। लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी यहाँ पे सेगमेंट लेके आऊंगा, आपको मौका दूंगा जहां पे आप मुझे कॉल करेंगे 0800-004-866 पे। थोड़ी देर में आप नोट डाउन कर लीजिए 0800-004-866 पे। पर यस, उसके अलावा बॉलीवुड की खबर भी आएगी, कौन कौन सी फिल्मों ने कमाल किया है, कौन कौन सी फिल्में जो है डूबी है कलेक्शन के मामलों में। पर होता है, बॉलीवुड में कुछ फिल्में होती हैं जो बहुत ही बढ़िया होती है लेकिन चल नहीं पाती है फाइनेंशियली। पर यस, एक मैसेज आया मुझे, हैप्पी बर्थडे, थर्ड बर्थडे टू दिविशा क्रिस्टल ऑटर फ्रॉम पोकेनो। उनका जन्मदिन है, वो अपना तीसरा साल मना रही है, तो उनको विशेस भेजिए, बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा मम्मी एंड पापा एंड फैमिली फ्रॉम फिजी। वेल दिविशा, आई होप, आई नो इट्स टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और हो सकता है आप समझ भी रहे हो, सुन रहे हो। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी हैप्पी थर्ड बर्थडे टू यू फ्रॉम योर फैमिली इन फिजी एज वेल एंड इन न्यूजीलैंड एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम हम टीम एज वेल। तो यस, आपका दिन जो है बहुत ही खूबसूरत है, एंजॉय द डे, बहुत सारा केक खाओ, बहुत सारा खाना खाओ, बहुत सारा दूध पियो, बहुत सारे खिलौने खेलो, एंड जस्ट आस्क योर पेरेंट्स व्हाटएवर यू वांट, दे वुड, आई एम प्रीटी श्योर दे वुड लव टू बाय इट। बट यस, दैट्स ऑल फ्रॉम अस, फ्रॉम हम।
0: बचाओ क्या,

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Assure One. Plan for tomorrow today. Call 0800-77-HIRA. North Hanvale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. Five-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800-SUN-TOURS for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
2: Lunchbox with Ketan.
3: Mujhe pasand hai ladka.
2: Hum. Lunchtime rant line.
4: Lunchtime lunch segment mein aapka swagat hai.
5: Hi hi hi hi.
2: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
4: लंच टाइम के सेगमेंट में आपका स्वागत है. आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए मुझे कि कुछ अगर ऐसी बात हुई है विच यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी, वुड लव टू हियर दैट. 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए और आप मुझे बता सकते हैं. बट यस, मीन टाइम आपको मैं बता देता हूँ दैट वी हैड अ ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन विद शनील लाल जो यहाँ पे आए थे एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की है रिगार्डिंग नॉन बाइनरी और काफ़ी LGBTQ+ राइट्स के बारे में भी बात की है. रेसिज्म क्या फेस करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफकोर्स किस नाम से उन्हें बुलाया जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं. तो ये पॉडकास्ट सुनने के लिए डेफिनेटली आपको हमें 5599 में भेज देना ताकि आपको मैं लिंक भेज दूं और उस लिंक के ज़रिए यू वुड बी एबल टू हियर दिस ऑडियो पॉडकास्ट जो कि बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन हुई है विथ सैनी एंड्रूज़ पे. बट यस, उसके साथ आप ब्रेकफास्ट के कैचअप भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के कंटेंट भी कैचअप कर सकते हैं. 5599 का नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं रिगार्डिंग यू नो, अगर आप चाहते हैं कि सैंडी विजय पूजा के कॉन्वर्जेशन के बारे में अगर जानना तो वो आप 5599 पे BF लिख के भेज दीजिए ताकि कॉन्वर्जेशन आप तक पहुँच जाए. साथ में आपके लिए 2.0 सफ़ायर 2.0 भी रिलीज़ हो चुका है. बहुत ही बढ़िया गाना है जो मैंने बनाया है, मेरा लेटेस्ट सिंगल है. बट सबसे पहले अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सॉन्ग वीडियो वेरी अमेजिंग बिकॉज राइट नाउ ऑफिशियली फाइनली आज नहीं एक्चुअली कल ही हो चुका था ये, बट यस आज हो चुके हैं 100K से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, यानी कि 106K व्यू हो चुके हैं ओवरऑल, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है मेरे लिए. सो यस, आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ दैट एंड थैंक यू सो मच अगेन. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब पे सफ़ायर केतन के नाम से सर्च करिए या फिर सफ़ायर 2.0 भी सर्च कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा. अगर नहीं आता है तो जस्ट सर्च सफ़ायर केतन. आप अगर मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर हमको तो वहाँ पे भी हमने कंटेंट डाला है. आई नो हम पे शायद हो सकता है दिक्कत हो जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली हम कुछ ना डालते रहते तो वो मस्ट हैव गॉन डाउन. बट आप मुझे फॉलो अगर करते हैं इंस्टाग्राम पे तो वहाँ आपके ज़रिए भी आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं. बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए कोई कॉल तो आया नहीं है. बट यस, आई लुक फॉरवर्ड टू सी रीड द मैसेज जो मुझे मिले हैं थोड़ी देर में.

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
4: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट। ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू, 7 साल की वारंटी के साथ। एसयूवी हाइब्रिड्स, फोर व्हील ड्राइव्स, परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है। विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाकानिनी। ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल। फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाकानिनी।
3: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: Lunchbox with Ketan.
6: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
5: इसके पीछे
0: हम
5: लंच के मंच पे।
7: लंच के मंच पे आपका स्वागत है। सेगमेंट तो वही है लेकिन यस शो का नाम है लंच बॉक्स शो। वैसे यस शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसी बात की। अभी एक लेटेस्ट क्रॉसवर्ड आपने डेफिनेटली खेला होगा, हमारे रोवा ऐप पे भी हमने डाला था कुछ टाइम पहले और आपने बहुत ही यू नो जोरों शोरों से उस पर हिस्सा लिया और काफ़ी लोगों ने इनाम भी जीते हैं। उसी से रिलेटेड एक बात आई है, न्यूज़ ये है आज की, वो ये बताती है कि ऑकलैंड काउंसिल के कस्टमर सर्विस सेंटर को बहुत ही अलग अलग तरह के कॉल्स मिल रही हैं। लोग सिर्फ रेट्स, रोड्स या रबिश के बारे में ही नहीं बल्कि क्रॉसवर्ड पजल के आंसर और सीनियर क्राइसिस सिचुएशन के लिए भी फ़ोन करते हैं। काउंसिल ऑफिशियल्स ने कहा है कि उन्हें हर दिन इतनी वाइड वैरायटी क्वेश्चंस मिलते हैं कि कभी कभी स्टाफ को अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट भी हैंडल करनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि कस्टमर सर्विस टर्म्स सिर्फ काउंसिल सर्विस ही नहीं बल्कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन और सपोर्ट तक पहुंचने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये बात है यहाँ पे। बट यस एक चीज़ है कि आई रिमेम्बर, मैं तो खैर कभी खेला नहीं, मेरा बचपन में बहुत मन था, मन एज इन लाइक यू नो मैंने शुरू भी किया था सोचिए कि यार पापा मम्मी ये नाना नानी दादा दादी क्या करते रहते हैं ये शाम को, मैं शाम को क्या सुबह, स्पेशली मेरे पापा और मेरे दादा, मुझे हल्के से ग्लिम्स याद है दादाजी की, तो धूप में ऑब्वियसली विंटर के टाइम वो अखबार लेके बाहर धूप में आ जाते थे और वो बस उसको घंटों बैठे रहते थे, सब फिल आउट करते रहते थे क्या करना है क्या नहीं करना है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यस मैं हमेशा फील करता था कि यार ये क्या ऐसा गेम क्या, फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली मैं था तब 5-6 साल का, 7-8 साल का, मुझे कहाँ समझ में आएंगे ऐसे पहेली वाले सवाल, इतने वो वाले सवाल, मैं कुछ पल नहीं पड़ा। तो मेरे को तो ऑनेस्टली बताया बहुत ही बोरिंग लगा। लेकिन अब जाके जब ये रोवा ऐप पे जब इन्होंने लॉन्च किया था तो उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट जागा कि यार इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, कि अगर आपको पता है कि वो क्या है तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल तो करेंगे। बट यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें क्रॉसवर्ड खेलना बहुत पसंद है? अगर आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है, मतलब मेरा एक सवाल यहाँ पे ये कि अगर आप जब खेलते थे क्रॉसवर्ड, हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू to fill out all the blocks. Was it like you were so pro into that, or you were so like, you know, shuru hota tha, but then at the end you were like, nahi yaar, mere se ho nahi raha, band karo isko. आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0800 004866 पे, जहां पे आप मुझे बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस. बट यस, हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड कैसा रहा? फोन नहीं आता है तब तक तो, मतलब फोन आता है तब तक हम बात कर लेते हैं आपस में. और वीकेंड आपका कैसा रहा? आप शो देखने गए, राहत फतेह अली खान यहाँ पे आए थे, राहत फतेह अली खान जी, वो अपने बेटे के साथ और अपने बैंड के साथ यहाँ पे आए थे. परफॉर्मेंस मैं तो कर नहीं पाया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा एक शो था ऑलरेडी बुकड इन. मन बहुत था मेरा कि मैं वो शो करूँ, आई मीन टू सी, क्योंकि ऐसे मौके जो है, ऐसे एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलते. बट अब ऑब्वियसली जहाँ पे मेरा खुद का शो है तो मैं उसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकता. द रीज़न इज, पहली बात तो ये कि काफ़ी और लोग मेरे पे डिपेंडेंट टू गेट एंटरटेन्ड, और साथ में मेरा खुद का भी बैंड था जो ऑब्वियसली मेरे पे डिपेंड था. हम सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं बेसिकली. तो यू नो, अगर मैं अगर नहीं गाता तो शायद वो शो नहीं कर पाते, या फिर कोई और भी होता हमारे बैंड में, कोई एक बंदा भी अगर कम होता है, मिस होता है, तो डेफिनेटली हम वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो इसी वजह मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, वैसे भी दो साल पहले मैंने सुना था तो इट्स फाइन, इस टाइम स्किप करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन था नहीं. बट आई ऑनेस्टली हैड अ वेरी गुड फन, बिकॉज इस बार जो ऑडियंस थी हमारी कंप्लीटली डिफरेंट थी. हर बार हम इंडियन ऑडियंस के सामने हमने गाने गाए हैं, इंडियन ऑडियंस के सामने हमने परफॉर्मेंस दी है, बट इस बार ऑनेस्टली बताऊँ सिर्फ दो या तीन लोग ही थे जो इंडियन थे, बाकी सब मेजॉरिटी इंग्लिश सुनने वाले थे. और ये कहूँ तो हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, बट दे हैव हर्ड बॉलीवुड. आई रिमेंबर मैं जैसे ही पहला शुरू हुआ था, चार लोग बैठे थे एंड दे वर लाइक, पहले ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो कोई रिस्पॉन्स था नहीं सिवाय उन दो इंडियंस का, के अलावा काफ़ी लोग सिर्फ सुन रहे थे. हाँ ठीक है, मेरा भी ध्यान था कि शायद उनका इतना रिएक्शन, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली इंग्लिश के कुछ कुछ गाने याद है, बट उतने नहीं जितना मैं ज़्यादा सुनता नहीं इंग्लिश गाने. बट आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, मुझे अपनी लाइब्रेरी जो है थोड़ी एक्सटेंड करनी चाहिए. और यस, लेकिन जब मैंने पूछा उनको, सो दे एक्चुअली क्लैप्ड फॉर मी वेरी वेल. तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे. तो मैंने उनको बोला था वो क्या था, तेरी दीवानी जो है ना वो गाना, तेरी दीवानी. तो उसका मैंने उनको बोला कि आप तेरी दीवानी बोल के, तो जैसे तैसे उन्होंने you know, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, यहाँ पे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं वो कैसे बोलते हैं हिंदी. तो मैंने उनसे बुलवाया जैसे जैसे उन्होंने बोला. बट द गुड थिंग, द सरप्राइजिंग मोमेंट वॉज फॉर मी दैट मैंने उनको बता दिया था कि मैं जैसे हाथ ऊपर करूँ आपको गाना है, एंड दे डिड सो वेल. जैसे ही तेरी दीवानी आती है मैं हाथ ऊपर करता था एंड दे वर लाइक सिंगिंग. तो लिटरली वो मोमेंट जो था ना, इतना प्रेशियस था मेरे लिए, इतना अमेजिंग था दैट आई एम एक्चुअली सिंगिंग हिंदी सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश गानों जो सुनते हैं, गाने सुनते हैं. आई डोंट नो इफ आई शुड बी सिंग गोरे लोग, पता नहीं यहाँ पे कौन कैसे लेगा, बट यस गोरे लोग बेसिकली, वाइट पीपल पता है मैंने वाइट पीपल बोला था वो बहुत ही लोग हंसे थे. एनीवेज, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंट था मेरे लिए. और फिर उसके बाद काफ़ी देखा मैंने क्राउड गोरे काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे थे, एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग द स्टेज, लाइक आई आस्क्ड देम टू कम ऑन द स्टेज सिंग विथ मी, सो दे ऑल्सो सैंग विथ मी. एंड ग्लैड दैट जो हमारा बैंड का लीड गिटारिस्ट है एंड द ड्रमर है वो ही, दे बोथ आर लाइक सो अमेजिंग यार, आयुष और डेनिस, दे आर सो अमेजिंग. एंड दे आर इन टू मेजॉरिटी हिंदी सॉन्ग्स कम ही सुनते हैं, वो इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं. सो यस, उनको पता था वो गाना क्या है और उन्होंने उन्हें माइक दिया, आई मीन मैंने उनको माइक दिया, जो यू नो गोरे लोग थे उन्होंने गाना गाया और इन्होंने ड्रम बजाया, गिटार बजाया. सो इट वॉज सच अ फैंटास्टिक इवेंट, सच अ फैंटास्टिक. उसके बाद ऑफकोर्स हमें मैसेजेस भी आए हैं ऑन ड्यूरिंग वीकेंड ऑन संडे टू वन ऑफ आवर मेंबर दैट दे वांट अस टू बुक फॉर देयर पर्सनल गिग. सो दिस इज ऑल शोज दैट पीपल आर एक्चुअली लविंग इट. अगर आप भी हमें परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं तो आप हमें बुला सकते हैं. द बीनाम्स के नाम से है, आप सर्च करिए ऑनलाइन जाके, वहाँ से आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन जो भी कॉन्टैक्ट की. या फिर ऑफकोर्स हम इस हफ्ते इस वीकेंड भी फिर से हम पैनल में परफॉर्मेंस देने वाले हैं. तो यस, आप आइए, मोस्ट वेलकम. अगर आप जाना चाहते हैं कहाँ, तो आप बस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए या फिर द बीनाम्स को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी शो कहाँ पर होने वाला है. बट यस, आई एम सो एक्साइटेड यार. अभी देखो कॉल आता तो बहुत ही बढ़िया लगता, बट आई फील आई कैन अंडरस्टैंड दैट आज मंडे है, आज शायद सभी जो है सुस्ती बनाए बैठे हैं. कॉल्स सिर्फ एक आया है अभी तक पूरे टाइम में अभी तक. वाओ, दिल से

0: Ready Awaz Gunjegi. Throwback.
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। यहाँ पे चलिए बात करते हैं कुछ और कंटेंट की, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ गरबा नाइट विद राज गढ़वी होने जा रहा है ऑकलैंड में। जी हाँ, आई गेस ये शायद पहली बार आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेल यस, इस सैटरडे को होने वाला है जो कि है 1st अगस्त। तो यस, ऑकलैंड आप सभी काउंटडाउन के लिए रेडी हो जाइए। एक्चुअली काउंटडाउन के लिए रेडी नहीं हो जाइए, काउंटडाउन को शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिन आपके पास ज्यादा बचे नहीं है, टिकट बहुत ही कम बचे हैं। तो जल्दी से जाइए eventstickets.co.nz पे। जी हाँ, टिकट्स जो है वो अवेलेबल है वहां पे, eventstickets.co.nz। कुछ भी सवाल जवाब हो आप कॉल कर सकते हैं स्वप्निल शाह को 0224394736 पे। वैसे यस, ऑकलैंड आप सभी रेडी हो जाइए, बिकॉज एक अनफॉरगेटेबल इनक्रेडिबल नाइट होने वाली है विथ डांस, फुल ऑफ डांस म्यूजिक सेलिब्रेशन, क्योंकि राज गढ़वी आ रहे हैं स्टेज को कॉन्कर करने, आपका दिल जीतने और आपको थिरकने पे मजबूर करने। गरबा नाइट विद राज गढ़वी, जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट वेटेड गरबा सेलिब्रेशन ऑफ फ्रॉम यू नो डिफरेंट रीजन डिफरेंट पीपल। वेल यस, ये शो लेके आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शन, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आप सभी के लिए बहुत ही प्राउडली लेके आते हैं शो गरबा सेलिब्रेशन राज गढ़वी, सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव। जी हाँ, सो यस, मेक श्योर करें, जल्दी से जाइए eventstickets.co.nz पे और आज ही टिकट खरीद लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो यार, बहुत ही जल्दी से अगर बुक हो गया तो यू विल बी लाइक अगेन इन टू दोज कैटेगरी, दोज लोग जो बोलेंगे यार मेरे पास मौका था, काश मैं ले लेता उस टाइम टिकट। बट यस, अभी नहीं हुआ तो अब आपको कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। बट यस, जाइए और फटाफट से बुकिंग कर दीजिए। वैसे यस, मेरे पास एक और है करण औजला, अब उसके बाद बहुत ही कम टाइम बचा है, आपके पास कम टाइम है, उनके पास नहीं, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है टिकट खरीदने का। तो मैं बताऊंगा कुछ मस्त अपडेट अबाउट हिज शो।

क्या नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है. वैसे यस, कहीं मत जाइए, बने रहिए अंटिल थ्री. मैं हूँ यहाँ पे और बहुत सारी बातें करनी है. सार में लगे लेटेस्ट खबर तो लाऊंगा मैं, साथ में आपको बॉलीवुड की खबर जो लास्ट में रह गई थी वो मैं इस सार में आपको बताने वाला हूँ. उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें बताऊंगा. स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कुछ नया अपडेट. क्रिकेट में अभी इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे मैच हो रहा है जिसमें इंडिया ने सीरीज जीत ली है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ पे. और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स में क्या अपडेट है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा. बट यस, आप बने रहिए. कॉफी ब्रेक इसके बाद आने वाला है. सैंडी विल बी जॉइनिंग फॉर द कॉफी ब्रेक फ्रॉम 3 to 4 एंड देन 4 के बाद ड्राइव शो शुरू हो जाएगा. और यू नेवर नो, अगर रुजबे पहले आता तो यू माइट गेट सरप्राइज. रुजबे विल बी जॉइनिंग फॉर द ड्राइव शो, कॉफी ब्रेक एंड द ड्राइव शो एज वेल. सो यस, स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू मी एंड शुरू करते हैं. बुमरो बुमरो शली सेटिया, जो कि एक्चुअली यही की है. ये बुमरो मेरे ख्याल से दूसरा वाला है, बट शर्ली सेटिया जो कि ऑकलैंड की है. एंड देन साथ में पार्ले जी, अरे पार्ले जी नहीं भाई, पैरी जी, सॉरी माय बैड. बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वैसे यस, अभी नई बैंक की OCR आ चुकी है जिसके बारे में बात करूंगा मैं। अच्छी न्यूज जो है ऑफिशियल कैश रेट यानी कि OCR को लेके है। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर बात करें तो जब रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड OCR को चेंज करता है तो हर बैंक उस वक्त उस चेंज को एक ही स्पीड से कस्टमर तक पास ऑन नहीं करता, यानी कि हर एक बैंक अपने हिसाब से चलता है कि भाई कब राइट टाइम है या फिर कब राइट टाइम नहीं है। प्लस अगेन एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्लान आउट कि भाई अगर किसी ने गलती से कुछ और प्राइस दे दिया तो हमारे पास एटलीस्ट मौका होगा कि हम उसका काउंटर दे सके ताकि कस्टमर्स जो हैं हमारी तरफ ज्यादा आए। जनरली फ्लोटिंग होम लोन्स और सेविंग अकाउंट रेट सबसे पहले चेंज होते हैं, लेकिन फिक्स्ड होम लोन रेट्स OCR से डायरेक्टली नहीं होते बल्कि मार्केट और होलसेल फंडिंग कॉस्ट के हिसाब से बढ़ते हैं। इसीलिए कभी कभी फिक्स रेट OCR डिसीजन से पहले या बाद में भी चेंज हो सकते हैं। इसका मेन मतलब है कि अगर OCR बढ़ता है या घटता है तो हर कस्टमर्स पर उनका अफेक्ट जो है अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उनके लोन या सेविंग अकाउंट टाइप। इसीलिए बोरोवर्स और सेवर्स को अपने बैंक के रेट अपडेट्स पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। जी हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, अगर आप नज़र रख रहे हैं तो नज़र के साथ साथ ये भी देख लें कि आपके जो डेट्स है वो कब ख़त्म हो रहे हैं। यू मे हैव टू लॉक इन, बट सबसे बेस्ट तो ये बताऊंगा कि आप किसी एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि एडवाइज़र के थ्रू ही आपको यू नो एक प्रॉपर और जेनरिक नॉलेज मिलेगी। इट इज़ नॉट दैट वो हमेशा प्रॉपर, ऑब्वियसली प्रॉपर ही देंगे, बट डजंट मीन दैट आपको उन पे 100% डिपेंड रहना है। उनसे काफ़ी मेजॉरिटी नॉलेज आप ले सकते हो, बट यस, खुद की रिसर्च भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा, आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
15: Whites separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
16: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan, from $675 one way. Hong Kong from $709 or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.

0: Breakfast with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: Welcome back. You are listening to Lunchbox. एक बहुत ही बढ़िया बड़ी one of the biggest film आ रही है यहाँ पे. जी हाँ, worldwide release होने वाली है. टॉम हॉलैंड की अपकमिंग मार्वल मूवी स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे. वैसे एक खास बात पता क्या है, मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ. कोई भी फ्रेंचाइजी मैंने छोड़ी नहीं इनकी. तीन फ्रेंचाइजी ने अलग अलग स्पाइडरमैन बनाया है जो सब ही एक साथ मिले थे. आई थिंक द लास्ट जहाँ पे तीन तीन स्पाइडरमैन एक साथ थे. इतना बड़ा फैन हूँ मैं स्टार्टिंग के. ऑब्वियसली मैंने जब पहली और दूसरी फिल्म आई थी, आई थिंक 2002 में पहली आई थी, इतना ज़्यादा छोटा था मैं. दैट ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव मनी. और उसके बावजूद समहाउ मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स जो थे वो काफ़ी दे आर लाइक दे वर वेरी रिच. एंड उस टाइम पे उनके पास सीडीज आया करती थी ओरिजिनल, जो एक सीडी हुआ करती थी 900 रुपीस की तब के टाइम 2002 में. और उनके पास आई थी और फिर उन्होंने उनसे मैंने बोला था कि प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट लेट मी यूज़ इट एंड आई जस्ट वॉच इट आई गिव इट टू यू. और वो थी लेकिन इंग्लिश में, उनका डब नहीं था और तब इंग्लिश मुझे आती नहीं थी. लिटिल कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता था. तो फिर भी मैंने देखी और फिर भी मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हुआ. इतनी बढ़िया लगी मूवी वो, इतनी बढ़िया लगी. और फिर मैंने प्राउडली बहुत ही बड़ा, अरे मेरे को आ गई समझ में ये अलग अलग कहानी बना रहा था मैं क्योंकि उस टाइम यूट्यूब नहीं था जहाँ पे ट्रांसलेशन करके किसने एक्सप्लेन करे कि मूवी क्या है क्या नहीं है. बट यस, मुझे बहुत पसंद है. फिर कुछ टाइम बाद हमारे घर में चैनल लग गए थे, सारे टीवी ये सब आने लगे. और तब कुछ टाइम बाद डब्ड हिंदी आई थी, तब मैंने हिंदी में आई थी स्पाइडरमैन, तब मैंने पहली बार फिर से उसे देखा. और उस टाइम एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही था जैसे मैं फिर से पहली बार देख रहा हूँ. बट सचमुच मुझे बहुत पसंद आई. वैसे आपको सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी अब तक की? मेरे हिसाब से पता है क्या मुझे सबसे बेस्ट लगी, एक तो स्पाइडरमैन पहली तो थी ऑफकोर्स, वो सभी के लिए थी जो वेरी फर्स्ट. उसका रीज़न भी ये कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था कि स्पाइडरमैन करके ही है. पहली बार तो नहीं हुआ था, उससे पहले भी हो चुका था. बट देर वॉज अ ह्यूज गैप बिकॉज 1960s 70s में लास्ट फिल्म आई थी, उसके बीच में कार्टून आते थे. सो पीपल डू नो, बट ये पहली काफ़ी सालों बाद एक तरह से कह सकते हैं कि न्यू जनरेशन के लिए पहली फिल्म थी जो उनके सामने आ रही थी स्पाइडरमैन की. वो तो पसंद थी. उसके बाद मुझे स्पाइडरमैन 3 बहुत पसंद आई. उसके बाद बाकी सारी मूवी भी अच्छी थी. आई वुड लव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन. लेकिन इस फिल्म, ये जो अभी वाला जो टॉम हॉलैंड है, उसकी जो पहली फिल्म थी, लिटरली ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं बच्चों वाली फिल्म देख रहा हूँ ऑनेस्टली. सॉरी, माफ़ कीजिएगा. बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती रही, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बनता रहा. और वो जो बचपन वाली जो बात थी कि भाई यार बच्चों जैसी मूवी देख रहा हूँ मैं, ये क्या है क्या नहीं है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ साथ स्पाइडरमैन भी ग्रो कर रहा है. यानी कि स्पाइडरमैन भी अब बड़ा होता नजर आ रहा है. एंड देन ऑब्वियसली ग्राफिक्स, हर एक चीज़ बहुत ही अमेजिंग है. आपके लिए सबसे करीबी स्पाइडरमैन मूवी कौन सी लगी आपको? अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बताइए 5599 पे. कौन सा जो कौन सी सीरीज, कौन सा एक्टर स्पाइडरमैन के तहत बहुत आपको सही लगता है? बट यस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. इंडिया की अगर बात करें तो एडवांस बुकिंग में ही 25 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो चुका है. 260,000 टिकट प्री बुक के जरिए बिकी है. और एक्सपर्ट का मानना है कि मूवी की जो ओपनिंग डे कलेक्शन है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है इंडिया में. अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया में हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बन सकती है. इससे पहले इसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी और टॉम हॉलैंड की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी काफ़ी स्ट्रांग है और फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. वैसे आप मुझे बताइए, हॉलीवुड का जो सबसे ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है इंडिया में वो कौन सी फिल्म का रहा, ये आप मुझे बताइए 5599 पे. चलो हॉलीवुड नहीं, कोई हाँ, लेट्स स्टिक टू द सेम क्वेश्चन. यस, तो हॉलीवुड की ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने सबसे बड़ा कलेक्शन दिया है ऑन द ओपनिंग डे अभी तक का, और कितने का?
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: போயிட்டிருப்பே.
1: வெல்கம் பேக், யூ ஆர் லிஸனிங் டு லஞ்ச் பாக்ஸ். சலிய குச்ச ஐசிசி அப்டேட் லே லேதே ஹே. கிரிக்கெட் ஹுவா ஹே அபி குச்ச தினோ மே, ஆர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி காஃபி படியா கேல் ரஹே ஹே ஜிம்பாப்வே கே அகேன்ஸ்ட். பஹுத் ஹி படியா இன்கி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரஹி ஹே சீரீஸ் மே. தோ இங்கிலேண்ட் மே இன்கி இத்தனி காஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரஹி நீ ஹே, பட் ஐ கெஸ் யார் சல்தா ஹே, பிகாஸ் அபி உஸ்னே இன்டர்நேஷனல் டெபியூ கியா ஹே. யூ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஹிம் கி சடன்லி ஆகே பஹுத் ஹி படா நாம் கமா லே, பஹுத் படியா பர்ஃபார்மன்ஸ் தே தே. கியூ பாய் 15 கா ஹே, உஸ்கா தாட் ப்ராசஸ் ஹே, இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் தென் எனி மெச்சோர் பர்சன் ஹூஸ் பிளேயிங் ரைட் நவ். அண்ட் யூ சீ த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அதர் பீப்பிள் அண்ட் திஸ் கே, திஸ் பாய், நாட் கே ஆக்சுவலி, பாய், லிட்டில் பாய், அபி தோ யார் லிட்டரலி 15 கா ஹுவா, பட் ஸ்டில் ஹீ இஸ் தேர் அண்ட் பிளேயிங் அண்ட் ரீப்ரசென்டிங் ஹிஸ் கண்ட்ரி இந்தியா. பஹுத் ஹி படி பாத் ஹே. தோ இசே கிரிட்டிசைஸ் கரனே கி பஜாய் ஆப் அப்ரிஷியேட் கரோ கி இத்தி கம் உம்ர மே வோ பந்தா தேஷ் கோ யூ நோ இத்தனா சம்மான் தே ரஹா, இத்தனி பர்ஃபார்மன்ஸ் தே ரஹா, ஆர் சிர்ஃப் இண்டியா மே ஹி நஹி, பூரே இன்டர்நேஷனலி வைபவ் சூர்யவன்ஷி கா நாம் ஹோ சுகா ஹே பிகாஸ் ஆஃப் IPL ஃபர்ஸ்ட். பட் நவ் ஆஃப் கோர்ஸ் இத்தனி யங் ஏஜ், யங்கெஸ்ட் தோ நீ போலுங்கா, பட் யங் ஏஜ் மே உஸ்னே டெபியூ பி கர் லியா ஹே. அண்ட் நவ் இஸ் பிளேயிங் ஃபார் இண்டியா. மத்லப் இமேஜின் கரோ, மேரே சே ஆதே சே பி கம் கா உம்ர, கம் உம்ர கா யே, மத்லப் மேரே பேட்டே தோ மாத்திர சே 15 படா ஹே, மாத்திர 15. ஆப் முஜே பதாயே, 15 கி ஜப் தே ஆப் தப் க்யா கர்தே தே, எனி ஐடியா 15 பே கி ஆப் க்யா கர்தே? ஐ அம் சோ சாரி, ஐ ஹேவ் டு பிரிங் இன் சாண்டி, ஐ நோ ஷி இஸ் பிஸி ரைட் நவ் ஈட்டிங் வெரி நைஸ், ஜோ இன்கோ நஹி கானா தா வஹி தியா மேரே கோ
2: ஸ்னேக் பார். எனிவே கேசே ஹோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் கேதன்.
1: குட் ஆஃப்டர்நூன், ஆப் கேசே ஹே?
2: படியா படியா. தும் க்யா போல் ரஹே தே, 15 சால் கி உம்ர மே க்யா கர் ரஹே தே
1: ஆப்?
2: மே க்யா கர் ரஹி தி,
1: மத்லப் மே பூச்சா தோ லிஸனர் கோ தா, பட் ஆப் ஹி பதா தோ, 15 சால் மே ஆப் க்யா கர் ரஹே தே?
2: நீ யாத் யார் முஜே, 15 சால் கி உம்ர மே டீச்சர் டீச்சர் கேல் ரஹி ஹோகி, ஆர் கே
1: டீச்சர் டீச்சர்
2: மத்லப் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் வகரா நீ தே நா.
1: हाँ, स्मार्ट, इतने स्मार्ट फोन्स थे, स्मार्ट नहीं थे. और मेरे को लगता है इस उम्र में, मेरे को, मैं शायद 14 साल का था, 13 साल का था, तब मेरे हाथ में फोन तो आ गया था.
2: अगर होते तो रील
1: सिंगल डिस्प्ले
2: होते
1: ना. हाँ, सिंगल डिस्प्ले वाले नहीं होते क्या? सही में अभी मतलब पैसों में खेल रहा था यार, अगर तब से मैं अगर बना रहा था रील वील व्लॉग व्लॉग तो यार सही में अभी तो मैं
2: अरबपति
1: होता. यूट्यूब यार पैसा देता है यार इतना सारा, नो मार्केटिंग. बट हाँ यार, मेरे को लगता है of course this boy is doing phenomenal. kya performance diya uske yaar, itne do mere khayal se back to back isne half century mari hai, century to nahi mari abhi tak lekin half to half. kal bhi acha khela yaar, 20 over mein 192 run bane the aur usme sabse bada yogdan isi ka tha mere khayal se, I guess if I'm not wrong. 81 run bana isne, 49 बॉलों पे, जो कि इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है. ये बंदा 25-30 बॉलों पे सेंचुरी मारने वाला है. बट स्टिल लुक एट अदर पीपल्स परफॉर्मेंस. अभिषेक शर्मा जो एक टाइम पे मतलब कहते हैं कि ये अभिषेक शर्मा कौन है ये, मतलब इतनी फास्ट खेलता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन वैभव के आने के बाद तो कोई पूछ ही नहीं रहा.
2: ओ अच्छा, अभिषेक भी ऐसे ही,
1: अभिषेक शर्मा जो युवराज, हाँ इनकी परफॉर्मेंस की, ही इज आल्सो वेरी, उसको फास्ट फास्ट खेलना पसंद है. ईशान किशन इज आल्सो वेरी हाईएस्ट रनर फ्रॉम इंडिया इस साल का, बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं है. कप्तान साहब इस बार ठीक ठाक खेले. बट या रिंकू सिंह, चलो अच्छा फिनिश दिया उन्होंने, 25 रन बनाए थे उन्होंने 14 बॉलों पे, विच इज गुड. और इंडिया फाइनली कुछ ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीत गई है. यार इतने टाइम में इंडिया कुछ जीती है, हारे जा रही है अब से यार, बायलैटरल सीरीज में बड़े बड़े कप जीत रही है फॉर श्योर, बट छोटे मोटे सीरीज में 12 बज रही है इंडिया की.
2: बट और तुम ये मैचेस लाइव देख पाते हो?
1: नहीं यार, टाइमिंग का बहुत इशू है अब तो यार, देख भी नहीं पाता. और रीजन भी है ना ये, वो भी देख, वो पता है कैसे छुप छुप के यू ऐसे साइड से देखता है, अगर मैं फोन के सामने करूँ, अगर ऐसे मुड़ू मुड़ू तो मेरी गर्दन दुखने लग जाती है. सो आई हैव टू होल्ड फोन लाइक दिस, बट इफ आई होल्ड इट लाइक दैट वे तो इहान इज लाइक यू नो, उसकी तिरछी नजर से देखता है, ओ ये लाइट कहाँ से आ रही है. क्यूट लगता है.
2: 10 महीने का है ना अभी?
1: नहीं, 8 का होगा. 8 का होगा,
2: अभी 8 महीने का होना है। वाह।
1: हाँ, बट वो जिस वे से देखता था क्यूटनेस लगती है, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू कंट्रोल, वी नीड टू मेक श्योर दैट ही डजंट गेट इनटू स्क्रीन्स अ लॉट।
2: हाँ यार,
1: वो आउटडोर बच्चा बने मेरी तरह, वो ज्यादा अच्छा है।
2: गुड जॉब।
1: थैंक यू। वो तो बाद में पता पड़ेगा जब बड़ा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ।

0: अपने जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
8: Here you go.
9: Thank you.
10: I reckon we should do some advertising.
9: Great. I like doing advertising.
10: I love doing advertising.
9: What about?
10: Thomason Does Advertising.
9: And what should it say?
10: Thomason Does Advertising.
9: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
10: Nah, keep it simple, I reckon.
11: Thomason Does Advertising.
12: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
13: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
14: No way.
15: We in trouble?
13: Nah, it's BP Plus.
15: What is that?
13: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
16: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz.
17: T's and C's apply. New customers only for a limited time.
18: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
19: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
20: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
21: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
22: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
21: इसके पीछे
23: हम
21: TikTok.
24: वेलकम बैक टिकटॉक के सेगमेंट में आपके आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि होने वाली है 25 अगस्त को स्पार्क एरिना में। यू ऑल नो मैं किसकी बात कर रहा हूं। ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला आ रहे हैं यहां पे पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके स्पार्क एरिना में 25 अगस्त को अपने गेस्ट स्पेशल गेस्ट के साथ जो कि है इक्की, जॉइनिंग हिम फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट जहां पे वो एक से बढ़कर एक हिट गाने गाएंगे, काफी एक अमेजिंग इनक्रेडिबल जर्नी भी लेके आएंगे लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू। सो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, जाइए कहां पे hum.rua.nz या फिर livenation.co.nz पे, वहां पे आपको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप टिकट कैसे ले सकते हैं और खरीद सकते हैं। एंड देन यू कम ऑन 25th ऑफ अगस्त पार्क एरिना में। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया है, मेक श्योर आप करें। लेकिन ये हमारे लिसनर के लिए ये क्या सीन होने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे आप जीत सकते हैं डबल पास। मेरा सवाल पता है क्या है, मेरा सवाल आपसे ये है कि करण ओजला ने रिसेंटली किसके साथ कोलैबोरेशन किया था ऑन स्टेज? ये दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया में, जहां पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटर ने उनके साथ स्टेज शेयर की थी और वो आए थे। तो यस, आपको क्या करना है, आपको मुझे 5599 पे जवाब लिखना है। 5599 पे सबसे पहले आप के ए लिखना ना भूले, के ए बोले तो करण औजला का इनिशियल है, उसके ए को लिखिए, फिर उस क्रिकेटर का नाम जिसके साथ उन्होंने रिसेंटली स्टेज शेयर की है, और उसका उसके बाद आप 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप फट से ड्रॉ में शामिल हो जाए और आप इस ड्रॉ के जरिए में में भी हो सकता है आप जीत जाएं डबल पास, यू नेवर नो, राइट। सो यस, जल्दी से फोन उठाइए, के ए लिखिए और उस सुपरस्टार क्रिकेटर सुपरस्टार का नाम लिखिए और भेज दीजिए मुझे 5599 पे जितना जल्दी हो सके। बट यस, hum.rua.nz एंड livenation.co.nz इज द वेबसाइट जहां पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग हाउ एंड फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द टिकट्स फॉर द स्पार्क एरिना 25 जुलाई को होने वाला शो करण औजला पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लाइव इन ऑकलैंड। दिल से

0: आवाज गूंजेगी। Throwback.
1: वेल थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और आप सभी का प्यार। थैंक यू फॉर कॉलिंग जिन्होंने मुझे कॉल किया, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजेस जो आपने भेजे मुझे। यही चीज बरकरार रखिएगा, कल भी मैं सेम टाइम आने वाला हूँ लंच बॉक्स शो में, नई बातों के साथ, नए गानों के साथ और ऑफकोर्स प्यार तो वही रहेगा, आपका भी और मेरा शो भी जो कॉन्टिन्यू। पर यस बने रहिए, अभी सैंडी लेके आने वाली है कॉफी ब्रेक थोड़ी देर में, उसके लिए आप बस बने रहिए और साथ में आपको और भी चीज़ों की अपडेट दूंगा मैं कल के टाइम 12 से 3। सो मेक श्योर आप कल भी ट्यून इन करिए, बट अभी के लिए एंजॉय करिए कॉफी ब्रेक एंड ड्राइव शो थोड़ी देर में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
10: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
11: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
12: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
13: अरे बबीता, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार.
14: क्यों, क्या हुआ?
13: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800-564-424.
15: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
16: Join our tribe!
15: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
16: join our tribe!
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 2. The Green Party wants to give firefighters with cancer automatic ACC cover, launching a members' bill on the issue. MP Mike Davidson says the move would bring New Zealand into line globally.
18: Australia, Canada and the United States all have presumptive cancer cover for firefighters, so we're actually trying to catch up.
17: It is believed that Donald Trump may have an ulterior motive for pausing strikes against Iran. The US president is said to be giving some space to talks between the warring nations. Several US media outlets are claiming there is concern over dwindling missile supplies. New Zealand's medical treatment scheme has helped deliver a life-saving operation to an infant in Tonga. The MFAT-funded initiative flew out a team to perform complex surgery on the patient's lung. Lead surgeon Dr. Kiki Morate says the scheme does more than just save lives.
19: It's actually great for country relationships as well, and it's expanded over the years from simple transfer treatment to capacity building to capabilities of systems.
17: And North Islanders may be shaking in their boots, waking up to the coldest temperatures of the year. Taupō dropped to minus 5.6 degrees, while Masterton fell below minus 4. But spare a thought for Mount Cook Village, clocking in at a frigid minus 8. To rugby with Shift 4, the All Blacks have named their squad to tour South Africa next month. Crusaders flanker Ethan Blackadder will make his first appearance since 2024. It's a move that pleases commentator Nigel Jordan.
20: It's just relentlessness, it's work rate, and that is what I expect him to be asked to do again. Just be a pest. Get over the ball, in around the ball, carry hard, tackle hard, and do it for 80 minutes, and we know Ethan Blackadder can do that.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 12.2 डिग्री से और आज का ओवरनाइट 4 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. इट्स अ सनी एंड ब्राइट गुड वेदर आज का. सनसेट आज का 5:33 पर.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
14: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
1: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे कॉफी ब्रेक में रहने वाला है और 4 बजे के बाद ड्राइव शो में मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे कैसा जा रहा है आज का सो फार? हाउ इज इट गोइंग? आपका वीकेंड कैसा गया है ये भी आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं. वैसे ओवर द वीकेंड राहत फ़तेह अली खान इनका शो था जो कि बहुत ही अच्छा गया. राहत फ़तेह अली खान एंड शाजमान अली खान दोनों ने परफॉर्म किया जो कि उनके बेटे हैं. इनफैक्ट 2 साल पहले जब वो यहाँ पे आए थे तो यहीं से उन्होंने अपने लाइव सिंगिंग की इंटरनेशनल लाइव टूर्स जो थे इनकी शुरुआत शाजमान अली खान ने यहाँ पर शुरू की थी एंड इस बार वो उन्होंने कंटिन्यू रखी वो जो एक प्रथा उन्होंने यहाँ पर शुरू की along with उस्ताद राहत फ़तेह अली खान. सो अगर आप शो में थे आपको कैसा लगा शो आप भी यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं. 5599 इज़ अ नंबर. आने वाले दिनों में और भी ढेर सारे इवेंट्स होने वाले हैं इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी. स्टे ट्यून्ड.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: क्या? कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 3:15 हो चुके हैं कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड काफी लोगों ने यहाँ पे मैसेजेस करके बताया है कि राहत फतेह अली खान के शो में जो गए थे कि अमेजिंग शो था. आई नो इसीलिए यू नो हमने आपको बोला भी था कि लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा उन्होंने शो किया था तो एक्सपेक्टेड था कि इस बार भी लेवल वैसा या उससे ऊपर ही होने वाला है. मुझे शो की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी लगी थी जिस वजह से स्क्रीन एंड एवरीथिंग का जो सेटअप किया गया था. नाउ बैक टू न्यूज़. वैसे एक जगह है मोरेवाई बीच के पास, वहाँ पे वन ऑफ ऑकलैंड मोस्ट पॉपुलर 4WD डेस्टिनेशन है वो एक्चुअली में. ऑकलैंड काउंसिल जो है ये कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ करंट सीजनल व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, सो मे बी उनको शायद परमानेंट भी कर दें बिकॉज पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का कंसर्न है एंड डैमेज टू ड्यून इकोसिस्टम इसका कंसर्न भी है. सो द आइडिया इज़ करंटली आउट फॉर पब्लिक कंसल्टेशन इससे पहले कि फाइनल डिसीजन लिया जाए. तो ऑकलैंड काउंसिल की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है इन केस यू डोंट नो ये राइट्स होती है आपके पास कि कोई भी चीज़ के ऊपर एक्शन लेने से पहले वो पब्लिक फीडबैक के लिए उसे ओपन करते हैं. तो पब्लिक फीडबैक के सुनने के बाद ही बाद में वो जो डिसीजन है वो लिया जाता है. नौ ये भी पब्लिक फीडबैक के लिए एक्चुअली में ओपन अप हो चुका है. यू कैन गो ऑन ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. बैन क्यों प्रपोज किया जा रहा है फोर व्हील ड्राइव्स के लिए वहाँ पे. काउंसिल का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी बिजी समर पीरियड्स के टाइम पे पेडेस्ट्रियंस होते हैं, सर्फर्स होते हैं, हॉर्स राइडर्स होते हैं, डॉग वॉकर्स होते हैं एंड जो बड़े व्हीकल्स जो होते हैं 4WD वो अगर सेम बीच शेयर करते हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी रिस्क होता है. एंड देन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ ये जो सेकंड कंसर्न है कि जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी थ्रेटेंड स्पीसीज रहती है जिसमें लिटिल पेंगुइन्स भी है, करोआ, देन शोर बर्ड्स भी है एंड द सील्स जो वहाँ पे रेस्ट करती है इन द ड्यून्स, तो उनके लिए भी थोड़ा कंसर्न है. इन्वायरमेंटल डैमेज में ये है कि जो व्हीकल्स है ये डैमेज कर सकते हैं सैंड ड्यून्स को, वेजिटेशन को क्रश कर सकते हैं एंड जिसके वजह से इरोजन जो है ये हो सकती है. फायर रिस्क का भी एक कंसर्न है कि जो बीच बॉर्डर्स है वहाँ पे लार्ज पाइन फॉरेस्ट है, अगर व्हीकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उससे फायर कंसर्न्स जो है ड्राई मंथ में इंक्रीज हो सकते हैं. सो फॉर नाउ कंसल्टेशन के लिए इसे ओपन अप किया गया है कि वेदर जो व्हीकल्स है वहाँ पे वो अलाउ होने चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड टू परमिट होल्डर्स, या फिर टोटल ही बैन कर देना चाहिए. कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक है नहीं बनाया गया है. आपका क्या टेक है इसके बारे में? आपको लगता है कि यहाँ पे जो बीच होती है वहाँ पे व्हीकल्स जो है ये अलाउड होने चाहिए, ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होनी चाहिए बिकॉज काफ़ी बीच पे अलाउड होते हैं, ये कंटिन्यू होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि यार बीच पे नहीं, शायद से नहीं? सो या आपका क्या टेक है इसके ऊपर आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. 5599 इज अ नंबर जहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं.
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

अवारा पन 2 जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, इसी मूवी का ये गाना आज आप यहाँ पे सुन रहे थे। 3:23 एट द मोमेंट हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। यू नो इंडोनेशिया जो है ये एशिया में पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जिन्होंने ऑफिशियली बैन किया है एलिफेंट राइड्स को नेशन वाइड। सो बहुत सारी कंट्रीज में इसको अपनाया गया है लेकिन एशिया में अभी तक इसको किसी कंट्री ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। दो 2025 में ही ऑलरेडी इसके बारे में बात हो रही थी इंडोनेशिया में, बट 2026 अब जाके फुली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सो ये जो ऑफिशियल एक्शन है ये सर्कुलेट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। सो दे कवर एवरी कैप्टिव एंड टूरिस्ट वेन्यू नेशन वाइड जहाँ पे कोई भी एलिफेंट राइड नहीं ले सकता, कोई फोर्स्ड शोज भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल सर्कस वगैरह जो होती है जहाँ पे कई बार एलिफेंट्स के शोज होते हैं वो भी नहीं हो सकते, एंड डायरेक्ट फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये भी नहीं हो सकती है। सो इसे मॉनिटर किया जाएगा इंडोनेशिया में स्ट्रिक्टली एंड बाय रीजनल कंजर्वेशन एजेंसी सच एस बाली नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एजेंसी जिन्होंने कन्फर्म किया है इस लोकल कंप्लायंस का। सो ये जो फैसिलिटीज़ है दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अबाउट एजुकेटिंग ऑब्जर्वेशन बेस्ड एजुकेशन रेदर देन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है इसे एक्चुअली में वहाँ पे बैन किया गया है। इसके काफ़ी रीजंस भी है, इन्वेस्टिगेशन हुई थी बाय अ ग्रुप लाइक PETA पेटा एशिया एंड वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। इन्होंने बताया कि जो टूरिज्म एलिफेंट्स है वहाँ पे बहुत ही हार्श एंड क्रश ट्रेनिंग दी जाती है एंड काफ़ी हैवी सैडल्स होते हैं उनके ऊपर जो उनकी स्पाइंस को डैमेज करते हैं एंड पेनफुल कन्फाइनमेंट में उन्हें रखा जाता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी जिसके बाद ये जो बैन है ये किया गया है। एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन्होंने इंडोनेशिया का खैर प्रेज़ किया है एज अ रीजनल लीडर एंड अर्ज किया है बाकी नेशंस को भी जहाँ पे एलिफेंट टूरिज़म काफ़ी हैवी है जैसे कि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में है, नेपाल में है, कि वहाँ पे भी सिमिलर बैन जो है ये होने चाहिए।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं या

0: हम 334 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। आपका क्या रेडिट के ऊपर अकाउंट है? इट्स REDDIT। सो रेडिट एक ऐसी कम्युनिटी है, कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं और बाकी लोग उन सवालों का जवाब देते हैं। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कभी किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे आपको वेरियस आंसर्स मिलते हैं। यू हैव टू फिगर इट आउट कि सही आंसर क्या है। बट उसके अंदर भी ढेर सारे ग्रुप्स, ढेर सारे कैटेगरीज इस वे से एक्चुअल में बनाई गई है। इनफैक्ट बॉलीवुड की बहुत सारी जो गॉसिप्स होती है, जो र्यूमर्स होती है ना, जो एक्चुअली में न्यूज़ होती है, अगर किसी को नहीं बताना है, किसी को प्रेस में नहीं बताना है, तो वो वहाँ पे जाके, मतलब जो इनसाइडर्स होते हैं वो वहाँ पे जाके रिलीज़ करते हैं, एंड देन इवेंचुअली एवरीवन गेट्स टू नो। नो मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज वहाँ पे एक कम्युनिटी ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसका नाम है व्हाट इज़ इट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि घर पे ना एंड ऑफिस में कहीं पर भी कई बार आपको कोई चीज़ दिखाई देती है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ आपके घर पर कैसी है, ये है क्या। तो लोग वहाँ पर ना जो भी उनको चीज़ दिखाई देती है जिसके बारे में उनको नहीं पता है, उसकी फ़ोटो पोस्ट करते हैं एंड देन दे गेट आंसर ओवर देयर कि व्हाट इज़ इट। सो या इस वजह से वहाँ पे आंसर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ने तो लिटरली वीडियो डाली है कि जो चींटियाँ हैं वो सर्कल में है वहाँ पे, उसे सवाल पूछा है कि ये सर्कल में क्या कर रही है, तो उसको जेन्युइन आंसर्स मिले हैं नीचे। सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ एक्चुअली में, एंड कुछ नॉलेजेबल कम्युनिटीज़ भी इनफैक्ट वहाँ पे होती है। हाय, गुड आफ्टरनून।
1: हाय
0: जी,
1: आई एम रोनी शर्मा। या आई जस्ट वांट टू नो दैट कृष्णिल इज स्टिल देयर। कृष्णिल,
0: एक मिनट आप होल्ड कीजिए, ठीक है, होल्ड कीजिए। मुझे लगा किसी ने रेडिट के बारे में बताना है। सो यस, ये रेडिट की अगर आपने भी कोई कम्युनिटी ज्वाइन की है, स्पेशली ये वाली कम्युनिटी जिसका नाम है व्हाट इज़ इट, तो आप भी लिख के भेजिए, शेयर कीजिए। 5599 इज़ अ नंबर। एंड डू यू वांट कि हम की कम्युनिटी रेडिट में हो? वैसे फ़िलहाल तो हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, वही आप ज्वाइन कर सकते हैं, वही बहुत है। और फेसबुक ग्रुप का नाम है अनफिल्टर्ड क्रू।

परास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

3:46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. सुपर सिटी में काफी इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी जानकारी आपको दे देती हूँ. गरबा नाइट इसी वीकेंड पे होने वाला है. गरबा नाइट तो इसका भी हिस्सा जरूर बनेगा. गरबा नाइट विथ राज गढ़वी ये लाइव होने वाला है आपकी सुपर सिटी में. काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इनक्रेडिबल नाइट ऑफ म्यूजिक डांस एंड सेलिब्रेशन जो है ये आपको मिलने वाली है इसी वीकेंड पे. सो वाइब्रेंट एनर्जी होगी गरबा की जहाँ पे आप रिच कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे एंड यू कैन डांस विद योर फैमिली फ्रेंड्स. सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आप इस गरबा नाइट की शुरुआत कर सकते हैं, सीजन की शुरुआत कर सकते हैं. ये इवेंट आप तक पहुँचा रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप. सो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशन है जहाँ पे राज गढ़वी यहाँ पे पहुँच जाएंगे. सैटरडे 1 अगस्त को ये इवेंट रहेगा महात्मा गांधी सेंटर में. सो वहाँ पे आप टाइम पर पहुँच जाएगा. ओनली फ्यू डेज टू गो एंड टिकट्स बहुत ही कम बाकी है. तो टिकट्स अपनी खरीद लीजिए फ्रॉम द वेबसाइट eventstickets.co.nz. सो रिमेंबर दोनों में एस है, eventstickets.co.nz. अगर आपको कोई इंक्वायरीज करनी है इस इवेंट के बारे में, कोई डिटेल अगर आपको डिस्कस करनी है, स्वप्निल से आप बात कर सकते हैं. स्वप्निल शाह का नंबर है 0224394736. इट्स 0224394736. एंड हमारा पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा. पॉडकास्ट में हमने इस बार शनि लाल के साथ बात की. शनि लाल वैसे ये LGBTQ राइट्स को लेके इन्होंने बातें की है. रेसिज्म के बारे में इन्होंने बातें की है. द सर्च फॉर इक्वेलिटी इसके बारे में भी इन्होंने बातें की है. वैसे अपने आप को ये डिस्क्राइब करते हैं एज अ ट्रांसजेंडर. एक प्रोमिनेंट फिगर है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड में. जर्नलिस्ट भी है, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है एंड अपने ये बेस्ट जाने जाते हैं कन्वर्जन थेरेपी एक्शन ग्रुप बनाने के लिए. 5 साल के इन्होंने मूवमेंट यहाँ पे चलाए थे जिसके बाद कन्वर्जन थेरेपी 2022 में इन्होंने बैन करवाया था. अब कन्वर्जन थेरेपी ऐसे वर्ड्स हमें कई बार पता भी नहीं होते कि ये सब है क्या, जिस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा. लाइक कन्वर्जन थेरेपी में लेस ऑफ थेरेपी, इट वाज मोर ऑफ टॉर्चर. इट वाज किसी को कन्वर्ट करना. एंड वैसे ये 2023 में यंग न्यूजीलैंडर भी रह चुके हैं. तो इन्होंने बातें की अबाउट द बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी कि कैसे ये जो हार्मफुल प्रैक्टिस थी इन न्यूजीलैंड इसको एंड किया गया. फिर इन्होंने कुछ मिथ्स के बारे में बातें की जहाँ पे इन्होंने वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एंड ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने बताया यहाँ पे. एंड ऑल्सो इन्होंने खुल के, मतलब क्योंकि अनफिल्टर्ड था तो इन्होंने खुल के बातें की फ्रॉम डीलिंग विद पब्लिक ऑपोजिशन फ्रॉम ग्रुप्स लाइक डेस्टिनी चर्च हो गया. एंड देन ही नेविगेटेड फ्यू फोबियाज एज वेल. काफ़ी लोगों को जो फोबियाज होते हैं उसके बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में इन्होंने बातें की है. कल्चर कम्युनिटी के बारे में इन्होंने बातें की है कि कैसे खुद की ही कम्युनिटी में एक कैंसल कल्चर है कि इनको ये राइट नहीं दिया जाएगा, ये वहाँ नहीं जा पाएंगे. मतलब ऐसी चीज़ें जो है वो भी कैसे कैसे फेस करनी पड़ी हैं. एंड ऑल्सो इनके लिए इनका फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा वाइटल रहा है. एंड खुल के अपनी आइडेंटिटी बताना कि वो ये हैं, वहाँ पर फैमिली सपोर्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो ही टॉक्ड अबाउट द फैमिली सपोर्ट एज वेल. एंड ऑल्सो ए कॉमन मैन, मतलब कि आप और हम कैसे चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके अगेंस्ट हम खड़े हो सके, तो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे वे से यहाँ पे शेयर किया है. सो इस पॉडकास्ट को सुनना है आप रोवा पे सर्च कीजिए अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़वे, आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा, आपको टॉप पे ये एपिसोड मिल जाएगा. अदरवाइज आप स्पॉटिफाई पे सर्च कीजिए, अमेजोन म्यूजिक पे, एप्पल म्यूजिक पे भी आप सर्च कीजिए. अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 12.1 और आज को ओवरनाइट 4 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. फुल चिली वेदर. और कल 3 डिग्रीज तक जाएगा. सनसेट आज का 5:33.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Good afternoon. Drive show आपके लिए शुरू हो गया 4:02 on the 27th of July. Hi Sandy.
1: Hi रुज़वी, तुम इतना struggle क्यों कर रहे हो?
0: मैं कहाँ struggle कर रहा हूँ?
1: रुज़वी अभी बात पता कैसे कर रहा था?
0: Struggle आप कर रहे थे Sandy बात करने के लिए. मेरा struggle बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया मेरे को लग रहा है.
1: हाँ वही मेरी हंसी आ गई.
0: बस दिखाई दी आपको.
1: हाँ रुज़वी ने अभी जो आपसे बात की ना वो आधा बैठा था आधा खड़ा था.
0: मैं कितनी कुछ चीजें साथ में मैनेज करता. एक तो आप इतना लाउड सुनते हो हेडफोन पे. बाप रे मेरे को तो डाउट है कि मेरे को लग रहा है और 10 साल आपके कान अगर चल गए बहुत बड़ी बात है.
1: ऐसा लग रहा है तुम्हें.
0: या
1: एनीवेज
0: ज्यादा लाउड मेरे को ये बात पूछनी है एक्चुअली. चलो इसी से शुरुआत कि हाउ लाउड डू यू लिसन टू, लाइक मतलब
1: इतना लाउड आप सुनते हो कि बाहर सुनाई दे
0: गाड़ी के बाहर.
1: मेरे को लगता है हेडफोन टू हेडफोन डिपेंड करता है.
0: आप गाड़ी की बात कर रहे हो हेडफोन की बात कर रहे हो?
1: हेडफोन की.
0: हेडफोन में बात कर रहे हो? हाँ तो वो कुछ जो महंगे वाले हेडफोन होते हैं
1: नॉइज कैंसिलेशन वाले.
0: नहीं नहीं उसमें बाहर नहीं सुनाई देता है ना बिल्कुल.
1: या
0: वही सस्ते वालों में बाहर सुनाई देता है.
1: ओके सो या बता सकते हैं आपने कितना महंगा हेडफोन खरीद के रखा है रुज़वी की तरह? हैव यू स्पेंट लाइक कितना $600 समथिंग? क्या रुज़वी चुपना चाहिए ना तुम्हें वो बार बार. $600 वर्थ ऑफ हेडफोन सिर्फ हेडफोन आपने भी खरीद के रखे है जो मे बी 2 या 3 सेट आपके पास ऐसे पड़े होंगे.
0: 2 या 3 सेट.
1: तुम्हारे पास कितने सेट्स है हेडफोन के?
0: एक ही है.
1: एक ही है क्या?
0: मतलब बाकी सारे जो है वो ऐसे सस्ते वाले ना.
1: हाँ लेकिन है
0: बट
1: ना.
0: अभी प्रॉब्लम ये हो गया ना कि जो महंगे वाले लिए मैंने अब वो यूज ही नहीं हो रहे.
1: क्यों?
0: क्योंकि मैं वो एक्चुअली वो हेडफोन्स है.
1: हाँ.
0: ठीक है तो उसका ऐसा ऊपर से ऐसा पट्टा जाता है.
1: तो अच्छा है ना आधे बाल दिखाई नहीं देते.
0: उसके कारण जो है वो भी
1: तो अच्छा हो रहा है ना. देन
0: नहीं बट वो हमेशा थोड़ी हेडफोन पहन के बाहर घूमता हूँ ना मैं. तो जब निकालता हूँ तब वो वहां पे कुछ होता ही नहीं है. सब बंजर ही बंजर होता है.
1: Anyway guys, आप भी बताइए आप हेडफोन आपने कितना महंगा हेडफोन खरीद के रखा है.
0: ये टॉपिक ये नहीं मैंने छेड़ा था.
1: मेरे को तो जानना है कितना महंगा हेडफोन है किसी के पास. 600 से ऊपर. हाँ 600 से ऊपर का किसी का हेडफोन है कि नहीं?
0: आराम से होगा सैंडी. नॉर्मल होता है स्टार्टिंग होता है 600 पे.
1: ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग $30 होते हैं.
0: वो ईयरफोन आप बोल रहे हो.
1: हाँ जो भी है $30 से शुरू करते है
0: ये. आप वो जो सस्ती वाली वेबसाइट से उस पे से अगर आप लोगे तो आपको
1: यहाँ भी मिलते हैं. ऐसा नहीं है शॉप में जाके भी मिलते हैं.
0: वो वहां से ही लिया हुआ होता है.
1: या
0: वेबसाइट से भी ऑर्डर किया होता है वो. एनीवे आपसे और भी बातें करेंगे. सुनते रहिए हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस आवर विद यंग एजे. यंग एजे एंड रॉकिंग गोली. अरे क्या नाम है यार ये.
1: गाना नहीं पता तुम्हें क्या?
0: ये अपना गाना है क्या? अरे क्या बात है. मैं कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि जो इंडियाज़ गॉट लेटेस्ट में जो गाना बजेगा उसको मैं ऑन एयर रेडियो पे कभी बजा पाऊंगा.
1: देखो ट्रेंड ये होता है.

0: फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और प्लस इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी करते हैं. एक न्यूज जो हाथ लगी है वो ये है कि एक सिंक होल है ये ऑकलैंड स्ट्रीट पे ओपन अप हो चुका है. तो ऑकलैंड सिटी में आप अगर जाए तो संभाल के कहीं पे भी धस सकते हो ना. तो
3: एक्चुअली मैं न्यूज़ ये भी उसमें ये भी लिखा है उसमें कि एक गाड़ी की साइज जितना सिंक होल है ये.
2: गाड़ी के साइज जितना है ना. यहाँ पे सपना का मैसेज है अमेजिंग शो थरली एंजॉयड. कौन सा ये आपका संडे वाला शो.
3: नहीं नहीं राहत फतेह अली खान.
2: अच्छा राहत फतेह. आपका संडे का शो कैसा गया यार.
3: अच्छा गया. हाँ
2: अच्छा.
3: मैं तो अब तक भूल ही गई थी.
2: हमको वही अभी जानना है यहाँ पे कि अगर आपने संडे का शो सुना सैंडी का तो प्लीज यहाँ पे हमें कॉल करके बताइए.
3: मैंने सैटरडे से शुरू कर दी थी.
2: हाँ सैटरडे को सुना आपकी शायरी काफी.
3: तो तभी से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और संडे तक कंटिन्यू रखा. दिस वॉज अ शायरी वीकेंड.
2: शायरी वीकेंड था आपका.
3: या पर राहत फतेह अली खान एंड शाजमान अली खान क्या परफॉर्म करते हैं.
2: बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था.
3: बहुत अच्छा परफॉर्मेंस.
2: मेरे को ऑनेस्टली ये बार का जो स्टेज एंड जो लाइट्स और वो जो इफेक्ट था आई थिंक इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. द स्टेज आल्सो इज अमेजिंग लाइक द लाइट्स बिहाइंड वो स्क्रीन. आपने देखा वो प्लेटफॉर्म बनाया था उन्होंने और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एलईडी थे.
3: हाँ जिस वजह से म्यूजिशियंस जो बैठे थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मेरे को उनका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा. सो यू नो तबला के लिए डिफरेंट जगह है, सितार के लिए डिफरेंट जगह है, गिटारिस्ट के लिए डिफरेंट जगह है. सो दे हैड देयर स्पेसिफिक प्लेसेस.
2: ड्रम्स अलग थे पीछे से.
3: ड्रम्स अलग थे. सो मतलब ऐसा नहीं कि सब लाइन में बैठे थे. मतलब हर किसी की अपनी अपनी स्टेज थी.
2: या दैट्स राइट.
3: इस वजह से था एंड इट वाज वेरी नाइस प्रोडक्शन आई विल से. क्या होता है ना एक शो को देखने का मजा और भी मेरे को लगता है कि डबल हो जाता है व्हेन द प्रोडक्शन द लाइटिंग इज वेरी गुड.
2: पीपल आर एंजॉयिंग. मतलब मैं देख रहा था मुझे लग रहा है ना पीपल जो बालकनी में होते हैं वो ज्यादा एंजॉय करते हैं कॉन्सर्ट. क्योंकि वो लोग वहां पे मस्त नाच रहे वाच रहे और हम लोग आगे ऊपर बैठे थे. और वहां पे हर कोई सिर्फ बैठा ही है. और मेरे को ऐसा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि यार मैं अभी यहाँ पे नाचूं.
3: यहाँ पे तो नाचना चाहिए
2: बट कैसे मतलब.
3: या एंड इमेजिन अभी राहत फतेह अली खान की तबीयत ठीक नहीं थी.
2: अरे हाँ वो यार बहुत मतलब बार बार वो टिश्यू यूज कर रहे थे. क्या कोविड है.
3: कोल्ड है.
2: हाँ
3: या नॉट कोविड.
2: नहीं बीमारियां
3: ट्रस्टर ही ना जाएगा. नहीं तो
2: बीमारियां बहुत. और मैं जब राहत फतेह अली खान परफॉर्म कर रहे थे ना तो मैं वही सोच रहा था कि यार इमेजिन लाइक फॉर हिम ही इज नॉट वेल.
3: या
2: बट हमारे लिए तो वो शो हो रहा है ना.
3: या
2: एंड ही इज ही हैज टू बी टॉप ऑफ हिज गेम. और हमें गानों में से कभी भी लगा नहीं ऐसा कि वो बीमार है.
3: एंड द कवालीज में तो कितनी आपकी एफर्ट लगते हैं.
2: नॉट वंस ऑन स्टेज ही मेंशनड आल्सो दैट ही इज नॉट वेल और समथिंग. कुछ नहीं मेंशन किया. बिकॉज़ इट डजंट मैटर ना द शो मस्ट गो ऑन.
3: या वो बस आए परफॉर्म किया और गए. That's it.
2: It was outstanding. Yeah.
3: Outstanding.
2: Really, really, what a performer. And yeah, his son also is really good. अब देख रहे हो जब भी उसके उनके बेटे गा रहे थे तो वो ऐसे उसको बोल रहे थे शाबाश ऐसे कर रहे थे.
3: शाबाश
2: और जब भी वो शाबाश कर रहे तभी उनका बेटा उनके पाव पड़ रहा है.
3: Yeah, wow man.
2: Like you know that was one thing.
3: Because he's not just a father for him, na ek guru bhi hai jisse wo seekh rahe hai.
2: That's right.
3: तो एक वो भी level का आ जाता है. एंड गाइज आज यहाँ पे 5 बजे के बाद आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं रिगार्डिंग आवर ट्रिप बाली एंड बैंकॉक. देयर इज समथिंग एडिशनल टू इट. सो इसके बारे में हम थोड़ी देर में और खुलासा करेंगे 5 बजे के बाद.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
4: गुड्डी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी यहाँ पे लेकर आते हैं आपके लिए. Well, आपसे आज बात करनी है अबाउट एक टॉपिक और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे.
1: It's about finance.
0: It is
1: financial position.
0: Financial position and it's also relevant to today's time क्योंकि हम बात कर रहे हैं about millennials and Gen Zs.
1: Yes.
0: And this is one thing that is common between both.
1: Yeah. और बहुत सारी चीजें चाहे different होगी लेकिन ये चीज common है.
0: और ये जो आर्टिकल है RNZ पे आया है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ Gen Z एंड मिलेनियल्स डिले लाइफ डिसीजंस ओवर फाइनेंसेस. और मैं तो बहुत अग्री करता हूँ ये चीज से.
1: मुझे भी लगता है.
0: तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि क्या आपने कभी जो आपके लाइफ डिसीजंस है जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ डिसीजन इज टू गेट मैरिड.
1: Yeah, काफी है लिस्ट.
0: To buy a house.
1: Buy a house, get married, having children,
0: yeah.
1: Moving cities for work. Changing careers.
0: Overseas experience करना है समझो.
1: Yeah, starting a business.
0: Oh yeah, business start करना है, right.
1: So even all these kind of decisions जो है ये आपके basically जो आपके जिंदगी के साथ जुड़े हुए decision होते हैं ये सारे के सारे.
0: तो 0800-004-866 इसके ऊपर आप कॉल कीजिए और आप बताइए कि क्या आपको इनमें से कोई ऐसे decisions डीले करने पड़े because of finances.
1: And इसका reason ये बोला गया है कि sometimes people feel कि they are not financially secure enough to take the next step.
0: Yeah.
1: ये मुझे लगता है कि काफी होता है. ये मेरे को लगता है कि family planning में this is one of the
0: top thing है 100%.
1: And valid भी है.
0: क्योंकि
1: for the valid reasons.
0: क्योंकि देखो हम हमेशा कहते हैं ना like देखो शादी भी काफी लोगों के लिए is becomes a bit expensive affair.
1: Yeah.
0: क्योंकि कुछ लोगों के जो शादियाँ होती है वो शादी भी काफी lavish होती है काफी बड़ी होती है जहाँ पे more than 100,000-200,000 लोग स्पेंड करते हैं बिकॉज उन्होंने अटेंड भी की होती है उतनी बड़ी बड़ी शादियां तो उनको देनी भी होती उतनी बड़ी शादियां. नहीं होता ऐसा.
1: यू
0: नो यू हैव टू मीट
1: cater to
0: द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट
1: ऑफ द सोसाइटी.
0: सो लॉट ऑफ टाइम्स वो तो एक होता ही है उसके कारण काफी लोग शादी डिले कर लेते हैं. प्लस उसके बाद आजकल ये भी हो जाता है ना कि हर एक चीज इंस्टाग्राम पे भी जानी होती है तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट एक
1: सेरेमनी.
0: नहीं वो रिंग भी परफेक्ट रिंग भी जमा करने मतलब रिंग के लिए भी पैसे
1: होनी चाहिए
0: और वो उसके लिए पैसा जमा करने के लिए भी थोड़ा टाइम ऐसा रुकना पड़ता होगा ना.
1: सो एनीवे गाइस आप भी बताइए यहाँ पे डू यू रिलेट विद दिस. हाउ डू यू रिलेट विद दिस. आपने कभी अपने लाइफ डिसीजंस डू यू डू दिस अकॉर्डिंग टू द पोस्टपोन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस. एंड इसका ये भी रीजन बताया आर्टिकल में रुजबे कि सेवरल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक हाई हाउस प्राइसेस एंड राइजिंग रेंट्स.
0: हाँ लाइक फॉर एग्जांपल
1: इन्फ्लेशन एंड एवरीडे लिविंग कॉस्ट.
0: साउथ एशियन फैमिलीज में यूजुअली ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो फिर तुम मतलब यू नो काफी बार
1: लड़की वाले पहले तो यही पूछेंगे ना घर है
0: कि नहीं है.
1: yeah.
0: एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है वो.
1: yeah.
0: और अगर लड़की को यहाँ पे आना है सात समुंदर पार तो और भी फिर वो लोग फिकर में होते हैं ना कि भाई ये जहाँ पे जा रही है सही होगा कि नहीं होगा.
1: क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आते कोई जॉब शुरू कर देगा जब कुछ ऐसा हो जाएगा. यू हैव टू बी वेरी सिक्योर फॉर द फाइनेंशियली सिक्योर फॉर द नेक्स्ट पर्सन
0: ताकि यू कैन हैंडल द अदर पर्सन एटलीस्ट यू नो यू कैन एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 months और व्हाटएवर. जब तक एक वीजा प्रॉपर नहीं मिलता है या जब तक जॉब नहीं मिलता है प्रॉपर एक. और अभी ऐसे मार्केट में तो पता भी नहीं कि वो 6 महीने कब 12 महीने हो जाते हैं या यू नो 1.5-2 साल भी हो जाता है काफी बार.
1: सो यहाँ पे आप भी शेयर कर सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके भी शेयर कर सकते हैं. देर कैन बी मैनी फैक्टर्स रिगार्डिंग दिस अनसर्टेनिटी का फिर लोगों को होती है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इनकम के बारे में कि सिक्योर जॉब नहीं है अभी या फिर डिफ़िकल्टी सेविंग वाइल पेइंग फॉर असेंशियल्स. ये भी फैक्टर बताया गया है. सो आई हैव यू फेस्ड इट आर यू फेसिंग इट.
0: हाउ हैव यू ओवरकम इट. ये भी आप बता सकते हो ना कि काफी बार ऐसा होता है कि ओवरकम भी कर लेते हैं ना. अभी लाइक फॉर एग्जांपल काफी बार स्ट्रेस होता है कि बच्चे इतना महंगा होता है बच्चों का मतलब डायपर का ही खर्चा इतना ज्यादा होता है सुना है ऐसा मैंने. तो जो जो यंग कपल्स है वो काफी बार सोचते हैं कि भाई चाहिए क्या बच्चा अभी एट दिस स्टेज क्योंकि खर्चे इतने हैं और इकोनॉमी भी ऐसा है. लेकिन फिर काफी लोग का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं यू नो लाइक अगर बच्चा आता है तो लक्ष्मी लेकर आता है आपके जिंदगी में.
1: क्या है कि चीजें तो कई बार जो है खर्चे तो कभी रुकने नहीं वाले हैं ऐसा मेरा टेक होता है. लेकिन चीजें जो है जो आपको लाइफ में करनी है वो आप करते रहो. Whatever you want to do, you just keep on doing it.
0: क्योंकि फिर बायोलॉजिकल क्लॉक भी टिक होता रहता है ना काफी.
1: हाँ हाँ
0: तो फिर उसके कारण भी और मतलब काफी लोग ये भी ऑप्शन चूज करते हैं जहाँ पे यू नो दे फ्रीज देयर एग्स एंड ऑल, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव है.
1: इट इज या मैं जानती हूँ एक को,
0: बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है ना वो भी, और बहुत ही टीडियस प्रोसेस भी है. मतलब इट इज अ वेरी
1: ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे को लगता है रुजवे दिस इज समथिंग वी कैन हैव अ पॉडकास्ट ऑन.
0: अच्छा इसके ऊपर भी पॉडकास्ट करना है. यहाँ पे कोई कॉल नहीं कर रहा है पॉडकास्ट के लिए, कौन आएगा सैंडी यार. 0800-004-866 कॉल कीजिए, यहाँ पे बताइए, शेयर कीजिए यार.
1: ऐसे कौन से और भी डिसीजंस है लाइफ के, घर मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है काफी की जिंदगी में, कि उनका अभी तक किसी ने पहला घर अभी तक नहीं खरीदा है बिकॉज ऑफ कि नहीं कर पा रहे हैं वो अभी. वो भी एक फैक्टर काफ़ी लोगों की, काफ़ी फैमिलीज की लाइफ में यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अपने बच्चों बीवी के साथ भी यहाँ पर है लेकिन रेंट कर रहे हैं अभी तक. तो काफ़ियों के लिए ये भी हो सकता है कि बाइंग द फर्स्ट होम दे अभी तक वो पोस्टपोन कर रहे हैं.
0: हाय गुड आफ्टरनून.
2: हेलो
0: जी.
2: आफ्टरनून
1: जी.
2: ज़्यादा सोच विचार करते हैं जो डिसीजन लेने में दिक्कत होती है.
1: या ओवर एनालिसिस कहते हैं इसको.
2: यस लाइफ फिगर आउट अ वे. बच्चा हो गया कोई बात नहीं, जिंदगी रुकती नहीं है, अच्छा ही होता है.
0: आप कौन से जोन में अभी, मतलब यू आर फादर, यू आर अ फादर.
2: आई एम अ 50 ईयर ओल्ड फादर ऑफ टू टीनेजर गर्ल्स.
0: ओह क्या बात है.
2: एंड व्हेन आई वाज 25 ईयर अर्लियर इन माय माइंड मैं चाहे जितनी कैलकुलेशन कर लूं आई ऑलवेज फाउंड कि नहीं थिंग्स कैन नॉट वर्क आउट.
0: हां डेफिसिट फील होता है ना.
2: आप मतलब बैठ के कैलकुलेशन करते रहो ऑलवेज लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बट लाइक आई से वन थिंग लेड टू अनदर एंड हियर आई एम.
0: क्या बात है. सो योर टेक इज दैट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ.
2: नॉट लीप ऑफ फेथ, लाइक विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स दे हैड सो मेनी किड्स, they did the best they could do for themselves. Look at your parents, look at us. So life finds a way.
1: 100% I agree with you.
0: Nice.
2: मतलब जैसे पुराने पढ़ के लोग नहीं कहते थे कि अगर चोंच दिए तो दाना भी देगा. तो things fall in place.
0: प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि मतलब एक एक वन साइड ऑफ थिंग इज दिस, सेकंड थिंग ऑफ सेकंड साइड ये भी है ना, वो एक और कहावत है ना कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है.
1: वो बाकी चीजों में भी लाइक वो डिपेंड करता है ना कौन सी चीज के बारे में है ये.
0: क्या कह रहे थे आप?
2: क्या कहते हैं आप, अगर इफ यू गो आउट देयर एंड फर्स्ट जॉब पे यू गो एंड बाय योरसेल्फ अ मर्सिडीज बेंज, दैट इज नॉट अ स्मार्ट डिसीजन.
1: एग्जैक्टली.
2: एट द एज ऑफ 25 इवन इफ यू आर ऑन अ लो इनकम रेंटिंग हाउस, लेकिन सही टाइम पे जैसे फैमिली जिस टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए अगर आप उसको पोस्टपोन करते हो देन इट हैज इट्स ओन रिपरकशंस राइट.
1: या
2: बट आगे पीछे generally speaking things fall in place for the most majority of the people
1: if two people are responsible enough for that. So bahut rare cases hai jahan pe the person is not responsible enough to take the responsibility. Fir of course fir aane wali zindagi jo hai wo kharab mat karo.
2: But then fir aage chalke ek stage aisa aata hai ki you can't go back and undo those decisions.
1: Yeah.
0: Right. True. So you take a decision and then make it right.
1: In a right mind, you take the decision.
2: at the end of the day, what I'm trying to say is ki you take a decision rather than just contemplating things.
1: Yeah. This is what I like. Nice.
2: Karam karo, aage sab cheeze sahi honge.
1: 100%.
0: Aur intention sahi rakho life mein. Agar intention sahi rahega, to fir sab sahi hoga. सही है. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका अगर आप शेयर करना चाहो तो?
2: मेरा नाम अरुण है.
0: अरुण थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयर करने के लिए.
1: नाइस चैटिंग विद यू.
2: ऑलराइट
1: थैंक यू बाय बाय.
0: यहाँ पे एक और मैसेज आया, प्रशांत का मैसेज आया. क्या 100% आई अग्री एज सेल्फ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज सुप्रीम इन दिस वर्ल्ड वेयर मटीरियल्स आर इम्पोर्टेंस. मटीरियल इम्पोर्टेंट हो गया ना अभी आजकल
1: बहुत. तो आप भी बताइए अगर आपका कोई डिफरेंट टेक है इसके ऊपर, आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे. 5599 इज ए नंबर.
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी ब्रॉट यू बाय बेड्स आर अस. स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकीकोई. स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली 799 ऑन सेल नाउ. हम एक्यूरेट ट्रैफिक
4: इनोवेटिव इंटीरियर्स योर लक्ज़री वार्डरोब स्पेशलिस्ट. क्लाउडी ओवरनाइट फॉर ऑकलैंड अ लो ऑफ 5 डिग्रीज ऑन द नॉर्दर्न फ्रॉम द सिटी टू सिल्वरडेल टेकिंग 48 मिनट्स. द नॉर्थ वेस्टर्न बिट हीवी वाटर व्यू टू रोज़बैंक टू मैसी इज 29 मिनट्स. ऑन द सदर्न आवर्स इवन टू ड्रूरी एट द मोमेंट 38 टू मनुगो. हीवी हीटिंग नॉर्थ फ्रॉम एलर्सली पेनमुर टू ग्रे Green Lane and south from St Mark's Road to Ellerslie. Southwestern slow from Puhinui Road to the southern.
5: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
9: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. For as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
10: Show us your crack.
11: Ah, Novus.
12: Hi, Kevin Eder here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
13: TradeStaff, industrial employment solution. TradeStaff.
14: टाका नेनी ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और SUVs ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से लीप मोटर डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स ट्रेड-इन्स वेलकम फाइनेंस भी अवेलेबल है विजिट टाका नेनी सुपरसाइट पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुडबाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए और हां ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपके ब्रदर इन लॉ के अलावा टाका नेनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाका नेनी फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Throwback.
1: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. वैसे करुण औजला आ रहे हैं यहाँ पे हमारे सुपर सिटी में परफॉर्म करने के लिए ऑन द 25th August को यहाँ पे आने वाले वो वेनेसडे का दिन है.
2: और इट्स गोना बी एक्चुअली मे नॉट वेनेसडे, इट्स गोना बी ट्यूसडे.
1: ओ ट्यूसडे है. अरे मंगलवार, बहुत ही शुभ दिन पे आ रहे हैं.
2: यस
1: बट शुभ नहीं है ये, करण औजला है जो आ रहे हैं.
2: 25th अगस्त को स्पार्क अरीना में इनका शो रहने वाला है. नाउ यू गॉट अ चांस टू विन अ डबल पास ओवर हियर. आपको डबल पास अगर जीतना है, ड्रॉ में शामिल होना है, आपको करना क्या है, के ए कीवर्ड है एज इन करण औजला, के ए स्पेस आपको बताना है. ये जो वर्ल्ड टूर लेके यहाँ पे आ रहे हैं करण औजला, इस टूर का नाम क्या है? हम बहुत बार इसके बारे में बात करते हैं कि ये वाला टूर लेके आ रहे हैं, इस टूर का नाम क्या है, ये आपको लेके भेजना है 5599 पर.
1: के ए स्पेस आपका आंसर, स्पेस आपका नाम, 5599 इज द नंबर. यहाँ पे आप लिखकर भेज सकते हैं और फटाफट भेजिए यार लिखकर, क्योंकि यू नो वी हैव अ डबल पास टू गिव अवे.
2: डबल पास और बहुत अच्छा शो रहने वाला है इनका. लास्ट टाइम अटेंड किया था, और उसमें तुमने भी अटेंड किया था.
1: मैंने भी अटेंड किया था. अरे मैं क्रेजी हो गया था वो देख के, जो माहौल है और जो मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, भाई नेक्स्ट लेवल
2: हुए गाने,
1: रटे हुए गाने और सब लोग वो बहुत ही. एंड स्पार्क अरीना वेन्यू भी ऐसा ही है कि यू नो अगर आपको आर्टिस्ट के ज्यादा गाने भी नहीं पता तो भी आप एंजॉय करोगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है.
2: माहौल ऐसा है. सो hum.rova.nz पे जाके वैसे भी आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टिकट जीतनी है, के ए स्पेस जो टूर होने वाला है, इस टूर का नाम क्या है, करण औजला के टूर का नाम क्या है, टाइटल क्या है, ये लिख के भेजिए
1: जी, फटाफट भेज दीजिए यहाँ पे. एंड आपको बता दे कि आज 5 बजे के बाद आपके लिए हम पहले तो एक स्पेशल गेस्ट लेकर आने वाले हैं यहाँ पे, जो आपको डिटेल्स देने वाले हैं अबाउट आर बाली एंड बैंकॉक ट्रिप.
2: एंड उसके साथ वो आपको और भी कुछ ऑफर करने वाले हैं.
1: अच्छा, कुछ स्पेशल ऑफर्स भी रहने वाले हैं आज आपके लिए, उसके बारे में जानेंगे. लेकिन उसके बाद हम आपके साथ यहाँ पे, आज मंडे तो सेगमेंट होता है देसी और नॉट सो देसी, और इसमें हम आपके साथ कुछ चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं
2: कि ये देसी बिहेवियर है या फिर ये नॉट सो देसी बिहेवियर है.
1: मेरे पास एक हैबिट है, एक हैबिट नहीं, मेरे पास एक चीज है जो मैंने नोट की है और मुझे जानना है कि इज इट जस्ट देसी बिहेवियर और इज इट नॉट सो देसी बिहेवियर, एंड दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस.
2: ओह वाओ, लेट्स सी.
1: एंड आई रियली वुड लाइक टू नो फ्रॉम आर लिसनर्स एज वेल, मेरे को उनसे जानना है ये इसके बारे में.
2: एंड 6 बजे के बाद आज क्या होने वाला है ट्रेंड मेकर्स में, आज कृति सैनन का बर्थडे है.
1: ओ कृति सैनन का बर्थडे है.
2: सो टुडे वी गोना सेलिब्रेट कृति सैनन's बर्थडे. तो कृति सैनन के गाने बड़े अच्छे हैं यार.
1: एंड कृति सैनन एक्चुअली में उन्होंने मिमी में वो थी ना,
2: मिमी में. या
1: कृति सैनन इज अ लवली एक्टर.
2: या
1: एंड अभी वो प्रोड्यूसर भी बन गई है ना शायद.
2: प्रोड्यूसर भी, उसकी खुद की कंपनी भी है, प्रोडक्शन कंपनी है उसकी.
1: कृति सैनन वही है ना, ये अपना आयुष की कजिन.
2: देखो उसने ऐसा बोला है, हम बोला. नहीं मानते, उसने बात नहीं करवाई.
1: अच्छा
2: है.
1: वो भी है.
2: एक्चुअली
1: आज बर्थडे है
2: केतन के बैंड में.
1: आज बर्थडे है कृति सैनन का, आज तो उसको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि भाई बात करो आज, हमें हैप्पी बर्थडे विश करना है.
2: लेट्स डू इट.
1: ओके चलो, वी विल ट्राई. एनीवे फॉर नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट उदित नारायण सॉन्ग्स, एंड आई एम श्योर काफी लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगता है. बट दिस सॉन्ग इज स्पेशली फॉर यू अगर आप ट्रक चलाते हो.

0: delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
1: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
2: Hello, officer. What's the problem? I mean, I might have been going a bit fast back there, but I know these roads like the back of my hand. I've been driving them for years. The folks who crash on these bends are like out-of-towners. That's not me. I'm a local.
3: Man, mid-40s. He's taken the corner too fast and slid off the road. Suspected head and spinal injuries. Ambo required. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
4: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The Finance Minister expects criteria for walking back fuel relief will be met. We find out on Wednesday if average prices have stayed below $3 for a fourth consecutive week, which is a trigger for Cabinet discussion. But Nicola Willis says it doesn't mean that support will be cut automatically.
6: We will consider whether it is appropriate to remove them, given it may be that we are not in a situation where lower prices are being sustained, but rather we had a welcome blip.
5: Meanwhile, oil prices have fallen following the US decision to pause strikes against Iran. After starting trading at $98 a barrel, Brent crude has dipped to just over $92. The Greens want to give Kiwi firefighters the same protection afforded to their international colleagues. The party has announced a members' bill that would grant them automatic ACC cancer cover. MP Mike Davidson says they're at greater risk of developing cancer from the work they do.
7: And it's only fair that we align our legislation with other countries where firefighters get presumptive cancer cover.
5: More than 97,000 families have received family boost payments, helping with the cost of early childhood education. Nicola Willis has revealed updated figures since the scheme was expanded last year. She says an average of 12,000 families each quarter have received $75 or more weekly towards childcare costs. To sport, three uncapped players in the 44-man All Black squad named to tour South Africa, Moana Pacifica's Simisi Tupou-Tailoa, Siali Loaki and Josh Jacom. Captain Ari Savia will join the squad ahead of the first test on August the 23rd, rugby with Shift 4. And early this evening at the Commonwealth Games, at the pool, one of New Zealand's best, Lewis Clairbert, is in the heats of the 200 metres butterfly.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari koi brand nahi hai.
4: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: Feels like 9 degrees, 10.7 actual temperature hai, and it's going to be a very cold night today. 4 degrees tak overnight temperature rahega, aur kal to aur bhi zyada thanda rehne wala hai. 5:33 ko sunset and kal ka din mila jula sa rahega. Afternoon will be bright, beautiful, sunny tomorrow.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
12: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
9: 5:03. Good evening. You're listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe. Hi, Sandy.
13: Hi, Rusbe. A very, very good evening to you. Power Drive at 5 aapke liye yahan pe shuru ho chuka hai. And today is Desi or Not So Desi.
4: Desi or Not So Desi.
9: Well, Desi or Not So Desi mein aaj main jis चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ. दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू बेसिकली पुट अ सिनेरियो आउट एंड
13: और हमें बोलना है कि देसी है बिहेवियर, ये हैबिट या जो भी है, या फिर नॉट सो देसी बाकी भी करते हैं.
9: गलत हो गया सैंडी. ये सिचुएशनशिप में होना चाहिए मेनली, क्योंकि एक सिचुएशन है उसमें मेरे को जानना है कि आप क्या करोगे. बट एनीवे आई विल टेल यू द सिनेरियो नाउ. आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट राइट.
13: बोला ही है तो चलो बोलो.
9: बोल रही हूं मैं. लेकिन मेरे को ये जानना है कि तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सुपरमार्केट में हो, ठीक है, यू आर वेटिंग इन द क्यू एंड आप देखते हो कि आपके पीछे अभी आप खड़े हो, आपके पास एक बड़ी लंबी ट्रॉली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामान है, आपके पीछे कोई है जिसके हाथ में एक हाथ दो चीज ही है, वुड यू लेट देम गो बिफोर यू?
13: एंड इफ यू लेट देम गो, इज दिस देसी बिहेवियर और नॉट सो देसी बिहेवियर?
9: या
13: मुझे लगता है कि मैंने जितना सो फार एक्सपीरियंस किया है, लेटिंग देम गो इज नॉट सो देसी बिहेवियर.
9: मैंने
13: मतलब देसीज करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन जो देसीज नहीं है वो ज़्यादा करते हैं. मेरे को लगता है कि यहाँ के जो कीवीज है, प्रॉपर जो कीवीज है, वो ज़्यादा करते हैं. ये
9: मैंने मैंने दो तीन बार आई हैव बीन ऑन द अदर साइड जहाँ पे मैं मेरे पास बहुत बड़ी ट्रॉली रही है और कोई और आया ऐसा और जिसके पास हाथ में ऐसे दो तीन चीज़ें, तो मैंने उसको बोला कि यार तू जा ले कर ले क्योंकि तेरा फटाफट हो जाएगा, मेरा ज़्यादा सामान है तो मेरे को टाइम लग जाएगा, तो कहाँ पे तू यार, और प्लस हाथ में भी खड़ा पकड़ के खड़ा है, उसके पास ट्रॉली भी नहीं है. तो मैंने बोला कि तू कर ले, तो वो एकदम ही शॉक हो गया, बोला कि अरे थैंक्स थैंक्स ये वो हो गया. एंड देन कट टू मैं वो सिनेरियो में था जब मेरे हाथ में था सामान और सामने वाले बास्केट में था या कुछ ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट एंड आई वॉज वेटिंग और हम लोग लिटरली टाइमिंग भी हमारा सिमिलर ही हुआ था आने का वहाँ पे, बट मैंने कर्टसी में मैंने बोला कि हाँ चल यू नो
13: तुम आगे जाओ,
9: तुम पहले जाओ, और उसने बेशर्मी से बोला कि हाँ मैं ही पहले जाऊंगा.
13: कईयों को मेरे को लगता है क्लिक भी नहीं करता है ना, इतना
9: क्लिक भी नहीं करता है
13: कि ये करना चाहिए.
9: क्यों नहीं क्लिक कर रहा है ना?
13: क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं होगा. मैंने ये तब किया है जब मेरे साथ हुआ है ये.
9: वो आपके साथ ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस?
13: हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा सामान था तो मेरे को किसी ने आगे लेट गो कर दिया कि तुम पहले जाओ, तो मैंने वहां से सीखा और मैंने ये बाद में किया. सो मे बी वो एक फैक्टर मेरे को लगता है हो सकता है हमारे देसीज के साथ ये फैक्टर हो सकता है स्पेशली बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, धक्का मारना.
9: पहले मैं
13: हम धक्का मार मार के आगे पहुंचते हैं हर जगह पे.
9: मेरी वाइफ को अभी भी गिव वे रूल नहीं समझ में आ रहा है. बोलती है ये क्या है, गिव वे कर देना ही क्यों है? मैं पहले पहुंची तो मैं ही आऊंगी ना आगे. नहीं मजाक कर रहा हूं मैं.
13: या या बट आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से.
9: या
13: सो हम जहां से आते तो हम ऐसा धक्का कर करके, मतलब हमने वही देखा है ना, तो हम आगे, चाहे वो ट्रेन में जाने के लिए धक्का मारना हो, चाहे बस में आगे जाने के लिए धक्का मारना है, कुछ भी, बस के आगे नहीं मतलब अंदर जाने के लिए
9: बस के आगे वो अलग है. बट एनीवे आप यहाँ पे कॉल कीजिए, आप भी शेयर कीजिए. यहाँ पे रोनल का मैसेज है, एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली क्या भाई, देसी है कि नॉट सो देसी बिहेवियर?
13: हाँ ना रोनल, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताओ ना. एब्सोल्युटली नहीं समझ में आया तो कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 हम 0800 004866 पर, कि किसी को वे देना एक सुपरमार्केट में क्यू में, अगर आपके पास ज्यादा सामान है उनके पास कम सामान है, इज इट देसी और नॉट सो देसी बिहेवियर?
9: हाय
14: हाय
9: Good afternoon. Good evening. Hello. How are you?
14: I think it's not so desi. And to be honest, it's a common sense. In my opinion. So it's a courtesy. Like, I mean, if you can do it, I think it's good to pass on the good message. Like, do realize that some desis don't do that. And it happens with me sometimes. But I think
9: kya hua aapke
14: saath, we should do something good. मैं गया था, कई बार जाता हूँ लोकल सुपरमार्केट में, तो लोग ऐसे ना आंखें नीचे कर लेते, देसी लोग ना, उनको लगता है कि हम आंखों में देखेंगे तो हमें देना पड़ेगा ऐसे. भाई तो आगे आ जा.
13: I agree with you.
14: यहाँ तो वो लोग ना आंखें छुपाने लग जाते हैं, पता है हम लोगों को अंदर से महसूस हो रहा होता है कि भाई नहीं करना है, पर वो लोग करते भी नहीं है, फिर वो कहते हैं कि यार नहीं करना है. बट आई थिंक हमें करना चाहिए, और मैं कर देता हूँ कि अगर कोई जैसे अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा है, दूसरा बंदा कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई जैसे ओल्ड लेडी है, तो आई वाज लाइक नहीं तुम ही चले जाओ भाई, अगर ज्यादा भी तो भी उनको आगे कर देता हूँ कि भाई कोई
13: अच्छा एक बात बताइए, जब आप कभी आप वापस अपने होम कंट्री में गए हैं, आपने ये किया है वहाँ पे जाके?
9: वहाँ पे शौक हो जाते हैं,
14: शुरू से ही करता रहा हूँ. आई थिंक ये कॉमन सेंस है. आई थिंक सो. मैं ब्रोटअप ही ऐसे हुआ, तो आई थिंक ये कॉमन सेंस है, होना भी चाहिए.
13: अरे
9: वहाँ पे ना एक बहुत क्रेजी चीज़ हुई मेरे साथ. मैं गया था होम कंट्री, और वहाँ पे मैंने जो ऐसे लेबरर होते ना जो साफ करते हैं ऐसे कुछ ऐसे यू नो, तो मैंने उनको थैंक यू बोल दिया. भाई उसने फुल ऐसा ऑफेंस ले लिया, उसने बोला क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या मेरे से, ये थैंक यू क्यों बोल रहा है मेरे को? मैं बोला अरे नहीं मैं थैंक यू बोल रहा हूँ.
14: मुझे आज तक एक ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कि अगर मैं किसी को जैसे मानो मैंने लंच पे बुलाया, जैसे बस पे जाते हैं ना, तो मुझे सिर्फ वो ऑफेंड करता है। आज तक मेरा दिमाग समझ नहीं आया, 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ, कि सब लोग अपना अपना पे कर रहे हैं, तो मैंने बोला यार मैं तेरे को बुलाया है तो मैं दूंगा ना, तो इट्स लाइक वो मुझे समझ नहीं आया। पर हम देसियों में तो आ जाता है कि वो उसको पता है कि भाई इसने बुलाया तो ये ऑफेंड हो जाएगा, बट आई थिंक दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट आई कांट गेट माय हेड अराउंड इट। अगर मैंने किसी को डिनर पे रेस्टोरेंट में बुलाया तो वो लोग खड़े होकर खुद कर देने लग जाते हैं,
13: वो हम प्राउडली करते हैं ना, दे दूंगा, वी फील प्राउड इन दिस।
14: तो बस मुझे वही चीज समझ में नहीं आई, बाकी मैं सब चल जाता है। आई थिंक अगले 5-6 साल में भी मेरे दिमाग पर आ जाएगा कि भाई,
9: अरे वो आई थिंक मैं ऑनेस्टली बोलू ना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस, जहाँ पे आप पार्टी में बुला रहे हो और हर कोई अपना अपने अपना अपना पे कर रहा है, मेरे को तो वो बहुत सही लगता है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है कि सामने वाला तुमको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कि वो तुम्हारे लिए आया है वहाँ पे, वो खाने के लिए नहीं आया है। If you see from
14: हाँ
13: वो कई बार सिनेरियो डिफरेंट होता है, उस पे डिपेंड करता है।
9: That's right, okay, no perfect, thanks so much for sharing,
13: good one, thank you so much,
9: thank you,
14: no worries यार, thank you,
9: thanks यार, आप भी कॉल कीजिए यहाँ पे 0800-004-866 अगर आप भी कोई किस्सा शेयर करना चाहो तो, हाय आपका स्वागत है, हेलो,
15: हाय रुस्बे एंड सैंडी, अर्शदीप
13: हियर, यस हाय अर्शदीप, कैसे हो?
15: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू गाइस, हाउ इज द वीकेंड?
13: थैंक यू अर्श, मुझे फोटोज एंड वीडियो भेजने के लिए थैंक यू।
9: या आप लोग का प्रमोशन बंद ही नहीं होता है भाई, एक दूसरे का तुम लोग ना,
13: परसों मेरे को रिकॉर्ड कर रही थी रुस्बे।
9: ओ अच्छा,
13: हाँ
9: क्या बात है,
15: कोशिश कर रही थी कि मैं जैसे ही एंटर किया तो मुझे बड़ी फेमिलियर सी आवाज सुनाई दी, आई वाज लाइक सैंडी, मैंने सोचा कि नो व्हेन यू आर बिजी ऑन स्टेज कोई आपकी अच्छी फोटोज और वीडियोज नहीं लेता, तो मैंने सोचा मैं इनको भेज दूँ।
9: देखो मैंने ऑनेस्टली अर्श, मैंने ट्राई किया, लेकिन वो लाइटिंग वाले ने बराबर लाइटिंग नहीं किया था, मेरे को लग रहा है
13: लाइटिंग शो के लिए अच्छा था, लाइटिंग फोटो के लिए प्रोफेशनल फोटो के लिए सही था,
9: एमसी के लिए लाइटिंग नहीं था सही से। एमसी को कभी इज्जत नहीं मिलती है अर्श यार, ये एक
13: अच्छा चलो मूविंग ऑन द एनीवे करंट टॉपिक,
15: आपकी करंट ऑफ सच अ नॉन देसी थिंग टू डू, बिकॉज यहाँ पर जैसे कर्टसी होते हैं ना, तो इंडियंस को तो पता नहीं वैसे ही जल्दी होती कि जैसे उन्हें पनवेल पहुंचना है ना कि जल्दी कर मुझे पनवेल पहुंचना है, हमेशा रश रश में रहते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में है, तो हम ऐसे मैकडोनल्ड्स में गए, तो मैं ऐसे ना जैसे यहाँ पर लाइन अप करती, तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन अप करी हूँ अच्छे सिटीजन की तरह, और लोग पीछे से आके जाके ऑर्डर भी करी जा रहे हैं, एंड वो वर्कर्स भी उनको रोक नहीं रहे कि ये आपसे पहले, यहाँ पर तो अगर कोई ऐसे पुश करे तो वर्कर्स बोल देते ना कि दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो जा रहे, तो मैं देख रही हूँ, मैंने बोला, और मैं ऐसा कन्फ्रंट भी नहीं कर सकती कि मैं यहाँ से खड़ी हूँ समथिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड देन मेरे इंडिया वाली फैमिली आती, बोले यहाँ पर खड़ी रहेगी ना तो इसे शाम तक कुछ नहीं मिलेगा, तो पुश नहीं करता है जो आगे उनको हटा के कुछ जाके अपना ऑर्डर किया ना, आई फेल्ट सो एम्बैरस्ड, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है।
13: वहाँ पे भी, और अगर आपको सड़क भी क्रॉस करनी है, अगर आप क्रॉस नहीं करोगे तो तुम पूरी रात खड़े रह जाओगे वहाँ पे।
9: मेरे डैड मेरे को भी बोलते थे भाई तू यहाँ पे गाड़ी चलाएगा तू सबको जाने ही देगा, जाएगा ही नहीं कभी आगे।
15: और एक वो था कि देला कि आपका साफ पता चल जाए, एवरी टाइम कुछ भी होता थैंक यू बोले, कितना थैंक यू बोलते हो तुम दिन में।
9: हाँ हाँ वो इरिटेट होने लगता है काफी बार कि तुम बहुत थैंक यू बोल रहे हो, बहुत थैंक यू और बहुत प्लीज बोल रहे हो, ये क्या
13: सॉरी थैंक यू प्लीज
15: थैंक यू, तो ऐसे जैसे किसी ने आपको दे दिया भी फूड वगैरह थैंक यू, तो वो भी हमें देखते हैं क्या किया मैंने ऐसा
9: मैं तो अपना काम ही कर रहा था थैंक यू अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ तो रोनल बोल रहे थे नॉट सो देसी बिहेवियर,
13: तो आप भी शेयर कर सकते हैं 5599 पर। और सो रुस्बे आज बर्थडे भी है किसी का, थर्ड बर्थडे है दविशा क्रिस्टल का फ्रॉम पोकेनो, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू दविशा, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड लव आया फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा एंड मम्मी पापा की ओर से भी, एंड फैमिलीज फ्रॉम फिजी।
9: आज पोकेनो में एक और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है सैंडी, आज केरुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है पोकेनो में।
13: केरुल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू,
9: आंचल की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार और बेस्ट विशेस फॉर टुडे। थोड़ी देर में आपके लिए यहाँ पे हम अनिल भाटिया से बात कराने वाले हैं, जो आपको कोई स्पेशल ऑफर देने वाले हैं फॉर अ नेक्स्ट ट्रिप टू बाली एंड बैंकॉक।
16: यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: accurate traffic.
1: Would you trade in your house?
2: Cloudy overnight for Auckland, a low of 5 degrees. On the northern, it's heavy heading north across the Harbour Bridge. The northwestern slow heading west from St Luke's to Te Ata 2. The southern is heavy southbound from Newmarket to Beards Road and heading north from Ellerslie Panmure to Green Lane. And the southwestern, not too bad this afternoon. Traffic's a bit heavy in both directions through Mangere Bridge.
1: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
3: It's Woolworths Half Price Week. Get Ploughman's Glorious Grains Loaf 700 gram for just $2.09 each and fresh chicken thighs bone-in skin-on for just $5.99 a kg. 1 week only while stocks last. T's and exclusions apply.
4: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
5: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. Ye sona wahi Sona Sansar hai jahan Delhi se lekar Dubai tak ke sabhi gold jewelry designs milte hain. Samjhe?
4: Sona Sansar Papa Toto. Jahan tha वहाँ अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोय टोय.
6: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोय टोय. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
12: To go home. The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
13: Power Drive at 5.
14: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
15: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
16: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe और हमारे साथ यहाँ पे
17: सन टूर से अनिल भाटिया शामिल हो चुके हैं. सन टूर्स के साथ हम यहाँ पे बाली एंड बैंकॉक ये ट्रिप करने वाले हैं एंड यू कैन जॉइन अस फॉर इट्स इनक्रेडिबल और बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप के लिए. तो सबसे पहले अनिल जी से बात करते हैं. हाय अनिल जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग.
18: Good evening to all the Hum FM listeners also. आप लोग कैसे हैं?
17: एकदम फर्स्ट क्लास. सो यू नो
18: बस
17: जी जी बोलिए.
18: जी बोलिए.
16: पहले आप
18: में से गाड़ी निकल जाएगी
17: और हमारा प्लेन निकल जाएगा.
18: नहीं बहुत अच्छा है. एवरीवन इज गेटिंग एक्साइटेड अबाउट इट एंड स्पेशली आई हैव सो मेनी पीपल, दे आर सो एक्साइटेड टू नो दैट दे विल बी ट्रैवलिंग विद two rocking stars of Auckland, that is Rusby and Sandy. So वो तो वैसे ही मस्ती में आ चुके हैं अभी से ही मूड में.
16: क्या बात है.
18: So to keep that thing alive, I just thought, you know, that for the whole month of August, जो भी registrations हमारे पास आएंगी, those people who are joining us on the tour, let's give them a you know note of thanks also by giving them one night accommodation with full breakfast for two people anywhere in New Zealand.
17: Oh wow. So जो भी register करेगा for this trip in the month of August, उनके लिए anywhere in New Zealand you are giving accommodation.
18: Yeah. And so with breakfast. उनको पहुंचना होगा. For instance, they want to go with the family to Rotorua, they can go there. Their accommodation will be sorted out, and this will be definitely a star accommodation. It is not ki aise chota mota motel hoga, because Sun Tour has a level of, you know, status also, and they'd like to do something in style only.
17: Oh, wow.
18: So our accommodation will be handpicked, and you can choose your city, whether it is Rotorua, Tapu, even Queenstown, or Christchurch, or Hammer Springs, wherever you want to go. And it is not limited to you only. You want to pass it on to your parents or something, ki bhai main to ja hi raha hu Bali aur Bangkok ke liye, par main chahta hu ki mere parents ek din ke liye kahin ghum aaye. So this can be transferred to them also.
17: So we just thought, cool.
18: You know, the momentum will keep going aur logon mein build up rahega. So this is an offer from us. So you can choose your city and one night accommodation is on us.
16: This is a great deal, Anil ji. Thank you so much for offering this to our listeners. क्योंकि ये बहुत amazing है और मैंने सुना है कि काफी बच्चे अपने parents को भेजने के लिए भी उत्सुक हैं।
17: Yeah, इस trip में।
18: Yes, I've got a group of 6 people who are wanting to know that, you know, because the parents had their own circle also. So they said कि हमारे parents जा रहे हैं plus उनके दो और friends हैं, can they join? I said why not?
17: अरे
18: so,
17: वाह।
18: It's so fun. हाँ, so yes, the interest is there. If you know, आप लोग का जैसे लोग काम कर रहे हैं, they can't take leave, but on the other hand, they want to send the parents. Then they definitely they are booking for the parents as well, because ours is a very very family friendly tour, and वहाँ पे जो मस्ती होने वाली है, वो तो आप दोनों के हाथ में है.
16: पर
18: giveaways में कमी नहीं होगी. I'm planning a lot of giveaways during the tour for the tour people also.
17: So this is just
18: and
17: a
18: just
17: teaser, we can say.
18: Yeah, जैसे tour चलता रहेगा तो ये नहीं कि वहाँ कोई dull moment होगा. We'll be having every second, third day a giveaway for the people who are on the tour as well.
17: Yeah, तो जैसे अभी अनिल जी ने बताया रुजबे की ऑलरेडी जो अगस्त में बुक कर रहे हैं, देखो आपको अगर टिकट तो खरीदनी है और अगर आप अगस्त में बुक कर लेते हैं, यू विल हैव अकोमोडेशन एनीवेयर इन न्यूजीलैंड विद ब्रेकफास्ट. ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. आप पहले ही एक थोड़ा यू नो घूम फिर रहे हैं यहाँ पे. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इससे आपको हिंट मिल रहा है कि आप और क्या क्या चीज़ें जीत सकते हैं ऑन द ट्रिप एज वेल.
18: Correct. There's lots of other things planned up also. As we go, we'll be talking about them. But yes, just to give you a hint, you know, ki tour ke duran agar kisi ka giveaway nikalta hai, to usko main 1 million Indonesian rupees dunga.
16: क्या बात है.
17: मैं तो 1 million में खुश हो गई थी.
18: वो मिलियनर हो जाएगा वहाँ बाली में जाके.
16: हाँ.
17: Okay.
18: ये मत बोलना कि 1 million dollar चाहिए, मैं 1 million इंडोनेशियन रुपीज दे दूंगा.
17: 1 million इंडोनेशियन रुपीज, अब हर कोई जाके गूगल करेगा सबसे पहले तो जाके.
18: So this is the fun that will be on the tour as well.
17: Very nice.
18: So yes, itineraries काफी लोगों के पास पहुंची हैं, so they all in the discussion. But I will say, to make use of this free gift that we have introduced, they should just register in the month of 3-4 days of this July and August. This will be valid. And इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई draw निकलेगा जिसने register किया. Whoever is registering is entitled to get this voucher.
17: Oh wow, nice.
16: So Anil ji, what is the best number to call you?
18: 0800 for Sun Tours, or you can call me on 0800 478 6 8 6.
17: Okay, इस नंबर पे. एंड
16: 0800 478 6 8 6.
18: हाँ, that becomes 0800 for Sun Tours. So इसमें आप कॉल कर सकते हैं. तो I'll be always available for you.
17: Nice. So guys, remember March 2027 में हम ये ट्रिप करने वाले हैं. March 2027 जो कि ईस्टर वीकेंड रहने वाला है. सो आपका ईस्टर एकदम सॉर्टेड हम करने वाले हैं, जहाँ पे बाली में हम घूमेंगे, बैंकॉक में हम मतलब आपको यहाँ का सब भुला देंगे. ऐसा घूमेंगे वहाँ पे.
16: और ये सब
18: आपको, you will be back by 2nd April.
17: 2nd April को वापस.
16: और ये सब आपको मिलेगा with all 4-5 star accommodation, all food included,
18: breakfast, lunch, dinner, sightseeing, activities भी मैंने इसमें include किए हैं.
17: Yeah.
18: So there are some surprises also, जो कि surprises में ही रहने दो. Otherwise मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर वो मजा नहीं रहेगा.
16: That's right.
18: So there are additional goodies over there, you know. लोग तो सोचते हैं, because compare करते हैं कई बार लोग, just you know, हर एक इंसान का it's right to compare the price,
17: 100%.
18: But they forget that, you know, those things are just airport transfers, hotel and back here. But वहाँ पे जितना खर्चा होता है, you literally will feel that आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है. Breakfast, lunch, dinners and बीच में और भी parties वगैरह हो रही होंगी, They are all sorted out. आप बस चलो और enjoy करो. That's all.
17: क्या बात है?
16: And that is the beauty ना कि आप वहाँ पे stress free घूम रहे हो. फिर आपको कोई ज़्यादा tension नहीं है कि भाई conversion करना है, ये करना है, वो करना है. वो सब hassle वो अनिल जी देख लेंगे वहाँ पे.
18: That is, and I'm there with the tour with you both guys. So any hassles, anything, we are there to solve it out.
17: परफेक्ट परफेक्ट साउंड्स गुड. मेरे को ये बड़ी अच्छी बात लगती है सन टूर्स की कि उनके पास उसी समय सॉल्यूशंस है कि कोई पंगा है बात करो, सॉल्यूशन निकालते हैं.
16: करता धरता साथ में ही हमारे.
18: हाँ, सो वी विल बी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. तो अगेन आई बिफोर आई गो आई जस्ट गिव द नंबर 0800 फॉर सन टूर्स, दैट इज 0800 478686.
17: थैंक यू सो मच अनिल जी.
16: थैंक यू सो मच अनिल जी. और भी बात करेंगे आपसे.
18: हैव अ गुड इवनिंग. बाय.
17: You too.
14: Bollywood's most wanted.
0: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
8: Main laun apna A game.
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
17: वेल आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं. ड्राइव कीवर्ड लिखिएगा 5599 पर तो आपको फॉर्म मिल जाएगा जो आपको फिल करना है टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द आइटनरी जो आप खरीद सकते हैं. एंड आई विल जस्ट से वन थिंग, रुज़बे के लिमिटेड सीट्स है.
16: जी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है एंड ऑल इंक्लूसिव पैकेज आपको मिल रहा है राइट नाउ एट 7995.
17: या
16: व्हिच इंक्लूड्स 4-5 स्टार अकोमोडेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्लाइट टिकट्स भी. और ईस्टर टाइम जो एक एक्सपेंसिव टाइम होता है वैसे भी. और ये सब आप स्टार्ट ऑफ कर सकते हो बाय ओनली पेइंग $500, रजिस्टरिंग योरसेल्फ एंड ऑल्सो गेटिंग वन नाइट अकोमोडेशन
17: एनीवेयर इन न्यूजीलैंड फॉर टू.
16: For two people, one night accommodation and
17: including breakfast
16: आपको मिलेगा ये. तो it's a great deal and जैसे अनिल जी ने अभी हमारे से बात की कि और भी ज़्यादा surprises और भी ज़्यादा
17: $1 million Indonesian rupees
16: जीतने का वहाँ पे मौका मिलेगा आपको. और I think a lot of fun करने का मौका आपको वहाँ पे मिलेगा क्योंकि हम है ही fun, funnable personalities ना, I think.
17: Yeah.
16: So get in touch with Anil Bhatia from Sun Tours.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
1: Get up and Gold Coast.
2: Cloudy overnight for Auckland, a low of 5. On the northern, it's heavy heading north across the Harbour Bridge to Esmond Road. The northwestern is slow heading west, St Luke's to Rosebank. The southern, pretty slow southbound from Newmarket to Highbrook Drive. On the southwestern, we've got reports of a crash on Mangere Bridge. That's affecting southbound traffic, so things are banking back there past Onehunga.
1: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
5: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. For as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
6: Show us your crack.
7: Ah, Novus! The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
8: Here you go.
9: Thank you.
10: I reckon we should do some advertising.
9: Great. I like doing advertising.
10: I love doing advertising.
9: What about?
10: Thomason Does Advertising.
9: And what should it say?
10: Thomason Does Advertising.
9: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
10: Nah, keep it simple, I reckon.
11: Thomason Does Advertising.
12: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
13: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें
12: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
13: पर डेवलपमेंट के पैसे
12: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI
0: Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: आप सुन रहे पावर ड्राइव एट 5 और आज हम आपको एक छोटा सा बिट सुनाने वाले हैं फ्रॉम वन ऑफ द पॉडकास्ट दैट वी डिड दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ टू डू
17: यस
16: इट इज द पॉडकास्ट विद द यंग न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर 2023
17: शनि लाल
16: के साथ हमने बात की अबाउट LGBTQ प्लस राइट्स रेसिज्म रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी चीजों के बारे में बात की एक और चीज के ऊपर हमने बात की एंड
17: और ये टर्म भी हमने पहली बार सुनी थी मैंने तो पहली बार सुनी
16: yeah,
17: थी
16: इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारे टर्म्स हमने पहली बार सुनी है
17: yeah.
16: और हमने वो जेन्युइनली उनको बोला भी कि भाई इसका मतलब क्या है ये समझाओ तो उन्होंने काफी सारे टर्म्स के मतलब हमें समझाए वन सच टर्म दैट वी वांट टू टॉक और वी वांट टू शेयर द इनसाइट्स ऑन रेडियो वेयर एंड इफ यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग एंड यू वांट टू नो मोर तो आप हमारा पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं
17: ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर आपको लिंक मिल जाएगा
16: जी सो अभी हम आपको बताने वाले अबाउट प्यूबर्टी ब्लॉकर्स ये क्या होता है कैसे ये काम करते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर की है शनील ने तो ये सुनिएगा
18: There's the puberty blocker conversation. I mean, the government moved to ban puberty blockers, and then it was found that they didn't actually do it through proper authority, and the courts essentially overruled it. And you know, puberty blockers are essentially given to young people who think that they are trans but aren't sure and cannot make irreversible change to their body.
17: Okay.
18: Puberty blockers are given to them so that puberty halts. Mm-hmm. They get to an age where they can decide whether they want to take further steps. Mm-hmm. And if at 18 a young person goes, actually, I don't think I'm trans, I'm going to come off puberty blocker, puberty resumes.
17: Mm-hmm.
18: If at 18 a young person goes, actually, yeah, I am trans and I want to take further action, then they have the opportunity to take that further action without having their body developed in a way that does not align with their gender identity.
17: Okay.
18: And puberty blockers are given to people kind of for a number of reasons, right? So there are young people in New Zealand who go through and around the world who go through puberty too early. It's a medical condition. They just go through puberty very early. So you can have someone who's 7 years old, you know, having undergone through puberty with the body of someone who's supposed to be 18. So we give those young people puberty blockers to make sure that their puberty actually does not happen too quickly.
17: Okay.
18: And so the government is perfectly fine with that.
17: Mm-hmm.
18: But if it's used to help transgender people, they're like, no, we're going to ban that. So they ban that very specific use of puberty blockers while leaving puberty blockers open for everyone else.
17: Okay.
18: And so there was a quite clear discrimination in there, and the courts basically said, no, you've discriminated quite clearly and you haven't done this through the proper routes. So we're going to take away this ban until...
16: मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट में जो सारी चीज़ें शनील ने बात की है दे वर क्वाइट फॉरेन टू मी एंड टू सैंडी एज वेल, हमें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में. लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हमने लगातार बात की है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है. दे डू एग्जिस्ट, मे बी वी हैव नॉट बीन अराउंड इट एंड दैट्स व्हाई वी थिंक अरे ये ऐसा थोड़ी होता है.
17: It's about educating ourselves as well.
16: And being aware.
17: Being aware about surroundings, and especially Ruzbe, a country mein, we live together with each and every community and we have respect for them.
16: And the point of doing this podcast also is so that hume bhi thoda clarity mile ki bhai actually mein ho raha kya hai. Rather than just judging and being like, are yaar, ye kuch bhi nonsense hai. If we hear from them and understand कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसी भी दिक्कतें हैं.
17: Like growing up, मेरा ये सवाल है कि while growing up, transgenders के बारे में आपको क्या पता था?
16: कुछ
17: idea transgender? हिजड़ा टर्म हमें पता है, उसके बारे में आपने क्या सुना है और आपके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है?
16: इतना ही सुना था कि उनकी जो हाई होती है वो बहुत लगती है,
17: या फिर
16: उनके ब्लेसिंग्स भी
17: बहुत लगते हैं कि कोई भी ओकेजन होता है तो वो आप आते हैं, वो ब्लेस करके जाते हैं. And there are many things we have heard, and maybe iska kasoor hai ki humne jo aaspaas dekha ya jo Bollywood movies mein humne dekha, that's it. Right? Lekin inside kya hai, kisi ki feeling kya hai, and unka wo kya hai ya struggle kya hai, matlab that's a huge thing yaar Ruzbe, jo is podcast mein hume pata chala kya cheeze wo face bhi karte hain.
16: So yeah, so it is something that we would urge you to listen with open mind ki bhai क्या है, मतलब क्या इसमें दिक्कतें, लोगों क्या फेस कर रहे हैं, कुछ लोग जो अफेक्टेड हैं वो क्या फेस कर रहे हैं दिक्कतें. इट इज़ ऑलवेज गुड टू हियर द अदर साइड एंड देन हैव योर जजमेंट अबाउट इट कि ओके कूल, नॉट फॉर मी, और यू नो, और वॉट एवर यू नो, इट कुड बी एनीथिंग ऑन दोस, बट इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दे एटलीस्ट हमें इसके बारे में पता चले, ताकि हम जब चार लोगों के बीच है और कोई इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात कर रहा है तो यू हैव अ फ्यू थिंग्स टू share about as well.
17: Yeah.
16: So I think that is the whole idea of doing these podcasts. इसलिए
17: हमने ये effort लिया, exactly इसलिए हमने ये effort लिया ये podcast करने का. So drive लिख के भेजिए 5599 पर, full episode आपको मिल जाएगा. Otherwise Rova, Spotify, just search Unfiltered with Sandy and Ruzbe.
16: And हमें काफी जिन लोगों ने सुना है ये podcast, उन्होंने काफी बढ़िया feedback भी दिया है और उनको बहुत अच्छा लगा है ये podcast. So yeah, I just say listen to it with an open mind.
17: And you can go and follow Shanil Lal as well. Is S H A N E L space L A L. So, इंस्टा पे जाके आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं.
16: जी, तो ये पॉडकास्ट आप जरूर सुनिएगा. अब थोड़े गाने आपको सुना देते हैं, एंजॉय कीजिए. 6 बजे के बाद आज कृति सानन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उनके लिए डेडिकेटेड एक स्पेशल आवर हम लेकर आ रहे हैं टू सेलिब्रेट कृति सानन्स हैप्पी बर्थडे.

0: अजीज कौर की आवाज सुन रहे थे आप, ये बढ़िया सा गाना ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे देखो अगस्त का महीना भी शुरू ही होने वाला है, वी आर इन द फाइनल वीक ऑफ जुलाई।
1: यस
0: माय गॉड, ये जुलाई महीना मेरे को लग रहा है बहुत फटाफट गया है सैंडी।
1: 7 months आर ओवर एंड आउट,
0: हर महीने यही कह रहे हैं, लेकिन देखो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है मिड ईयर हुआ एंड नाउ जुलाई आल्सो इज ऑलमोस्ट गॉन
1: एंड गरबा सीजन विल बी इन।
0: एग्जैक्टली, सो अगस्त इज हियर एंड दैट मींस गरबा इज गोइंग टू बी इन ट्रेंड नाउ। And we need यार, we need this festivities, we need the celebration, क्योंकि बहुत हो गया यार, मेरे को लग रहा है अभी ना कंप्लेन करना, रोना, चिल्लाना, चीखना, बस हो गया अभी,
1: होता रहेगा सब कुछ यार।
0: Now it's time to enjoy the festivities and go hello.
1: And none other than Raj Gadhvi, ये यहाँ पे पहुँचने वाले हैं।
0: जी, Raj Gadhvi यहाँ पे आ रहे हैं और ये Saturday 1st August को यहाँ पे live perform करने वाले हैं at Mahatma Gandhi Center, which is this Saturday. अगर टिकट लेने हैं आपको तो eventstickets.co.nz पे आप जाके इसके फटाफट टिकट ले लीजिए। आई थिंक वेरी लिमिटेड टिकट वुड बी अवेलेबल, बट महात्मा गांधी सेंटर में ये शो होने वाला है। और स्वप्निल शाह को आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको और कोई इंक्वायरीज है, तो उनका नंबर है 022-439-4736। But yeah, it's going to be one night, one celebration and countless memories. So, ज़रूर आप इस इवेंट का हिस्सा बनिएगा। ये इवेंट आपके लिए न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में ले आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांची ग्रुप। तो गरबा सीजन का किक स्टार्ट कर लीजिए विथ Raj Gadhvi लाइव इन ऑकलैंड ऑन सैटरडे 1st ऑफ ऑगस्ट एट महात्मा गांधी सेंटर।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now. Let's go.
1: 3, 2, 1. Trend makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good evening, Trendmakers. में आपका स्वागत है. Hi, Sandy.
4: Hi, Rizvi. A very, very good evening to you. कैसे हो तुम?
3: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. Sandy, आज Trendmakers में हम कृति सैनन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
4: Yes, कृति सैनन. वैसे दिल्ली की है कृति सैनन.
3: दिल्ली से है?
4: दिल्लीआइट है वो.
3: Yeah. Okay. मैं एक चीज यहाँ पे उनके बारे में पढ़ रहा था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. बेसिकली इनकी जो डेब्यू मूवी थी, डेब्यू मूवी में वैसे तो हमको पता है ना इनकी डेब्यू मूवी
4: हीरो बनते इन बॉलीवुड
3: बट एक्चुअली में उनका उससे पहले डेब्यू हुआ था तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जिसका नाम था निन्नो कड्डिन
4: महेश बाबू के साथ. हाँ,
3: और वहाँ पे देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि उनको शूट करने थे काफी सारे सीन्स, एक्शन सीन्स सी में. और उनको है वाटर फोबिया.
4: उसको स्विमिंग नहीं आती है.
3: स्विमिंग नहीं आती है लेकिन फोबिया भी था. सीवियर फियर ऑफ वाटर था उनको. उनको स्विमिंग भी नहीं आती थी लेकिन बिकॉज शी इज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस एंड इट वॉज हर चांस टू वर्क अक्रॉस विद यू नो महेश बाबू, शी लेट गो ऑफ दैट फियर. मुझे आपसे जानना है आज 0800 004 866 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और बताइए व्हेन वाज दैट मोमेंट जब आपने आपके फियर को लेट गो किया.
4: या कब आपने लेट गो किया? आई थिंक माइन विल बी द हाइट वन.
3: हाइट, आपको भी हाइट का फियर था?
4: या या.
3: तो आपने स्काई डाइव
4: था है या नहीं पता मुझे बट पहले स्काई डाइव से पहले स्काई वॉकिंग.
3: स्काई वॉकिंग
4: या यहाँ पे ऑकलैंड में ना स्काई सिटी.
3: अच्छा.
4: सो उससे पहले मेरे को ऐसा वाला फोबिया था कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ ब्रिज के ऊपर से तो मैं लेफ्ट मोस्ट ब्रिज की मतलब लेफ्ट मोस्ट लेन में मैं ड्राइव नहीं कर सकती अगर मैं ब्रिज के ऊपर ड्राइविंग कर रही हूँ
3: क्योंकि आपको डर लगता
4: तो
3: है.
4: तो वो डर लगता था वहाँ से स्पेशली वो जो अपन नॉर्थ की ओर जाते हैं ना. तो मैं लेफ्ट साइड पे कभी भी ड्राइव नहीं कर पाती थी.
3: यस,
4: क्योंकि ओ गॉड अगर नीचे गिर गई तो क्या होगा ये. इस वे से फॉर जस्ट दैट वन रीजन बट आफ्टर स्काई वॉक इट हेल्प एक्चुअली. अब तो पता भी नहीं चलता है.
3: हाइट का बहुत फियर था. मेरे को हाइट का इतना फियर था कि मेरे को ना मेरी मॉम पंखा साफ करने के लिए ना वो लैडर पे खड़ा करती थी. मेरे को उसके ऊपर खड़े रहने को भी डर लगता था क्योंकि हाइट वो उस पे. बट आई डोंट नो समहाउ मुझे लग रहा है क्लास 11th या 12th में लड़कों के साथ मैं जाता था स्विमिंग क्लास करने के लिए तो वहाँ पे फियर ऑफ वाटर भी निकल गया एंड हाइट भी क्योंकि वहाँ से वो एक फर्स्ट फ्लोर से हर कोई जंप कर रहा था. और ना लड़कों के बीच में ऐसा होता है कि काफी है तुम ये हो जाते हो लाइक कि अरे यू नो तुम्हें भी करना है सेम चीज है अदरवाइज यू नो योर फ्रेंड्स मॉक यू एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो बुलिंग हेल्प मी टू ओवरकम फियर ऑफ हाइट्स.
4: So, अभी बताइए आपका कौन सा फोबिया हमेशा से रहा है या फिर डर आपके अंदर किस चीज का रहा है और आपने उसको कैसे ओवरकम किया तो बताइए यहाँ पे डर के आगे जीत मोमेंट अपना.
3: 0800 004 866 इज द नंबर यू कैन गिव अस अ कॉल. एंड या आज कृति सैनन के बर्थडे पे आप उन्हीं के गाने यहाँ पे सुनने वाले हैं लगातार फॉर द नेक्स्ट आवर. एंजॉय कीजिए 7 बजे तक कृति सैनन के स्पेशल हिट्स.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और आज तो कृति सैनन का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं on the 27th of July.
1: Yes, it is 27 July. कृति सैनन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जैसे कि She's a trained कथक डांसर as well.
0: Oh, क्या बात है.
1: Wow, मतलब not just Bollywood में वो ठुमके जो हमने उनके गाने देखे हैं वैसा वाला just डांस नहीं, कथक उनको अच्छे से आती है.
0: And no wonder her expressions are so gorgeous.
1: Yes.
0: Yeah? क्योंकि वो कथक का जो ट्रेनिंग है, it's all about expressions.
1: Expressions, yeah, eye movements and everything. So, वो उनके बाकी डांस में भी नजर आता है.
0: And in fact, actually, before she got into Bollywood, उन्होंने B.Tech complete किया है. So she's actually completed her B.Tech and she's not didn't drop out. और B.Tech करते करते वो side by side चुपचाप ऑडिशंस और मॉडलिंग भी करती थी ऑन द साइड.
1: ऑडिशन की बात करते हैं और उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कृति सैनन ने ऑडिशन दिया था. सो इट वाज द फर्स्ट ऑडिशन शी गेव एंड उसने बाहर वो जो गाना है उसके ऊपर डांस किया बट और वेकअप सिट के कुछ डायलॉग्स बोले थे बट शी एडमिटेड शी वाज इल प्रिपेयर्ड एट द टाइम एंड डिडंट गेट द रोल.
0: राइट.
1: Okay. And also, मेरे को लगता है height factor भी रहा होगा ना अगर student of the year में
0: सामने वरुण धवन अगर है.
1: वरुण धवन है और सिद्धार्थ के साथ तो चलो ठीक है but वरुण धवन के सामने थोड़ा height, आलिया भट्ट then of course वहाँ पे थोड़ा ले गई, number ले गई.
0: Yeah, yeah, definitely. And आलिया भट्ट I think did quite a justice also to the role.
1: Oh yeah, 100%.
0: She was Shanaya. Shanaya था ना.
1: Shanaya एकदम suit किया था उसके ऊपर.
0: Actually, कृति सैनन पे अभी मैं सोच रहा हूँ कि actually उसको जो roles मिले हैं ना, I think those have defined her even more. Like those have fitted her even better.
1: और जो हम गाने सुन रहे हैं different movies के रुस्बे, अगर तुम देखो कितनी variety of movies की है कृति सैनन ने, romantic role भी किया है and robo का role भी कर लिया बंदी ने.
0: Oh yeah, I love that movie actually.
1: Mimi अलग type of movie थी and सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उसकी movie आई थी राबता,
0: और वो उसी का गाना अभी हम play करने वाले हैं.
1: Even राबता was very good movie.
0: राबता was lovely and I think जितनी सुशांत सिंह राजपूत की तारीफ हुई थी उस movie में उतनी ही कृति सैनन की भी तारीफ हुई थी.
1: Yes.
0: For the role that she played. I think when it comes to expressing the character on screen, I think Kriti Sanan in female leads does a fabulous job.
1: She's very good.
0: So, abhi unke liye unka hi Raabta ye gana aapko suna rahe hai. Arijit aur Nikita Gandhi ki awaaz mein. Enjoy kijiye.

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
2: When it comes to your vehicle, trust is key because, well, no one wants surprises, especially the expensive kind. That's why thousands of Kiwi drivers choose MTA. MTA members are qualified automotive professionals covering everything from servicing and repairs to buying and selling. So whether it's a service, a WAF, or checking that mysterious noise that you're definitely not imagining, look for the bright blue MTA badge at your local automotive business. MTA, keeping Kiwi drivers moving and your vehicle behaving itself.
3: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
4: SIT Online. Learn without limits.
5: डिब्बा खुल गया
6: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे।
7: संजना का डिब्बा खुल गया।
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा, फिर यही तो होगा
7: डिब्बा खुल गया।
8: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस्तमा की लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
12: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
13: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Hub Link, Bollywood's biggest hits. वैसे अगर कृति सरन स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन के साथ काम नहीं कर पाई तो क्या हुआ?
2: भेड़िया में किया.
1: भेड़िया में तो काम किया उन्होंने और भेड़िया में भी बहुत पसंद किया लोगों ने उन्हें.
2: Yes, जहाँ पे हाइट डिफरेंस को एकदम डिफाई किया दोनों ने यार. मतलब लगा नहीं दोनों के बीच में ऐसा हाइट डिफरेंस है.
1: And the role,
2: it was like Salman Khan and Sushmita Sen.
1: Yeah, but the role that she played had a twist to it, and वो बहुत ही अच्छे से justify भी I think
2: yeah. Yeah, मुझे अच्छी लगी थी ये movie. Yeah. भेड़िया.
1: वैसे कृति सनन is also known to be a serial entrepreneur. इन्होंने एक अपना expansive business portfolio बनाया है beyond acting. इनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स और उन्होंने दो पत्ती एक थ्रिलर है नेटफ्लिक्स पे जो आई है उसको इस मूवी को लॉन्च किया था. आई मीन ब्लू बटरफ्लाई को लॉन्च किया था विद दैट मूवी एंड
2: जिसमें डबल रोल किया था कृति सैनन ने.
1: अच्छा डबल. मैंने ये
2: तुमने दो पत्ती नहीं देखी है? ओ माय गॉड अमेजिंग मूवी है ये. इसका रांझन रांझन वो जो गाना है इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ. But I loved the movie. मतलब दो जो double role किया ना is just like सीता एंड गीता. एक का character बहुत ही मासूम और वो है और दूसरी जो है एकदम तेज है चंट है. लेकिन कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है.
1: Right. So दो पत्ती on Netflix is probably a watch for tonight. फिर उनका एक और brand है popular skincare brand है जो उन्होंने co-found किया है उसका नाम है Hyphen. अलॉन्ग विद दैट उन्होंने एक होलिस्टिक फिटनेस एंड वेलनेस ऐप और कम्युनिटी भी लॉन्च किया है जिसका नाम है द ट्राइब एंड उनका एक फैशन अपैरल भी उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है मिस टेकन.
2: सो यार एडवेंचर्स बहुत सारे कृति सैनन के. मतलब उसने प्रॉपरली काम भी शुरू किया और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी द गुड वे अपने आप को बॉलीवुड में रखने के लिए.
1: और वो इतनी मल्टीटास्कर है कि जब वो ये कुछ भी नहीं करती है वो छोटे शॉर्ट पोएम्स और प्रोज लिखती है अपनी पर्सनल जर्नल्स में.
2: अभी रिसेंटली हमने कृति सैनन को कॉकटेल 2 में देखा ना.
1: हाँ यस.
2: एंड उसमें भी अगर देखा जाए तो कृति सैनन की लुक एकदम डिफरेंट है.
1: काफी अलग.
2: वेरी डिफरेंट.
1: सो या कृति सैनन का ये एक और गाना फ्रॉम द मूवी भेड़िया आपके लिए.

0: दो पत्ती का गाना सुन रहे थे आप रंजन ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ट्रेंड मेकर्स. आपके लिए ये शो में हम यूजुअली एक सेलिब्रिटी शाउट आउट या ट्रिब्यूट लेकर आते हैं
1: और आज कृति सेनन का बर्थडे है तो उनके गाने आपके लिए हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं. एंड कृति सेनन ने वैसे और भी ढेर सारा काम किया है. उन्होंने यू नो अवार्ड्स भी जीते हैं. बेस्ट फीमेल डेब्यू उनको मिला था हीरोपंती के लिए एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था उनको मिमी मूवी के लिए.
0: नेशनल अवार्ड मिला है उनको उसके
1: नेशनल
0: लिए.
1: अवार्ड मिला है और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है.
0: ओ फिल्म फेयर अवार्ड भी
1: नेशनल अवार्ड भी उनको मिला दैट शी शेयर्ड विद आलिया भट्ट.
0: राइट राइट
1: आई थिंक इट वाज गंगूबाई काठियावाड़ी शायद से.
0: ओके
1: तो उन्होंने शेयर किया था ये.
0: एक्चुअली मैं हम यू नो यूजुअली इसके बारे में बहुत बात करते थे हम लोग अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. कृति सेनन एक्चुअली इज अ बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन. वो अक्सर वो प्रैक्टिस करती है विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन और वो रिलीजियसली ये प्रैक्टिस करती है. और उन्होंने काफ़ी बार इसके बारे में बात भी की है कि उनकी एक पर्सनल नोटबुक है जिसका नाम है बुक ऑफ ड्रीम्स जहाँ पर वो अपनी स्पेसिफिक करियर गोल्स लिखती है और वो सारी चीज़ें होती है अचीव. एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस यार क्योंकि मेरी भी एक बुक है जिसमें मैं लिखता हूँ या लिखता था गोल्स. अब गोल्स नहीं लिखे जाते यार अभी सिर्फ पीड़ा ही लिखी जाती है. बट यार
1: तू समझ रहे हो ना इसलिए पीड़ा ज्यादा हो रही है. गोल्स लिखो अभी.
0: यू आर राइट यू आर राइट एक्चुअली गोल्स
1: यू आर राइटिंग दोस थिंग्स.
0: अभी फोकस करना पड़ेगा ऑन द पॉजिटिव्स.
1: या
0: ग्रेट लेसन यार व्हाइल डूइंग द शो. एनीवे दैट्स व्हाई कॉल दिस अ थेरेपी सेशन फॉर मी. वेल लेकिन उन्हीं की एक मूवी कार्तिक आर्यन के साथ भी इन्होंने काम किया. एक्चुअली सारे
1: लुका छुपी आई लव दैट मूवी यार.
0: या एंड काफी यंग एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है ना मतलब कार्तिक आर्यन वरुण धवन
1: टाइगर श्रॉफ
0: देन सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था.
1: पंकज त्रिपाठी के साथ भी काम किया है ना.
0: दैट्स राइट यस.
1: सो डिफरेंट रोल्स के लेकिन मेरे को ये मूवी भी बड़ी अच्छी लगी थी लुका छुपी. मतलब अच्छी कहानी थी. इसमें अपना लिव इन रिलेशन जो है ये छुपाते हैं घर वालों से एंड ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनकी शादी हो गई है
0: और फिर वो एक नोजी नेबर आके पूरा भांडा फोड़ती है ना.
1: इसमें भी पंकज त्रिपाठी है ना.
0: एक्चुअली पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन ने बहुत काम किया
1: साथ में. सो दिस इज वेरी एंटरटेनिंग मूवी. अगर आप जैसा हंसना चाहते हो ना वैसी वाली मूवी है ये.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज कृति सनन के गाने आप सुन रहे हैं लगातार बैक टू बैक ऑन ट्रेंड मेकर्स।
1: यस एंड कृति सनन का अभी जो गाना सुनने वाला है ये रिसेंटली अभी मूवी आई थी ना तेरे इश्क में,
0: इसमें भी बहुत पावरफुल रोल था कृति सनन का। मैंने ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ये मूवी पूरी नहीं देख पाया हूं क्योंकि there's been some, मैं जब भी चालू करता हूँ कुछ ना कुछ आ जाता है। बट मैंने जितना स्टार्ट देखा है इट वॉज क्वाइट कैप्टिवेटिंग एंड वेरी एंगेजिंग।
1: सो रंजना मूवी जिन्होंने बनाई थी उन्होंने इस मूवी को बनाया, आनंद एल राय ने इस मूवी को बनाया एंड रंजना में भी धनुष को लिया था उन्होंने। सो इसीलिए इस मूवी को उन्हीं के साथ बनाया था। इट्स अ साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ थ्रिलर मूवी ये कह सकते हैं इस मूवी के बारे में। सो यस इस मूवी का ये गाना भी सुनते हैं एंड कृति सनन का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कृति सनन को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर। यू नेवर नो आपके मैसेज उन तक हम पहुँचा दें।
0: या एब्सोल्युटली। वैसे हमने मिमी के बारे में बात की लेकिन जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मिमी ये रोल के लिए उन्हें जो नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एब्सोल्युटली डिजर्विंग था। उन्होंने इंटेंशनली गेन किए थे 15 किलो उस रोल के लिए क्योंकि उनको वो बिलीवेबल पोर्ट्रे करना था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो है और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के भी कुछ सीन्स थे उसमें। तो उनको वो फेक पैडिंग और वो सारी चीजें थोड़ी अवॉइड करनी थी तो इसलिए उन्होंने 15 किलो एक्चुअली में गेन कर लिया था। दैट इज क्वाइट अ टास्क का, मतलब गेन करना नहीं बट उसको फिर उतारना। So, yeah, it is,
1: क्योंकि गेन करना इजी रहता है ना अक्सर, बट इट्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर एक्टर्स बिकॉज़ क्या होता है कि एक्टर्स का कंटिन्यूअसली एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम होता है
0: और वही उनके साथ हुआ क्योंकि वो साइमल्टेनियसली दूसरे इसके लिए भी शूट कर रही थी तो उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स पहले कर लिए ताकि वो मिमी के ऊपर हाई कैलोरी मील्स लेकर उनका वो 15 किलो गेन कर सके। So yeah, that was all about Kriti Sanan and there's even more, but time इतना ही था हमारे पास आज इनके बारे में।
1: So इसी note पे आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहते हैं। कल आपसे मुलाकात होने वाली है 3 बजे मेरी कॉफी ब्रेक में एंड देन रुजबे के साथ भी शायद कॉफी ब्रेक में और होपफुली ड्राइव शो में दिन 4 बजे से।
0: जी जाने से पहले आपको बता देंगे कि हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं हमारे, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। स्पॉटिफाई पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर जहाँ पे भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ पे आपको हमारा अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे मिल जाएगा।
1: हम डिफरेंट टॉपिक्स गाइज लेके आते हैं अनफिल्टर्ड में एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना अनफिल्टर्ड इज जस्ट आउट ऑफ पैशन।
0: इट्स जस्ट आउट ऑफ पैशन, वॉलंटरी हमारा प्रोजेक्ट है ये जहाँ पे हमको पर्सनली जो चीज़ जानने का यू नो क्यूरियोसिटी होता है
1: वो हम पॉडकास्ट में लेके आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जैसे रिलेटेबल माइंड्स बहुत हैं।
0: जी और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानना होगा और उसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आए जिसके ऊपर आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले। विद दैट वी वुड ऑल्सो लाइक टू से कि मिलते हैं कल।
1: या सो इसी नोट पे बाय, टेक केयर।

0: Happy Hour on Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
0: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. The threshold for another look at the government's fuel relief payments is fast approaching. The national average price for 91 has sat just shy of $3 for 3 weeks. New data comes out Wednesday. As more people struggle to make ends meet, financial mentors say they're spending 40% of their time working on KiwiSaver hardship withdrawals. FinCap's latest Voices report shows 1 in 8 clients are seeking help for a KiwiSaver hardship application. A Thames Foursquare and its owner have been ordered to pay $44,000 after making 2 migrant workers pay $60,000 each to secure their jobs. In sport, the new day at the Commonwealth Games is underway. Lawn bowls to start. The Kiwi women's pair in a must-win group match against the unbeaten Welsh. And tomorrow morning, maybe that first goal.

0: हम पर ये नाइट कैफे का सिलसिला जारी है और जबकि आज नो लॉजिक मंडे है तो ऐसे में एक ऐसी ही खबर हमारे हाथ लगी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आरएनजेड ने रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर फेब की ये बात है, जबकि एक एक्सपेक्टिंग मम ने फ्लाइट कैच किया था, डोमेस्टिक फ्लाइट ओकलैंड से लेकर न्यू प्लिमथ तक, और न्यू प्लिमथ में लैंड होते ही मम ने एक हेल्थी बेबी को डिलीवर किया इन द एयरक्राफ्ट। और डिलीवरी के बाद में जब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने पहुंचे तो मम की एक ही वरी थी। मम ने बड़े इनोसेंटली पूछा कि क्या जो बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट है ये प्लेस ऑफ बर्थ न्यू प्लिमथ कहेगा, क्योंकि शी वाज अ प्राउड ओकलैंडर। है ना अजीब बात।
1: लाइट कैफे ऑन हम।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस्तमा की लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
6: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
7: Hum. Night Cafe on Hum.
9: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और जबकि अभी बात हो रही थी एयरक्राफ्ट की, तो एक और एक उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार है, बाली एंड बैंकॉक गेटअवे। जी हां, सैंडी और रुस्बे बिल्कुल तैयारी से बैठे हैं, जबकि मार्च 2027 में दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू बाली एंड बैंकॉक। तो क्या आप इनके साथ में होना चाहते हैं? अभी से ही आपके पास में काफ़ी टाइम है, आप अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जबकि मार्च 2027 में ये फ्लाई करने वाले हैं। और सोचने वाली बात या देखने वाली बात ये रहेगी, क्या आप इनके साथ में जाना चाहते हैं? क्योंकि काफी मजा होने वाला है इस ट्रिप पर, लोग काफी इंजॉय करने वाले हैं। तो ये सभी कुछ आप कर सकते हैं। ड्राइव लिखिए, 5599 पर भेजिए, और यहां से आपको पूरा का पूरा इंक्लूसिव टूर प्राइस मिल जाएगा।

मैं भी आपका साथ दे रहा हूं और ये है नाइट कैफे का प्रोग्राम। और ऐसे ही नो लॉजिक मंडे में एक और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे हाथ लगी थी, जहां पर 2010 वर्ल्ड कप के दौरान यूएसए टीम क्रैश आउट कर गई थी, टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तो इसी जगह पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक हेडलाइन निकाला, दिस स्पोर्ट इज स्टूपिड एनीवे। जब बात करते हैं हेडलाइंस की, तो अक्सर आप देखते होंगे कोई भी आर्टिकल है एक फैंसी या स्ट्रेंज न्यूज़ हेडलाइन को लेकर आती है ताकि आपके अटेंशन को ग्रैब कर सके। लेकिन ये जो हेडलाइन थी, दिस स्पोर्ट इज स्टूपिड एनीवे, ऐसा लग रहा था कि द ग्रेप्स आर सावा, यानी अंगूर खट्टे हैं।

0: to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे में आज है नो लॉजिक मंडे और मैं हूं अभी आपके साथ में. दिस इज द सेकेंड

हाँ, पर मैं अभी आपके साथ में कम्युनिटी न्यूज भी शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके इंटरेस्ट को लेकर आपको मालूम हो आपके आसपास क्या हो रहा है। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपके लिए लेकर आए हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को रहेगी एट बेकनहेड स्काउट्स होल। जितने भी खिलाड़ी हैं, आपको इंटरेस्ट है कैरम खेलने में, आपकी स्किल लेवल किसी भी लेवल पर हो, आपको इनकरेज किया जाता है आप इसमें भाग लें। रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर जाइए या NZCAE के प्रेसिडेंट पंकज को 02109085067 पर कॉल करें।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
4: Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Pizza ovens $129, pressure cookers $89, stand mixers $59, smart Wi-Fi indoor cameras $29. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online. TradeDepot.co.nz.
5: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
6: क्यों क्या हुआ
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 LOGIC G दैट्स 0800-564-424
8: It's Woolworths Half Price Week. Get Makona Coffee Sachets 20-pack for just $7.39 each. And Paseo 4-Ply Ultra Soft Toilet Tissue 6-pack for just $4.90. 1 week only, while stocks last. T's and exclusions apply.
9: It's the final days of Big Save's massive stock liquidation sale. We're overloaded with stock. Our warehouses are full. Our stores are packed. So today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas. Sofas from $7.99. Queen beds from $8.99. Plus get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Everything must go. Only at Big Save.
10: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings like the chiropractic HD Radiate bed now half price queen size from $2,799 find more birthday deals in store and online Beds R Us Medical and Poke Koke celebrating 36 years of great sleep
0: Bollywood ka asli blockbuster
11: pure sheher pe kabza hoga raj hoga
0: playing Bollywood's biggest hits
11: hum
0: night cafe on hum
12: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और यह है नाइट कैफे का सिलसिला जबकि नो लॉजिक मंडे है तो ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में होती रहेंगी लेकिन अभी के लिए आप हमें यानी हमको 104.2 एफएम पर सुन रहे हैं या फिर रोवा पर सुन रहे हैं इसके अलावा एक और एक प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम का फेसबुक पेज आप इसे भी फॉलो कीजिएगा ज़रूर क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है ये हम आपके लिए डालते रहते हैं इसके अलावा ढेर सारे कॉम्पिटिशन बारी बारी से आपके लिए यहाँ पर भी किया जाता है सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक करें शेयर करें फॉलो करें
13: अनुप्रिय

अच्छा, हम पर आपको बता दे, राज गढ़वी के साथ में ओकलैंड में गरबा खेलने का समय आ गया, क्योंकि इनको लेकर आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप, गरबा नाइट विद राज गढ़वी। ये रहेगा 1 अगस्त को, 1 अगस्त को आप महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में इनके साथ में गरबा खेल सकते हैं, इनकी धुनों पर आप नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जबकि कुछ ही दिन बाकी है, तो ऐसे में टिकट्स बहुत जल्द बिक रहे हैं। आपको याद रहे 1 अगस्त को महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में ये जो इवेंट रहेगा, टिकट्स के लिए आपको सिर्फ जाना है events.tickets.co.nz। एक बार फिर से events.tickets.co.nz पर आप जाकर अपने टिकट्स रिजर्व कर सकते हैं, अपने सीट्स सिक्योर कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए स्वप्निल को 022-439-4736 पर आप कॉल करें। वन नाइट वन सेलिब्रेशन और काउंटलेस मेमोरीज टू मेक।

हम पर मैं हूं अवि और आपको बता दे सबके चहीते करण ओजला लेकर आ रहे हैं पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लाइव इन ओकलैंड। जी हां, इन्हें काफी लोग पसंद करते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर है और ये परफॉर्म करने वाले हैं स्पा करीना में ऑन द 25th of August विद ए स्पेशल गेस्ट इकी जो इनके साथ में परफॉर्म करने वाले हैं टू मेक दिस नाइट एन अमेजिंग वन। तो आपके पास में मौका है जबकि स्पा करीना ओकलैंड में ये परफॉर्म करेंगे ऑन द 25th of August। तो ऐसा करना है आपको, यहाँ से आपसे एक सवाल पूछेंगे करण ओजला के बारे में और आप उसका जवाब दें, और जवाब देने से पहले लिखने से पहले आप लेटर्स के ई लिखकर फिर जवाब लिखे और 5599 पर अपने जो मैसेजेस है आप सेंड कर दें। तो अभी के लिए जो डबल पास के लिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको ये बताना होगा कि करण ओजला तो हम इन्हें प्यार से कहते हैं ना, इनका प्यार से नाम हम कहते हैं करण ओजला, लेकिन बर्थ पर इसका असली नाम यानी कि ओरिजिनल नेम क्या था, यही आपको बताना है। तो जवाब लिखें और उससे पहले के ई लिखें और फिर 5599 पर अपने नाम के साथ में भेज दें। और बाकी लोगों के लिए जो टिकट्स आप लेना चाहते हैं, हम rova.nz पर जाइए या फिर livenation.co.nz पर जाइए और इन्फॉर्मेशन और टिकट्स के लिए आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
5: Night Cafe.
7: हम पर यह है नाइट कैफे और सिलसिला है नो लॉजिक मंडे का, और आपके साथ में अक्सर शेयर करते रहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया। तो आज के लिए, अभी के लिए आपको बता दें, बॉलीवुड से एक अमेजिंग फैक्ट हमारे पास में है। जबकि 1988 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेजाब, जिससे माधुरी दीक्षित एक ओवरनाइट सेंसेशन स्टार बन चुकी थी। उसी फिल्म में एक गाना था, 1 2 3, अगर जो आपको याद होगा। और इस गाने के पीछे एक और एक अमेजिंग फन फैक्ट है, जबकि इस गाने को म्यूजिकल कंपोजर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब कंपोज किया था, तो जावेद अख्तर के लिए गाना लिखने में आसानी हो, इसीलिए उन्होंने डमी वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया था अपने गाने में। और जो डमी वर्ड्स थे वो वर्ड्स नहीं, नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 करके उन्होंने ऐसा एक डमी रिकॉर्ड किया, ताकि जावेद अख्तर इन्हें सुने और उनके मुताबिक उस ट्यून को समझकर गाना लिख सके। जावेद अख्तर ने क्या किया, उन्हीं नंबर्स को उन्होंने रहने दिया, क्योंकि उनकी जो रिंग थी नंबर्स की, इन्हें काफ़ी पसंद आई, काफ़ी मेलोडियस लगा। तो जब म्यूजिक कंपोजर्स ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा जबकि आप नंबर्स यूज करेंगे। तो जावेद अख्तर ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इन नंबर्स को मैं नीचे वेसेस में जस्टिफाई भी करूंगा कि मैंने क्यों यूज किया है। और ऐसा करके वो गाना है वो बन चुका है, फेमस भी हो गया है और रिक्रिएट भी हो गया है। तो ऐसा एक अमेजिंग फन फैक्ट नो लॉजिक मंडे में, जबकि इलॉजिकल लग रही थी नंबर्स, लेकिन वहां पर उनको लॉजिकल बनाया है जावेद अख्तर ने।

हम पर कम्युनिटी न्यूज में आपको बता दें, श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में ये है और अखंड रामायण पाठ को ये आयोजन करने जा रहे हैं, जो रहेगा सैटरडे 1st ऑफ अगस्त को, साथ में संडे 2nd ऑफ अगस्त को। तो यहाँ पर जो सैटरडे का प्रोग्राम है, सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में आरंभ होगी। 8:45 AM से जो अखंड रामायण पाठ है, इसकी शुरुआत होगी, जो संडे सुबह 10 बजे तक चलती रहेगी। उसके बाद में हवन एंड आरती, और थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको महाप्रसाद भी सेव किया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए 09836464647 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी, आप तक ला रहे थे कम्युनिटी न्यूज़ के तहत।

0: Coffee on Hum.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: हम पर अभी का साथ है और ये हमारे नाइट कैफे का कारवा का फाइनल आवा है. ऐसे में इस आवा पर भी आपके साथ में ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें और ऐसे ही कुछ गानों को बजाते रहेंगे जो आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल आसानी रहे. बस हम के साथ में जुड़े रहें और इंजॉय कीजिएगा. ये है फाइनल आवा ऑफ नो लॉजिक मंडे और मैं हूँ अभी आपके साथ में.

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: Yeah!

0: बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलैया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: हम पर आपके लिए एक और एक कम्युनिटी न्यूज है, जबकि किवी फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला, जो रहेगी 8th ऑफ अगस्त को ऑन अ सैटरडे। और इसके लिए आपको जाना होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोई में। ये जो ड्रामा है ये आपके लिए रहेगा, और जो टिकट प्राइजेस है $10 पे पर्सन है, बहुत ही जल्द बिक रहे हैं। और जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। और जितने भी स्टॉल्स की आपकी इंक्वायरी है, आप यहाँ पर स्टॉल रखना चाहते हैं, तो मास्टर अशोक को 02117954559 पर कॉल करें।

0: जेट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: MediaWorks complaints. How can I help?
3: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
2: Thank you.
3: It's all I can think about.
2: What does it sound like?
3: Yeah, I'd rather not.
2: Go on, why don't you have a crack?
3: Okay, got a plumbing problem.
2: Oh, I need a bit more than that.
3: They've got your back.
2: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
3: Oh, okay.
4: There's no better plumber to give it a crack.
2: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
3: No, I want a plumber.
5: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए। Shift.

0: Culprits, it's time to demand better. Shift4 delivers lightning-fast transactions and speedy settlements that actually make sense. No confusing financial jargon, just lower fees, quicker cash flow, and 24/7 local support. Make the shift.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
3: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।

0: कैफे ऑन हम।
1: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और यह है नाइट कैफे। आपको एंटरटेन करने के अलावा हमारा एक और एक काम होता है कि आपको अवेयर रखना। और ऐसे में सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में शनील लाल के साथ में, जिन्होंने काफ़ी बातें की हैं खुलकर LGBTQ के राइट्स को लेकर और कैसे इनको एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर इनके बारे में कुछ कम्युनिटी में, सोसाइटी में लोग भला बुरा कहते रहते हैं। तो इन सभी के बारे में डिस्कस किया है शनील लाल ने, काफ़ी खुलकर बातें की हैं और कैसे इनको सपोर्ट दिया जा सकता है और कैसे एज अ कम्युनिटी हमारी माइंडसेट चेंज हो सकती है। सभी कुछ बातें हैं इनकी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में, जिसे सुनने के लिए आप सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें और यहाँ से आपको पूरा ऑडियो का लिंक है जो मिल जाएगा। इसके साथ में एक और एक जो शो है जिसे शायद आप सुबह मिस कर देते होंगे अपने रोस्टा को लेकर, अपने स्केड्यूल को लेकर, तो ब्रेकफास्ट कैचअप, जहां पर विजय और पूजा हर सुबह आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो इसे चेकआउट करने के लिए या फिर इस पर कैचअप करने के लिए BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें।

आज के लिए नाइट कैफे में बस इतना ही। आपने 8 बजे से हमारा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। और यह वादा किए जा रहे हैं कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, जब लेकर आएंगे नाइट कैफे कल ट्यूसडे 8 बजे रात को, तो कल मुलाकात होगी। इन द मीन टाइम आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों का भी ख्याल रखिएगा, और डू टेक केयर। फिर मिलेंगे, बाय।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest FlowMate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.

0: gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Stop Bollywood.
1: हम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: NASA. NASA is the one in Punjabi.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Branchi Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
8: Hey, hello, bhai, hello, hello.
7: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

बढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Everyone knows that trade staff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. Trade staff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 404040 or tradestaff.co.nz.

Night Flight on Hum. वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind. Sirf Rova par.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
5: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
6: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
5: Playing Bollywood's biggest.

0: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Take your furry friends back to their room. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
7: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance centre sales event this Thursday to Sunday.
8: There's thousands of display models, scratch and dent and end of line spa pools, swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
7: This Thursday to Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance centre, 9 Sylvia Park Road.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: द बीट ऑफ बॉलीवुड
10: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: इट्स पी ऑन द ट्रैक लेट्स गो

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
4: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
5: Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

मेरे को भी छुट्टी लेनी पड़ेगी. बट आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट केचप के साथ. और ब्रेकफास्ट केचप में आज सबसे पहले एक हैप्पी न्यूज सनी साइड अप में आपके लिए लेकर आएंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई फील विल स्प्रेड अ लॉट ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी अर्ली इन द मॉर्निंग. तो हमारे साथ बने रहिएगा हमारे सनी साइड अप के लिए.

0: सनी साइड अप।
1: तो चलिए एज प्रॉमिस्ड आज की सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा एंड दिस इज ऑल द वे फ्रॉम टर्की। अपेरेंटली टर्की की ये कहानी जो सोशल मीडिया के जरिए यहाँ न्यूजीलैंड में बैठे बैठे मेरे हाथ लगी एंड आई थॉट कि आज की सुबह की शुरुआत इतनी खूबसूरत कहानी से तो करनी बनती है। एंड दिस इज अबाउट रेज और रिजे, इफ दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड। टर्की में एक छोटी सी जगह है जहाँ पर एक कैट और एक बेसिकली अ स्ट्रे कैट और एक शॉप ओनर जो है उनके बीच की दोस्ती जो है पूरी दुनिया भर में फेमस हो रही है। अपेरेंटली फरहाद हयात जो है ये एक डेयरी स्टोर या शॉप ओनर है बेसिकली, और हर सुबह इनके दुकान के बाहर बड़े पेशेंटली एक लोकल स्ट्रे कैट जो है इनका इंतजार करती है। द मोमेंट ही वॉक्स इन एंड ओपन्स द डोर शी वॉक्स स्ट्रेट टू हिम, एक बहुत ही प्यारा सा वार्म हग ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा यू नो काइंडनेस और लव एक दूसरे को देते हैं, जिसके बाद द स्ट्रे कैट कैरी ऑन्स विद हर डे। इनकी स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी है कि दुनिया भर में इनके बारे में इनके इस बहुत ही अनयूजुअल बॉन्ड के बारे में बातें हो रही हैं। और फरहाद से जब पूछा गया इनकी इस यू नो दोस्ती के बारे में तो उन्होंने कहा कि द फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली अर्न हर ट्रस्ट, सॉरी बहुत गंदी वाली खांसी आ रही मेरे को, एनीवेज तो द फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली अर्न हर ट्रस्ट वॉज थ्रू फूड पेशेंस एंड काइंडनेस। ओवर टाइम उनका ये जो डेली एम्ब्रेस है ये इतना स्पेशल ट्रेडिशन बन गया कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों तक इनकी कहानी ऑनलाइन जो है ये पहुंची। और इनफैक्ट अब जितने भी लोग टर्की जाते हैं और अगर ख़ास तौर पर इस जगह जाते हैं तो वो फरहाद के स्टोर ज़रूर जाते हैं इनका ये ब्यूटीफुल बॉन्ड जो है ये विटनेस करने के लिए। आई थिंक ये कहानी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड लवली रिमाइंडर कि काइंडनेस इज नेवर फॉरगॉटन एंड समटाइम्स छोटे छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जो है आपका किसी से बना देती है। सो ऐसी बहुत सी खूबसूरत कहानियों के साथ हर सुबह की शुरुआत ऑन द ब्रेकफास्ट शो करते हैं जरूर सनी साइड अप में। और अब कल की एक और एक पॉजिटिव स्टोरी तो रहेगी पर थोड़ी देर बाद आज के ग्लोबल हेडलाइंस।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: हे देखो आ गए।
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
5: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
4: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम।
9: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
10: Feed the faith with the 1NZ Warriors range exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
11: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: Danny didn't think he needed a DVS system.
13: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
12: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
13: Nah, only one room. It was just too noisy.
12: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
14: Duck
11: नाकानीनी ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और SUVs ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से लीप मोटर डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स ट्रेड-इन्स वेलकम फाइनेंस भी अवेलेबल है विजिट नाकानीनी सुपर साइट पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुडबाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए और हां ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपके मदर इन लॉ के अलावा नाकानीनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड नाकानीनी फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
0: The beat of Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Global headlines.
1: आज सुबह ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहली खबर फ्रांस और स्पेन में अभी भी काफ़ी बुरी हालातों का सामना किया जा रहा है जबकि डेवेस्टेटिंग वाइल्ड फायर्स की वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं एंड दे हैव बीन एक्चुअली फोर्स्ड टू इवैक्यूएट एज फायर फाइटर्स दे आर वॉकिंग अराउंड द क्लॉक ताकि इस बढ़ती आग को कंट्रोल में लाया जा सके अथॉरिटीज़ ने कहा है कि एक्सट्रीम हीट और ड्राई कंडीशंस की वजह से ऐसे सिचुएशन में आग को कंट्रोल में लाना और मुश्किल होता जा रहा है और इसकी वजह से अभी भी कई सारे कम्युनिटीज हाई अलर्ट पर है दूसरी ओर कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड पर इसका काफी असर पड़ रहा है ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी के कारण स्ट्रेट ऑफ हमोज के आसपास इंटरनेशनल शिपिंग में डिस्ट्रप्शंस फेस किए जा रहे हैं जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं और सप्लाई चेन्स जो कि प्राइस ऑफ गुड्स के मामले में पूरी दुनिया भर में इस पर भी काफ़ी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कहा जा रहा है द यूनाइटेड नेशंस इन्होंने एक वार्निंग जारी की है जिसमें बताया गया है कि वाइल्ड फायर्स हीट वेव्स और अन्य क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जो है आजकल अराउंड द ग्लोब काफ़ी फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं यूएन ने अलग अलग देशों की सरकारों से मांग की है कि वो अपना क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को लेकर और इम्प्रूवमेंट्स जो है ये करें ताकि अपने कंट्री में जो कम्युनिटीज हैं उनको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो आजकल फेस किए जा रहे हैं भारत की खबरों में कहा गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स जो है ये अनाउंस किया है जिसे लीड करेंगे इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन निलकानी और ये रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि वो ऐसे रिफॉर्म्स तैयार करें जिससे कि इंडिया में हो रहे एग्जामिनेशन सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिक्योर और फेयर बनाया जा सके और इसके साथ साथ फिजी की खबरों में कहा जा रहा है कि फिजी में मिनिस्टर फॉर विमेन चिल्ड्रन एंड सोशल प्रोटेक्शन की शशि किरण है जिन्होंने लोगों से मांग की है कि अगर वो कोई भी सिचुएशन ऐसा नोट करते हैं जिसमें वल्नरेबल इंडिविजुअल्स जो है ये अगर शामिल हैं तो उस मामले को वो रिपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें ये मांग तब सामने आई जब एक वायरल वीडियो जिसमें कुछ एल्डरली लोगों को वेस्टर्न डिवीजन ऑफ फिजी में वेस्टर्न डिवीजन में बेग करते देखा गया और इसके कुछ वीडियोज जो है ये सोशल मीडिया पर डाले गए और इसके चलते मिनिस्टर ने यानी शशि किरण ने लोगों को एनकरेज किया है टू हेल्प कनेक्ट दोज इन नीड विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विसेज खेलकूद के खबरों में सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हो रहे हैं फिलहाल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के तहत मीराबाई चानू एक ऐसा नाम जिसने इंडिया को उनका पहला गोल्ड मेडल इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में जिताया है एंड शी इज द स्टार वेट लिफ्टर संडे को हो रहे वेट लिफ्टिंग मैच में जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था शी क्लेम्ड द टॉप पोडियम एंड गेव इंडिया अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द कॉम्पिटिशन और उसके अलावा रग्बी से खबर आ रही है रग्बी रिलेटेड खबरों में स्वायर शिपिंग फिजियन ड्रूआ टीम जो है इन्होंने अपना नया कोच अपॉइंट किया है एंड ही इज नन अदर देन द रिस्पेक्टेड न्यूजीलैंड कोच ब्रेड मोर जो कि हेड कोच है ऑफ द मेन्स टीम अहेड ऑफ द 2027 सुपर रग्बी पैसिफिक सीजन और ब्रेड मोर जिन्होंने साइन किया है एक दो साल का कॉन्ट्रैक्ट या टू ईयर कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे फिजियन ड्रूआ को In September to begin preparations for the new campaign. ये थे आज सुबह के global headlines.
0: Bollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल, चलिए आपको अपडेटेड रखते हैं। और सबसे पहले विक्रांत मसी के बारे में खबरें आ रही हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विक्रांत मसी, इन्होंने अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान को ज्वाइन किया है, जहां पर वो एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। रिपोर्टेडली वो इस फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें अजय देवगन तो है ही, लेकिन मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं किया है कास्टिंग को लेकर। सोर्सेज का मानना है कि विक्रांत ने एक रोल साइन किया है जो बहुत ज़रूरी है, एंड विक्रांत का ग्रे कैरेक्टर जो है एक ऐसा कैरेक्टर रहेगा विच वोंट बी कम्प्लीटली गुड और कम्प्लीटली ईवल, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स के साथ। इनका फेस ऑफ होगा अजय देवगन के साथ, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द फिल्म्स बिगेस्ट हाइलाइट्स। एंड लेट्स सी कि चौहान से रिलेटेड डिटेल्स और भी कब तक सामने आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि ये फिल्म इज इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स, और इसे जियो स्टूडियोज और आनंद एल राय मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग रहेगा इनका ये यू कह सकते हैं कोलेबोरेशन, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर अगर विक्रांत मसी ने अजय देवगन के साथ कोई एक फिल्म में काम की है, तो आई जस्ट क्लियरली डोंट रिमेम्बर। बट एनी वेज, टॉकिंग अबाउट विक्रांत मसी, बहुत ही कमाल के एक्टर है ये, और फिल्मों में आने से पहले टेलीविजन में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस हिज टेलीविजन डेज, और इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम में काम किया है। इनफैक्ट यू नो देयर वाज दिस शो दैट ही डिड, जो आई थिंक थोड़ी ऐसी माइथोलॉजिकल सीरीज थी, आई कॉन्ट रिमेंबर द नेम नाउ, दैट्स द प्रॉब्लम। बट यार मेरी याददाश्त ना सच में बहुत गंदी होती जा रही दिन ब दिन, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, धर्मवीर मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने काम किया था। बट नेवरदलेस, टॉकिंग अबाउट एक शो जो काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, जिसमें विक्रांत मसी ने काम किया था, ही प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द मूवी, और उतना बड़ा उतना इम्पोर्टेंट रोल शायद उनका नहीं था एज द लीड, बिकॉज ही वॉज नॉट द लीड इन द शो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक यू नो कैरेक्टर प्ले किया था विच गेन्ड अ लॉट ऑफ लव। आज आपको बस उस शो का नाम बताना है कि वो कौन सा शो था, वो कौन सा प्रोग्राम था, टेलीविजन प्रोग्राम जिसमें विक्रांत मसी नज़र आए थे। और ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं आपको कुछ क्लूज दूँ, तो इसी टाइटल पर एक फिल्म भी आई है, और काफ़ी साल पहले ये फिल्म आई थी, और ये जो फिल्म है ये बहुत पॉपुलर हुई थी अपनी कहानी के लिए भी, और साथ ही साथ अपने मतलब इस फिल्म के गाने के लिए भी। 1976 में ये फिल्म आई थी, और सचिन मेरे ख्याल से उन्होंने इस फिल्म में काम किया था अलोंग विद रंजनी शर्मा, और इस फिल्म के गाने, ओह माय गॉड, दे वर अमेजिंग। बट दिस इज़ नॉट द आंसर, लाइक वी आर नॉट लुकिंग फॉर द नेम ऑफ द मूवी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस शो का क्या नाम था जिसमें विक्रांत मसी ने, टेलीविजन प्रोग्राम का क्या नाम था जिसमें विक्रांत मसी ने काम किया था, और उसी टाइटल से एक फिल्म भी आई थी 1976 में, जिसमें सचिन पिलगांवकर इन्होंने काम किया था, और इन्होंने मतलब ही वॉज द लीड ऑफ द मूवी, और फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। सेम नाम है दोनों का, इस टेलीविजन प्रोग्राम का भी और इस मूवी का भी। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट, और अराउंड थ्रोबैक हम आपको सही जवाब जो है ये जरूर देंगे।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
3: Accurate traffic.
4: Spend a day in Mission Bay. Food, flicks, fun.
5: Pretty chilly start to a fine but cool day. Got a high of 14. Into the city, southern slowing down at Papakura through to Papatoetoe, and before Mount Wellington, 27 minutes Manukau Town at 50 now. Drury to the city. Southwestern looking fine so far. Northwestern 21 minutes in from Massey. Slow at Te Aratu and close to the city. Northern 20 from Constellation. Slow Greville to Milford and slowing at Silverdale.
4: New arrivals, familiar favourites, iconic waterfront location. MissionBay.co.nz.
6: Craving ho rahi hai. Us और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: Spark Satellite, powered by Starlink satellite-to-mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है and breakfast ketchup आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. या तो मैंने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है या फिर मैंने जो गलती की लास्ट सेगमेंट में जहां पर आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू कहां पर टेक्स्ट करना है उस वजह से शायद आपने अभी तक अपने आंसर्स नहीं भेजे हैं. बट यू नो रिमाइंडिंग यू ऑल एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आज मैंने पूछा है. विक्रांत मसी के बारे में बातें कर रहे हैं. बड़े कमाल के एक्टर हैं. इतनी सारी अच्छी फिल्में में इन्होंने अभी तक काम किया है और इनके बारे में जब मैंने मेंशन किया तो मैंने कहा कि इन्होंने एक मतलब बिफोर ही केम इनटू मूवीज इन्होंने एक बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम में भी काम किया. आज आपको एक टेलीविजन प्रोग्राम का नाम बताना है विच वॉज वेरी पॉपुलर और बहुत बहुत ये टेलीविजन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और उसी के नाम पर एक मूवी भी आई थी जिसमें सचिन पिलगांवकर ने काम किया था. एंड दिस पर्टिकुलर मूवी एक्चुअली रिलीज इन द ईयर 1976 और इस फिल्म के गाने जो है बहुत खूबसूरत है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट करेक्ट. BF स्पेस योर आंसर योर नेम लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं. गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच बॉबी मान जी लाइक एवरी मॉर्निंग और साथ में मिस्टर माटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थोड़ी देर बाद आपके जवाब जो है ये हम जरूर देखेंगे. बट बिफोर वी डू दैट रिमाइंडिंग यू ऑल कि आपके लिए आज प्रोग्राम में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हम लेकर आने वाले हैं. इनफैक्ट मौका मिलेगा आपको हमारे साथ शामिल होकर. करण औजला जो है आ रहे हैं अपना पीप ऑफ कल्चर वोल्ट हुआ लेकर इनके शो के लिए डबल पासेस जीतने के लिए भी. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट आपको मैं याद दिला दूं हमारे जो साथी हैं केतन इनके नए गाने के बारे में सैफायर 2.0 ये आपके लिए हम पर हम जरूर प्ले कर रहे हैं. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. एक हिंदी रीमेक है ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग जिसे एड शीरन एंड अरिजीत सिंह ने ग्लोबल हिट तो बनाया था विच वॉज टाइटल्ड सैफायर और इसे हमने हम पर आपके लिए प्ले भी किया था. बट सैफायर 2.0 बाय केतन कुमावत बड़ा ही कमाल का गाना है. डू चेक इट आउट. हम पर हम आपके लिए प्ले भी करते रहेंगे. एक यू नो द सॉन्ग इज संग डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय द मल्टी टैलेंटेड केतन और इसमें पावरफुल लिरिक्स जो आपको सुनने को मिलेंगे जो केतन ने गाए हैं हैज बीन रिटन बाय अ वेरी पॉपुलर लिरिसिस्ट मनप्रीत जिनका जो पापा टोय टोय वाला गाना वेंट वायरल. तो ये एम्बिशियस इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है और आई थिंक काफ़ी लंबे समय से इस पर काम जो ये चल रहा था एंड फाइनली इन्होंने अपने खम्बल गराज स्टूडियो से इस गाने की शुरुआत जो है ये की एंड इट हैज़ रीच द एयरवेव्स ऑफ हम जहाँ पर आप तक इसे हमने प्ले भी किया है. पर आप इनके YouTube चैनल पर जाकर इसे चेकआउट भी कर सकते हैं. द सिनेमैटिक म्यूजिक वीडियो जो है न्यूजीलैंड के खूबसूरत रोड ट्रिप्स को नॉर्थ आइलैंड को और इस कंट्री की जो रॉ सीनिक ब्यूटी है इसे कैप्चर करता है ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड टू वेलिंगटन. इसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है. बट इफ़ यू हैवंट सीन इट आप भी जाकर इसे विजिट कर सकते हैं. YouTube पर जाकर गूगल कर सकते हैं सैफायर 2.0 बाय केतन कुमावत और चेकआउट कर सकते हैं ज़रूर.

0: को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: Love that chicken from Popeyes.
3: A very cool start to a fine but chilly day, a high of 14. Into the city, Northern Motorway, 22 minutes in from Constellation Drive, 44 from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy gravel to Constellation and slow patches on and off to the bridge. Northwestern, 24 in from Massey, slow there to Te Aratu and Greyland to the city. Southern, half an hour, Manukau to town, slow Papakura on and off to Mount Wellington and patchy pass there.
2: Three crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeyes Chicken this week.
4: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
5: TradeStaff, industrial employment solutions. TradeStaff.
6: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: Breakfast Catch-Up. Throwback.
10: There is something seriously very wrong with me today. किसी ने नोट भी किया और फिर अपना मैसेज भी भेजा। आई नो, आई जस्ट डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। मतलब यूट्यूब पर गूगल कौन ही कर सकता है, मैंने यही बोला ना। एनी वे, सॉरी अबाउट दैट। यूट्यूब पर गूगल नहीं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए केतन के गाने के लिए, सैफायर 2.0 जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे। बट आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में थ्रोबैक की बारी आई, लेकिन बिफोर द थ्रोबैक मैंने कहा था ना कि आपको बताएंगे अबाउट the question I had asked कि उसका सही जवाब क्या है। आंसर्स आए हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं, एक दो सही तो कुछ गलत है। विशाल, थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए, और निवेन आपका भी जवाब आया है। पुष्पा जी, थैंक यू सो मच, आपने भी सही जवाब जो है कि हमारे पास भेजा है। सो द करेक्ट आंसर इज बालिका वधू। बालिका वधू कलर्स चैनल पर एक शो आता था 2008 में, मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत हुई थी कलर्स चैनल पर, एंड दैट पर्टिकुलर शो रैन अंटिल 2016। 2000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स इस शो के रहे, जिसमें एक किरदार जो है ये प्ले किया था नन अदर देन विक्रांत मसी ने। विक्रांत जिन्होंने इस शो में श्याम सिंह का रोल जो है ये प्ले किया था, और इसे बहुत ज़्यादा प्यार जो है ये मिला था। सो अगर आपने बालिका वधू लिखकर भेजा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैंने कहा था ना कि इसी टाइटल पर एक फिल्म भी है, 1976 में फिल्म आई थी बालिका वधू, जिसमें सचिन ने काम किया था, सचिन पिलगांवकर ने। और ओ माय गुडनेस, उस फिल्म के जो गाने हैं वो तो खूबसूरत हैं ही, बट दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, विच वॉज सुपर हिट। आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग और फर्स्ट हिट सॉन्ग जो अमित कुमार के करियर का रहा, और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया। आर डी बर्मन साहब ने इसे कंपोज किया था और आनंद बख्शी साहब ने इसके बोल लिखे थे। आज भी बड़े अच्छे लगते हैं ये गाना आपको तो याद होगा ही। बट मूविंग अवे फ्रॉम बड़े अच्छे लगते हैं सॉन्ग टू आज का हमारा थ्रोबैक, एंजॉय द नेक्स्ट वन। अगले घंटे आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस हम जरूर लेकर आएंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के मौसम के बारे में बताया जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे, पार्टली क्लाउडी और आइसोलेटेड शावर्स जो है ये रहेंगे, लेकिन अराउंड मिड डे आप फाइन वेदर जरूर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आज का सनराइज इसी घंटे 7:22 AM पर होगा और सनसेट 5:34 PM पर। ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 3 degrees तक, इन अ हाई ऑफ 13 degrees एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी Even big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Get up, get up. The morning madness. The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: Kira, good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ आज के हमारे मॉर्निंग मैडनेस के सफर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और आपके समय के लिए, और उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ मॉर्निंग मैडनेस का मजा उठाने के लिए एकदम तैयार है। थोड़ी देर बाद आज के राशि वाइब्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं ये शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स, तो इंतजार कीजिएगा, इट्स कमिंग अप वेरी शॉर्टली। एंड उसके अलावा इसी घंटे आपको हैप्पी बर्थडे विश करने वाले हैं। बाय द वे कल कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, बट आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन इट एंड रियली सॉरी अबाउट इट। कुछ मैसेजेस थे हमारे पास जहाँ पर आई लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू डियर हस्बैंड उपिंदर, यू आर ट्रूली एन अमेजिंग पर्सन।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप. सबसे पहले मेष यानी एरीस आज आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं ट्रिप पर जाने वाले हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. इनफैक्ट आपको गिफ्ट वगैरह जो है ये भी मिल सकता है. कोई बड़ी समस्या का हल आज आप यू नो ढूंढ पाएंगे अपने लिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है. वृष शनि टॉरस, फैमिली में किसी व्यक्ति के हेल्थ को लेकर पैसे खर्चे होंगे और इससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा डामाडोल होगा. और आपके लिए कहा गया है कि आज चिंता तथा तनाव घेरे रहेंगे, आपको थोड़ा परेशान करेंगे. बस किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी ना करें. कोई ज़रूरी फैसला अगर आपको करना है, टेक योर टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए. मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए कहा गया एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और फ़ायदे के मौके भी बढ़ेंगे, तो इसीलिए कोशिश करें इन मौक़ों को आप आइडेंटिफाई करें और इनसे अपने लिए और फ़ायदा जो है ये हासिल करें. रुका हुआ पैसा जो है आपको मिल सकता है और कुछ लोग हैं आपका बुरा चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं. थोड़ा केयरफुल रहें इनसे और ध्यान रखें कि ये कौन लोग हैं, ताकि इनसे इतनी दूरी जो है ये आप इफ़ नेसेसरी बनाए रखें. करके ने कैंसर, आर्थिक उन्नति की प्लान्स आप बना रहे, मतलब फाइनेंशियल प्रोग्रेस के प्लान्स आप बना रहे हैं, पर उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है. कीप वर्किंग हार्ड एंड आप अपना प्रोग्रेस ज़रूर नोट करेंगे. जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, इसीलिए अच्छे से समय लेकर ठंडे दिमाग के साथ सोच समझ कर अपना काम करें. मान सम्मान आपको ज़रूर मिलेगा, थकावट और कमज़ोरी आप महसूस करेंगे. सिंह यानी कि लियो, आपके लिए कहा जा रहा है नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा और कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हो सकते हैं या बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, तो ये आपको सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे. इट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी. लीगल मैटर्स से आज आपको यू नो छुटकारा मिलेगा, जिसकी वजह से फ़ायदा होगा, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है. कन्या यानी वर्गो, बनते कामों में विघ्न यानी कि रुकावटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े वरीड रहेंगे, बट गिव इट सम टाइम एंड यू विल सी द प्रॉब्लम सॉर्टिंग आउट ऑन इट्स ओन. लेन देन के मामले में जल्दबाजी ना करें, किसी कीमती चीज़ को संभाल कर रखें, ये सलाह आज आपको दी जा रही है. तुला यानी लिब्रा, रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में जैसा आप चाहते हैं वैसा जरूर होगा. रिस्क उठाने की हिम्मत आपको मिलेगी और आपके भाइयों का सपोर्ट आपको मिलेगा, विच विल मेक यू फील वेरी वैल्यूड एंड लव्ड. वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, कोई बहुत बड़ा फायदा आपके हाथ लग सकता है, प्रोग्रेस के रास्ते चल पड़े हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड प्रोग्रेस. नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बेरोजगारी दूर होगी, सफलता मिलेगी आपको, समस्या का समाधान भी मिलेगा, जो भी समस्या आप लाइफ में फिलहाल फेस कर रहे हैं. धनु यानी सेगिटेरियस, पॉजिटिव सोच सफलता दिलाएगी, एक बहुत ही हैप्पी ओकेजन में भाग लेने का मौका मिलेगा, आ पार्टी और पिकनिक प्रॉबेबली, दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, बहुत एंटरटेनिंग टाइम बीतेगा एंड इट विल टर्न यू इनटू अ वेरी हैप्पी पर्सन टुडे. मकर यानी कैप्रिकॉर्न, मेहनत अधिक करेंगे, उसके मिलान में फायदे कम मिलेंगे, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर बार जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा. थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी जीत होती है उन्हें भी सेलिब्रेट करना सीखें और यू सी भविष्य में चलकर आपके हाथ कितना बड़ा फ़ायदा लग सकता है. कोई बड़ा यू नो प्रॉब्लम जो है इसका सामना करना पड़ सकता है आपको, कोई बड़ी बाधा जो है ये आ सकती है, सो बी रेडी फॉर इट. कीमती चीज़ों को संभाल कर रखें, ऐसा भी आपके लिए बताया जा रहा है. कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आपके लिए कहा गया है बिजनेस में फायदा होगा, प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे, घर बाहर दोनों ही ओर सुख शांति आपको आज मिलेगी. एंड फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया जा रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग खबर आज आपको मिलेगी और आत्मसम्मान बना रहेगा, यू'ड बी अ वेरी हैप्पी पर्सन टुडे. बस अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सुधार आपको लाना है. सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप तो
6: आए आए बताओगे यार।
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual? Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
9: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave. Battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
10: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
11: Jen didn't think she needed a DVS system.
12: Oh, I've got insulation in that.
11: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
12: Ah, yeah.
11: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
13: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
2: तो चलिए बारी है आज की सेलिब्रिटी अलार्म की जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जहां पर यूल हियर दिस पर्टिकुलर वॉइस एंड यू लिव टू गेस कि आज की हमारे जो सेलिब्रिटी कौन है सेलिब्रिटी अलार्म में। आई मस्ट से कि आई हैव होप्स कि आज की सेलिब्रिटी को कोई नहीं पहचान पाएगा, बट ये जानी मानी है, न्यूजीलैंड में भी काफ़ी जानी मानी है, लेकिन कौन है ये आज मैं आपको बताऊंगी नहीं। किसी का अगर गलत जवाब भी आएगा, कोई अगर नहीं पहचान पाए इनकी आवाज़, तो मैं आज नहीं बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी। लेकिन अगर कोई पहचान गया तो भी मैं कल ही बताऊंगी। आज ऐसा करते हैं, मज़ा आएगा ना, आपको सस्पेंस में रखेंगे अंटिल टुमारो। बट हियर वी गो, दिस इज द वॉइस यू हैव टू लिसन टू एंड फिगर आउट कि ये किन की आवाज़ है।
14: Now look at that. This is how I get that unreal summer glow all year round. So I'm starting with Charlotte's Unreal Skin Foundation. Sometimes I'm a little bit messy, and what I love about this is that it's foolproof. Put it on like that. And this foundation...
2: तो ये किसकी आवाज़ है? आपको बस इतना बताना है। इन्होंने एक छोटा सा वीडियो जो ये बनाया अपने सोशल मीडिया पर डाला, बस वहीं से मैंने ये उठा लिया आपको सुनाने के लिए। एंड इफ़ यू हैव फिगर इट आउट कि ये कौन है, तो बीएफ लिखकर अपने नाम के साथ इनका नाम लिखकर 5599 पर भेजना है। अगर अभी तक नहीं पता चला है, फिगर आउट कीजिए और हमारे पास अपना जवाब चुनके आप भेज सकते हैं। तो एक बार फिर से आवाज़ सुना दूं मैं आपको, फिर एक क्लू दूंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो अच्छे से सुनिएगा, दिस इज़ द वॉइस यू हैव टू आइडेंटिफाई टुडे।
14: Now look at that. This is how I get that unreal summer glow all year round. So I'm starting with Charlotte's Unreal Skin Foundation. Sometimes I'm a little bit messy, and what I love about this is that it's foolproof. Put it on like that. And this foundation just really makes me feel like my skin is exactly how I want it.
2: तो आवाज पहचान चुके हैं अगर आप, जल्दी जल्दी आंसर्स भेजिएगा। और मैंने कहा था ना क्लू दूंगी, तो the only clue that I have for you all today is, जैसे निक जोनस को इंडिया यानी कि भारत का दामाद माना जाता है, उसी तरह से हम इन्हें न्यूजीलैंड की बहू कह सकते हैं, ठीक है? अगर आपको पता है तो यू नो व्हाई आई सेड इट, अगर नहीं पता है तो कल जब जवाब पता चलेगा तो ही पता चलेगा क्यों बोला मैंने। बट जैसे निक जोनस को भारत यानी कि इंडिया का दामाद बोला जाता है, उसी तरह से इन्हें हम न्यूजीलैंड की बहू बोल सकते हैं। बीएफ आंसर योर नेम 5599 पर जरूर भेजें। कल हमने जब आपके लिए आवाज़ प्ले किया था तो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये नोट की कि बहुत से लोगों ने हमारे पास गलत आंसर्स तो भेजे थे, लेकिन प्रभास लिखकर लोगों ने जो भेजा और मेरे साथ जो खेल खेला है, रीजन बीइंग क्योंकि नॉट जस्ट प्रभास, उन्होंने एक्टर प्रभास वो ही शरद केलकर ऐसे भी लिखकर भेजा। सो शरद केलकर वाज अपेरेंटली द करेक्ट आंसर व्हिच आई हैड रिवील्ड यस्टरडे। पर आज कौन है सेलिब्रिटी अलार्म में अभी नहीं पता चलेगा आपको, ये तो कल ही पता चलेगा। बीएफ स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर भेजे और थोड़ी देर बाद आज के न्यूज हेडलाइंस आपके लिए लेकर आएंगे।
7: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम।
7: ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: आज सुबह के मुख्य समाचारों में प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट जो कि एक्सटेंड कर रही है पेड पेरेंटल लीव फ्रॉम जो प्लान कर रहे रहता टू एक्सटेंड पेड पेरेंटल लीव फ्रॉम 26 वीक्स टू 30 वीक्स, इसकी वजह से दोनों पेरेंट्स को एक मौका मिलेगा कि वो एक ही समय पर लीव जो है ये ले सके। लेबर ने इनके इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नेशनल पार्टी के पास रिकॉर्ड्स को लेकर जहां पर फैमिली सपोर्ट को के मामले में काफ़ी सवाल उठे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि फिलहाल उनका फोकस है ताकि वो फैमिलीज को फ्यूचर में हेल्प कर सके। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो इंक्रीज्ड फंडिंग है मेडिसिन को लेकर या AI डाटा सेंटर्स के डेवलपमेंट को लेकर जो बैकअप है, इस मामले में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि नेशनल की पोलिंग जो है ये इम्प्रूव होगी अहेड ऑफ द 2026 जनरल इलेक्शंस। अन्य खबरों में स्पार्क टेलीकम्युनिकेशंस जायंट जो है इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है अपने ऑपरेशंस को इनटू टू न्यू डिविजन्स नाउ कनेक्टिविटी एंड डिजिटल सर्विस, जो कि अब शार्पन करेगा उनका फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ। वाइल नो अदर जॉब लॉसेस हैव बीन अनाउंस सो फार, कंपनी ने कहा है कि वो रिव्यू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ इट्स डिजिटल पोर्टफोलियो और साथ ही साथ दे मे ऑल्सो सेल बिजनेसेस दैट नो लॉन्गर अलाइन उनकी कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के मामले में। खेलकूद के खबरों में कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द होने जा रहा है एक अमेजिंग हिस्टोरिक मैच जहां पर ऑल ब्लैक्स विल प्ले साउथ अफ्रीका इन अ 4 टेस्ट सीरीज अपने इस टूर के तहत। 22nd of August से इसकी शुरुआत होगी। द फर्स्ट टेस्ट जो है ये प्ले करने वाले हैं एट जोहानसबर्ग एलिस पार्क में, सेकंड टेस्ट 29th of August को रहेगा एट DHL स्टेडियम केप टाउन में, एंड थर्ड टेस्ट रहेगा ऑल ब्लैक्स वर्सेस स्प्रिंगबॉक्स ऑन द 5th of September एट FNB स्टेडियम जोहानसबर्ग अगेन, एंड फोर्थ एंड फाइनल टेस्ट विल हैपन एट ऑन सेप्टेम्बर ट्वेल्थ एट MNT बैंक स्टेडियम इन बाल्टीमोर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब से ये टूर अनाउंस हुआ है तब से 45 ईयर्स अगो न्यूजीलैंड में स्प्रिंगबॉक्स का जो टूर था उसको लेकर कुछ मामले जो है वापस से सामने आए हैं। One of the country's most defining moments back is in spotlight as New Zealand marks 45 years since unka jo controversial Springbok tour jo hai ye hua tha. ये कहानी बेसिकली दो भाइयों की है जिनके बारे में काफ़ी बातें जो है ये सामने आई है। कहा जा रहा है कि इट वॉज 1981 साउथ अफ्रीका की नेशनल रग्बी टीम द स्प्रिंगबॉक्स ये न्यूजीलैंड आए थे मैच खेलने के लिए, और एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका हैड अ सिस्टम कॉल्ड अपहाइड जहां पर लोगों को उनके रेशियल के हिसाब से लीगली सेपरेट या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बेस्ड ऑन देयर रेस बेसिकली। और बहुत से न्यूजीलैंडर्स का मानना था कि रग्बी टूर जो है अगर वो ऐसा कर रहे हैं न्यूजीलैंड में इट विल सपोर्ट दैट रेसिस सिस्टम, और वो उसे कैंसिल करना चाहते थे। अदर्स ये बिलीव करते थे कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है शुड स्टे सेपरेट, और वो चाहते थे कि मैचेस जो है एज प्लान्ड होनी चाहिए। द रिजल्ट वाज 56 डेज ऑफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट विद मोर देन 150,000 लोग जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, और ओवर 200 डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये हुए थे। इन दैट सेम ईयर दो भाइयों की कहानी जो है ये भी सामने आई है। लिंसी जो कि 16 ईयर ओल्ड थे और वो रग्बी पार्क हैमिल्टन में मौजूद थे उस समय you know to watch Waikato play the Springboks, and unke bade bhai 18-year-old Bryce who believed ki ye tour galat hai because it'll give support to South Africa's apartheid government, aur unhone outside the stadium protesters ko join kiya tha. Now 40 years later jab All Blacks apna ye tour jo hai karne wali hai to South Africa and they will play South Africa, to abhi bhi dono bhaiyo ko mamle mein kaha ja raha hai they are on disagreement. Lindsay jo ki South Africa ko support kar rahe hain saying they will win, and Bryce is backing All Blacks. Ye the aaj subah ke mukhya samachar.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Hum, accurate traffic.
3: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
4: Fine today, but a chilly one, a high of 14. Into the city, Southern Motorway slowest to the bunch at the moment. 50 minutes Manukau to town, over an hour 10 from Drury. Slow all the way in from Papakura with a lot of heavier patches. Southwestern slow northbound through Whitty at the moment. Northwestern 36 in from Massey, slow from there, heavy from Point Chev. Northern 30 from Constellation, heavy on and off there to the bridge and at Silverdale.
3: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
5: Discover the magic at Go Bananas JK. जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो हम हमेशा आपके पास हैं
6: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस
5: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स और सबसे खास बात गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम तो देर मत कीजिए कॉल 0800-4626-26 टुडे
6: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस T's and C's apply.
7: Disney Ushies are now playing at Woolworths. And this Friday, get double Ushies when you spend $30 or more in one shop and scan your everyday rewards card at the checkout. Offer runs this Friday, 31st of July. T's and C's apply while stocks last.
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
8: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के
11: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
1: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands nahi hai.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
0: A very very happy birthday आज आपको विश करते हैं जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आज जन्मदिन के खास मौके पर विशा कांत जी है अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रही हैं हैप्पी बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू आज जन्मदिन के स्पेशल इस मौके पर डेफिनेटली आपको ढेर सारा प्यार आपके समस्त परिवार वालों की ओर से आपका प्यारा सा बेटा है बहू है ग्रैंड डॉटर्स हैं एंड डेफिनेटली नॉट मिसिंग आउट ऑन योर लेट हस्बैंड जिनको आज के दिन आप याद भी कर रही हैं और इनकी ओर से भी हमारी पूरी हम टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे हम आपको विश कर रहे हैं विशा जी उम्मीद करते हैं दिन आपका बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे दूसरी ओर आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रही हैं नन अदर देन प्रिया राम हैप्पी बर्थडे प्रिया मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जन्मदिन के इस खास मौके पर आपके हस्बैंड हैं और बच्चे हैं इनकी ओर से आपको हैप्पी बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी हम टीम की ओर से भी एंजॉय योर डे हैप्पी बर्थडे

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर ये होने जा रहा है ऑन द 25th ऑफ अगस्त एट स्पार्क अरेना, जहां पर स्पेशल गेस्ट इकी भीन को ज्वाइन करेंगे और एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स आप इंजॉय कर सकते हैं इनके साथ। इनक्रेडिबल एनर्जी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस के साथ साथ अगर करण औजला को आंखों के सामने परफॉर्म करता हुआ देखने का मौका मिले, Why would you say no, isn't it? तो अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं, विजिट कीजिए hum.rover.nz या livenation.co.nz और टिकट्स जरूर ग्रैब कर लीजिए, या इस अमेजिंग शो से रिलेटेड डिटेल्स भी आप हासिल कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, ये हो रहा है स्पार्क अरेना में ट्यूसडे 25th ऑफ अगस्त को, एक ही शो, एक ही रात, और अमेजिंग सुपरस्टार करण औजला आपको एंटरटेन करेंगे जरूर। बाय द वे, डबल पासेस जीतने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सके। जब जब आपको मौका मिले, लाइंस आपके लिए ओपन हो, अपनी एंट्रीज आप रजिस्टर कराएं, ड्रो में शामिल हो और जस्ट ट्राई योर लक, हु नोज, अगर आप विजेता हो गए तो आपको तो बेशक मौका मिलेगा ना अपने नाम एक पास कराते हुए करण औजला को देखने का। सो इफ यू वांट टू विन अ डबल पास विद मी दिस मॉर्निंग, वेरी इजी, KA यानी करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है और बताना है कि फिलहाल आप हमें कहां से सुन रहे हैं, अपना लोकेशन आपको भेजना है। डोंट राइट द एग्जैक्ट एड्रेस, जस्ट राइट यू नो कहां, किस जगह से आप सुन रहे हैं, सबर्ब ये आप लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आप हमें आउट ऑफ ऑकलैंड सुन रहे हैं तो आप हमारे पास अपना जो सिटी का नाम है ये लिखकर भेजिए, ठीक है। आउट ऑफ न्यूजीलैंड वालों के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी आप नहीं जीत सकते, अगर या इफ़ यू लाइक टू पार्टिसिपेट तो प्रोबेबली आपको अपना टिकट अरेंज करना पड़ेगा, वीज़ा टू न्यूजीलैंड अरेंज करना पड़ेगा, इफ़ इट्स रिक्वायर्ड देन प्रोबेबली आप आ सकते हैं। बट राइट नाउ जल्दी जल्दी KA space अपना लोकेशन, अपना नाम 5599 पर भेजें। आपके पास जब तक की थ्रो बैक का सॉन्ग बज रहा है तब तक का टाइम ज़रूर है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: याद रहे सुपर सिटी ऑकलैंड में आज मौसम के लिए कहा जा रहा है पार्टली क्लाउडी रहेगा, लिटिल बिट ऑफ शावर्स होंगे जरूर, लेकिन अराउंड मिड डे तक मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। हल्की हल्की हवाओं का साथ बना रहेगा। आज सनसेट होगा 5:34 PM पर, ओवरनाइट टेम्परेचर 3 degrees, सो बी प्रिपेयर्ड, एंड हाई ऑफ 13 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून, एंड हैरिंगटन लिविंग एट Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: आज के ट्रेंड पेट्रोल स्टोरी में आपके लिए हम लेकर आए हैं द ब्रीड्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स दैट आर ट्रेंडिंग इन न्यूजीलैंड राइट नाउ। इसके बारे में एक डिटेल्स मतलब एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ये हम शेयर कर रहे हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, RNZ पर ये आया, इन्होंने पब्लिश किया है सेइंग कि यू नो यहाँ न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो सदर्न क्रॉस पेट इंश्योरेंस SCPI जो है इन्होंने एक डाटा शेयर किया है, और अकॉर्डिंग टू दैट कहा गया है फ्रॉम द 2025 कैलेंडर ईयर एंड PD इंश्योरेंस For the 12 months from July 2025 to June 2026, इस डाटा के अनुसार पता चला है विच डॉग एंड कैट ब्रीड्स जनरेट द मोस्ट इंश्योरेंस क्लेम्स, और दे हैव शेयर्ड सम रीजंस कि क्यों दे मस्ट बी द कंट्रीज मोस्ट पैम्पर्ड पेट्स। अगर मैं आपको यू नो फुल डिटेल्स इस बारे में दूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इफ़ यू एवर थॉट योर पेट इज़ एक्सपेंसिव, ये माइट बी राइट, क्योंकि न्यूजीलैंड में पेट इंश्योरेंस डाटा जो है इन्होंने रिवील किया है कि सर्टन ब्रीड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स जो है दे जनरेट द मोस्ट इंश्योरेंस क्लेम्स। अगर डॉग्स में देखा जाए तो द मोस्ट क्लेम्स बाय डॉग ब्रीड ओवरऑल आर लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, कवूडल, मिनिएचर श्वित्ज़र मेरे ख्याल से, एंड लेब्राडूडल। लेब्राडूडल जो है, दीज आर द ब्रीड्स जो सबसे ज़्यादा क्लेम्स ओवरऑल जो है इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं न्यूजीलैंड में इनके लिए। द ब्रीड्स मोस्ट लाइकली टू मेक एन इंश्योरेंस क्लेम वर ग्रेहाउंड, इंग्लिश बुलडॉग, फ्रेंच बुलडॉग, रॉटवाइलर और पग। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वेट्स ने कहा है कि जो लेब्राडोर्स और गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं दे आर फेमस फॉर ईटिंग थिंग्स दे शुडंट, वाइल बुलडॉग्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्रीदिंग, स्पाइनल और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कैट्स के बारे में कहा गया है कि डोमेस्टिक शॉर्ट हेयर कैट्स दे जनरेट द मोस्ट क्लेम्स ओवरऑल। टोनकिनीज मेरे ख्याल से, इज दैट हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, टोनकिनीज बंगाल और बर्मन कैट्स जो है दे आर रैंक्ड अमंग द मोस्ट लाइकली टू मेक क्लेम्स, जबकि सम ऑफ द बिगेस्ट पे आउट्स इंक्लूडेड $15,000 फॉर अ पोमेरियन जिन्हें एक सीरियस ब्लड डिसऑर्डर था, 12

They play a very important role. They are loved a lot as well. आपकी life को बहुत happy भी कर देते हैं वो. लेकिन कुछ situation में, अगर especially New Zealand में बातें करें, having a pet कितना expensive आपके लिए होता है, कभी आपने सोचा है? Are you planning on it? तो think it through. By the way, इससे related आज का हमारा what's your take topic भी रहेगा. तो आप इसके लिए तैयार रहेगा, जो कि थोड़ी देर बाद हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे. But right now हमने आपको कुछ dog breeds के बारे में बताए हैं, who are the most trending breeds in New Zealand currently.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox. Hum, whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
1: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event this Thursday to Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
2: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
1: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event this Thursday to Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
3: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai, apno ke naam sandesh bheje ja sakte hain, magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEERA. North End Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
5: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
5: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
7: What's your take?
8: आज का व्हाट्स योर टेक अब आपके लिए लेकर आने का समय हुआ. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है एंड दिस इज द रश आवर. बाय द वे, हमने आज इस घंटे की शुरुआत में आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर किए थे अबाउट दिस आर्टिकल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन RNZ. एंड उन्होंने ये बताया कि यू नो, न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा विच वॉज रिवील्ड, जो सदर्न क्रॉस पेट इंश्योरेंस SCPI शेयर डाटा है, जो 2025 कैलेंडर ईयर और साथ में PD इंश्योरेंस फॉर द 12 मंथ्स फ्रॉम July 1st 2025 टू June 2026, इतने समय का ये डाटा है जो उन्होंने शेयर किया है. अकॉर्डिंग टू विच कहा गया है न्यूजीलैंड में पेट इंश्योरेंस जो है किस पर्टिकुलर डॉग ब्रीड और कैट ब्रीड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम्स जनरेट हुए हैं. इस पर हमने कुछ डिटेल्स शेयर किए थे आपके साथ और फिर हमने कहा था ना कि इससे रिलेटेड आज का टॉपिक ऑफ द डे भी रहेगा, जिसका जवाब आप हमारे पास भेज सकते हैं. तो आज का टॉपिक ऑफ द डे बड़ा ही सिंपल सा है, जिसके आंसर्स आप हमारे पास 5599 पर अपने नामों के साथ टेक्स्ट कर सकेंगे. आपको बताना है अगर आपके पास अभी पेट है तो आपके पास एक आंसर होगा, और अगर नहीं है बट यू हैड अ पेट लाइक years ago, जब आप किसी यू नो अन्य कंट्री में रहते थे वहाँ पर आपने पेट जो है आपने रखा हुआ था एंड यू हैड सम एक्सपीरियंसेस विद योर पेट, तो यू माइट हैव अ स्टोरी और समथिंग टू शेयर इन रिगार्ड्स विद दिस. क्वेश्चन है कि व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैड टू पे इट फॉर बिकॉज ऑफ योर पेट. प्रोबेबली उन्होंने वो चीज़ ख़राब कर दी, उसे वो चीज़ उनको खानी नहीं थी, वो उन्होंने खा लिया, वो गिरा दिया, तोड़ दिया, यू नो. So what was the most expensive thing your pet has ever done that you had to pay for? और अपने answers आप 5599 पर हमारे पास जरूर भेज सकते हैं और let's see कि आपके क्या क्या answers आते हैं. In fact, अगर आप चाहें तो मैं ये भी बता सकते हैं according to your experiences आपको क्या लगता है ज़्यादा नुकसान कौन सा pet करता है? Cats or dogs? Why I'm saying cats or dogs in this matter is क्योंकि ये जो insurance claim data हमने share किया है उसमें सिर्फ इन्हीं दो जानवरों के बारे में mention किया गया न्यूजीलैंड में particularly. तो इसीलिए ठीक है वो भी आप हमें बता सकते हैं कि according to you कौन सा pet ज़्यादा expensive है cats or dogs. ये भी आप हमें अपने नाम के साथ मैसेज कर सकते हैं. 5599 पर दो गानों का समय है जिसके बाद we'll have a look at your messages. Coming up next, Bollywood's most wanted, Dev Negi, Palak Muchhal, Kumar Sanu, Alka Yagnik की आवाज में भाई तेरा स्टार है उसी फिल्म का ये लेटेस्ट रिक्रिएटेड सॉन्ग.
5: Bollywood's most wanted.
7: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
9: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो व्हाट्स योर टेक के लिए आपके मैसेजेस हमारे पास आए हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए. अनीता जी ने कहा है, आवर लैब्राडोर एट माय सन्स एंटायर स्कूल लंच बॉक्स व्हिच हैड लंच इन इट. Oh, the x-rays costs more than the lunchbox itself. Oh, okay. That's quite sad though. इन्होंने कहा कि इनका जो एक लेब्रडो है, पेट लेब्रडो, इन्होंने इनके बेटे का लंच बॉक्स खा लिया विद लंच इन इट. तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स इट हैड सम डैमेजेस इन द dog stomach and the x-ray costed her more than the lunch itself. That's what she wrote. Raj Henderson से आपका मैसेज है. उन्होंने कहा, my cat came home after a fight with another cat. One overnight stay at the vet and we were over 1,200 out of pocket. Pet insurance paid for itself that year. ये इन्होंने कहा है. इसके अलावा हमारे पास हरप्रीत आपका भी मैसेज आया है. थैंक यू सो मच. इन्होंने कहा है कि इनका पेट डॉग जो इनके बैकयार्ड से भाग गया था, somehow ended up at the neighbors and वहाँ पर उन्होंने कुछ खाया जिसकी वजह से उनको उनकी तबीयत खराब हो गई थी. एंड दैट्स व्हेन दे हैड टू विजिट द वेट एंड उनको काफ़ी भारी बिल जो है इसका ये पे करना पड़ा. तो आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक जिस पर हम आपसे पूछ रहे थे अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इफ़ यू हैव पेट्स इन न्यूजीलैंड और आपके पेट की वजह से वो क्या उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से यू हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी. द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट योर पेट हैड डन दैट यू हैड टू पे फॉर वो आप हमें बता सकते हैं. और फिर हमने ये भी कहा था कि विच पेट इज़ मोर एक्सपेंसिव, कैट या डॉग्स, ये भी आप हमारे पास जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं 5599 पर. इफ़ यू आर सेंडिंग थ्रू सम मैसेजेस थोड़ी देर बाद विल चेक आउट पर बट फॉर नाउ थोड़ी देर बाद आपके लिए एक और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपडेट जो है ये हम लेकर आएंगे. इसके लिए हमारे साथ ही आप बने रहिएगा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
2: चुप हो जा पापियो, चुप हो जा.
3: Accurate traffic.
4: Love that chicken from Popeyes.
5: Fine but cool today, got a high of 14. Southern Motorway coming in, a breakdown's been blocking the lane. Middle one after the Takanini on-ramp. Very heavy Papakura to Deer, and then heavy again from Otahuhu, 54 minutes Manukau to town. Northern 34 from Constellation, very heavy at Silverdale, and Constellation to the bridge is a heavy drive. Northwestern 48 and from Massey, heavy on and off from Upper Harbour.
4: Three crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeyes Chicken this week.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Manukau and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09-279-439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development. Study your way. Your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
12: SIT Online. Learn without limits.
13: Coffee? The usual?
14: How about the unusual?
15: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: आज का वर्ड्स टू टेक टॉपिक हम कर ही रहे थे. देयर आई केम अक्रॉस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच टुक प्लेस लाइक रिसेंटली 24th ऑफ जुलाई की ये खबर है. और कहा गया है कि वेलिंगटन की ये खबर है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की, जहां पर एक महिला है. इनका नाम है रिने वेड्सवर्थ और इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की अबाउट हर कैट नॉर्टन. नॉर्टन के पास एक ट्रैकिंग कोला है जिसकी वजह से शी वॉज एबल टू लोकेट हिम एंड सो कि नॉर्टन ने करीबन एक 30-मिनट ड्राइव ट्रेवल जो है ये किया है. कैसे वो इनको नहीं पता, बट व्हाट अपेरेंटली हैपेंड इज, मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनको पता कैसे चला. शी सेड नॉर्टन 6 साल का एक बर्मीज कैट है और ही हैज़ अ लव फॉर एनीथिंग वॉर्म एंड कोजी. और इन्होंने अपने कैट, पेट कैट को थोड़ा कुकू भी बोला है सेंग कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना कि इनको बहुत परेशानी होती है इनसे. रिने ने कहा कि शी नोटिस्ड कि नॉर्टन वॉज टू फार फ्रॉम होम ऑन थर्सडे लास्ट वीक एंड इसकी वजह से ऑफकोर्स वो जितनी जल्दी हो सके उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस के हेल्प से इनका नियरेस्ट लोकेशन ट्रैक किया और उनको ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच गई. जब रिने माउंट विक्टोरिया पहुंची, सो शी फ्रेंटिकली स्टार्टेड लुकिंग फॉर नॉर्टन और उनका नाम बार बार बुलाने लगी. उनको वो कहीं भी नहीं दिखा अंटिल थोड़ी देर बाद उनको नॉर्टन की आवाज़, उनका म्याऊ म्याऊ जो है ये सुनाई दिया गाड़ी की एक बोनट के अंदर से. शी वॉज ऑनेस्टली रिलीव्ड कि उनको उनकी आवाज़ तो कम से कम सुनाई दी, क्योंकि वाइल शी वॉज ट्राइंग टू लोकेट नॉर्टन उनको लगा था कि या तो उनको उनका सिर्फ कॉलर मिलेगा या फिर उनको नॉर्टन की लाश मिलेगी. एंड शी वॉज वरीड अबाउट इट. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द होल सिचुएशन टू द कार ड्राइवर, जो कि एक ऊबर राइड थी, एक ऊबर की गाड़ी थी, उन्होंने ड्राइवर को पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया क्योंकि ड्राइवर वॉज स्टिल कन्फ्यूज. ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का बोनट खोला और बोनट के अंदर उनको दिखे नॉर्टन, जो गाड़ी के डीप इनसाइड जो है फंसे पड़े थे. और काफ़ी डर गए थे ऊबर ड्राइवर भी और इनफैक्ट रिने भी अपने पेट कैट को देखकर, जिसके बाद उन्होंने एक लोकल मैकेनिक को इन्फॉर्म किया जो वहां लोकेशन पर पहुंचे और फिर उन्होंने मैनेज किया टू स्क्वीज नॉर्टन आउट वाया द फ्रंट टायर. लिटरली वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन ये ज़रूर रिने ने शेयर किया कि बाय फ्राइडे नॉर्टन वॉज परफेक्टली फाइन और उनकी तबीयत पर ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन रहेगा जो उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा. तो ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं जो लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं ना. एनीवेज, पेट्स हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग तो बनाते ही हैं, प्यार से तो भरते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. नेवरदलेस, द रश अवर आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं. हमारे साथ आप भी बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए. और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स. बने रहिएगा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Traffic.
2: BYD South Auckland now open.
3: Very chilly morning, high of 14. Should be a lovely day all day though. Into the city, Southern Motorway breakdown after Takanini has been sorted. We're patchy Papakura to Manurewa, heavy Otahuhu to the city, 45 minutes in from Manukau. Southwestern, heavy northbound through Whitty. The Northwestern, 40 from Massey, we're heavy on and off from Upper Harbour. Northern, 28 in from Constellation, heavy patches from Greville.
2: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
4: Hi, Kevin Eder here, Trade Staff. Everyone knows that trade staff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. Trade staff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
5: Trade staff. Industrial employment solutions. Trade staff.
6: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. For as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
7: Show us your crack.
8: Ah, Novus.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और याद रहे कि ना केवल रेडियो पर प्रोग्राम्स लेकिन साथ ही साथ हमारे म्यूजिक स्टेशंस जो है रोवा पर ये भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अमेजिंग म्यूजिक स्टेशंस आपके लिए अवेलेबल दैट यू कैन गो एंड लिसन टू इन योर स्पेयर टाइम एंड यू कैन एंजॉय बैक टू बैक म्यूजिक। और उसके अलावा हमारे पॉडकास्ट जो है ये भी चेकआउट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने अनफिल्टर्ड का जो लेटेस्ट एपिसोड है इन्हें नहीं सुना है या फिर अनफिल्टर्ड जो कि एक अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट है विद सैंडी एंड रूज़बे, इसके एपिसोड्स अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं ड्राइव लिखकर 5599 पर आप सेंड करोगे आपके पास लिंक्स आ जाएंगे जरूर। बट रीसेंट एपिसोड में इन्होंने बातें की हैं शनील लाल के साथ। शनील जो कि एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है और इन्होंने काफ़ी कुछ किया है न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए, खास तौर पर LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए, उनके राइट्स के लिए, द रेसिज्म दे फेस, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी चीज़ें जो है ये अभी भी कर रहे हैं। और इन्होंने इस रीसेंट एपिसोड में इन डेप्थ बातें जो है ये की है। न्यूजीलैंड में इनका एक ऐसा कह सकते हैं कन्वर्जन थेरेपी ग्रुप इन्होंने शुरू किया, विच वॉज बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर सक्सेसफुली इसे ये 5 सालों से चला रहे हैं, दैट बैंड द कन्वर्जन थेरेपी इन 2025। 2023 में इन्हें यंग न्यूजीलैंडर का खिताब जो है ये भी दिया गया था। तो शनील जिनके ओर से आप और भी डिटेल्स जो है ये सुन सकते हैं अबाउट द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इन इन हु आर पार्ट ऑफ द LGBTQ+ कम्युनिटी और क्या कुछ सिचुएशंस वो फेस करते हैं ये भी इस पॉडकास्ट में आप ज़रूर सुन सकते हैं।

0: accurate traffic.
1: Wardrobes Direct, great value wardrobes.
2: A fine day, but staying chilly, a high of 14 degrees. Into the city, we are easing nicely. Northern 25 minutes in from Constellation Drive. A little slow around Silverdale and slow gravel to the bridge. A little bit heavy at times, but nothing major. Northwestern 40 minutes in from Massey. We're slow from Massey, heavy on and off. Southern 42 in from Manukau. Patchy up to Manukau. Slow from Otahu, heavy most of the way.
1: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
3: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
5: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply.
7: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured up front, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
8: Good morning, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
9: हम News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A Russian man has been arrested in the country's Far East on charges of spying for the New Zealand government. The Moscow Times reports the 55-year-old was gathering and sharing information on the Kremlin's military cooperation with countries in Asia Pacific. He's been charged with treason and could face life in prison. One person has been critically injured in a house fire in Hamilton this morning. The blaze broke out on Karen Crescent around 6. A second person was also injured. TikTok has been dubbed an integral part of New Zealand's business landscape. Infometrics research found more than 360,000 Kiwi users visit a cafe or restaurant after spotting it on the site every month. Principal economist Brad Olson says this adds up.
11: And the median level of spending each month, according to TikTok users, was about $300.
10: President Emmanuel Macron has described the situation in Bordeaux as France's worst fire since World War II. The flames have stopped growing, but officials caution the battle has not been won yet. It is generating its own weather system, including thunderstorms and lightning. And hundreds of struggling families around the Wellington region will be adding venison to their meals. A group of hunters have donated 100 kgs of the high-quality mince to 6 food banks. To sport, a sensational swim by Lewis Clearbird at the Commonwealth Games in Glasgow. He's defended his title in the 200 metres butterfly, storming back from 7th place at the halfway stage to pip Australian Harrison Turner for gold on Sky Sport.
12: No words. I felt like I could run through a brick wall at the end of that race.
10: Meanwhile, New Zealand has also claimed another bronze in the women's 4x200 metres freestyle relay. It takes New Zealand's tally to 8 medals, 1 gold, 4 silver and 3 bronze.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi brand nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: अभी बारिश का मौसम है और बादलों का मौसम है, तो इस मौसम का आप अगर मज़ा ले सकते हैं ज़रूर लीजिए, बट तैयार भी रहिए। बिगड़ते मौसम के साथ साथ तबीयत भी बिगड़ जाती है, और ऐसा कुछ अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर लव्ड वंस। बट राइट नाउ आज के मौसम के बारे में कहा जा रहा है, पार्टली क्लाउडी विद आइसोलेटेड मॉर्निंग शावर्स, अराउंड मिड डे साफ मौसम का अनुमान है, 5:34 पर होगा सनसेट, ओवरनाइट टेम्परेचर 3 degrees एंड हाई ऑफ 13 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर।
9: With Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. What's going on? Kya bakte ho?
8: Are kehna kya chahte ho? आज की क्या बकते हो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये स्टोरी है अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द टेलीविजन हिस्ट्री, और कैसे जो नाम इतने सालों से इस्तेमाल करती आई हैं, दरअसल ये इनका सही नाम है ही नहीं, और इतने सालों बाद जाकर इसका खुलासा जो है ये हो रहा है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन ओप्रा विनफ्री, जो कि टेलीविजन की टाइटन मानी जाती हैं, और इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपना नाम जो है गलत नाम ये इस्तेमाल किया है। शी हैज़ होस्टेड वन ऑफ टेलीविजन मोस्ट फेमस टॉक शोज फॉर 25 years, और इन्होंने वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक क्लब्स तक चलाया हुआ है। वैसे अगर इनके बारे में बातें करें तो एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें सिर्फ अमेरिका में नहीं लेकिन दुनिया भर में जाना जाता है, और अगर हम इस बात को आप तक, मतलब इस बात को माने और आप तक पहुंचाए डिटेल्स, तो रिसेंटली ये बेबी दिस इज कीकी पामा पॉडकास्ट, जहां पर कीकी पामा जो है एक यू नो पॉडकास्ट होस्ट करती है, गेस्ट्स को बुलाकर उनसे बातें करती है, वहां पर ओप्रा गई हुई थी, और उस दौरान उनसे ये सवाल कीकी ने पूछा, दैट आई फाउंड आउट योर नेम इट वॉज ओरिजिनली ओरपा, यानी ORPAH, Not Oprah, which is OPRAH. जब उन्होंने ये पूछा तो उन्होंने पूछा ओप्रा से कि क्या आप इसके पीछे की कहानी जो है ये बता सकते हैं अपने अंदाज में। पहले ओप्रा जो है इन्होंने कुछ बिब्लिकल फिगर्स के बारे में बातें करनी शुरू की, और फिर उनके बारे में स्टोरी बताते बताते फिर ये पहुंची एट दिस सिचुएशन कि कैसे इनका जो नाम है ये ओरपा, यानी ORPAH रखा गया था, और बाद में चलकर क्या हुआ कि ये ओरपा से ओप्रा बन गई। वेल, अपेरेंटली इन्होंने कहा कि जहाँ ये पली बड़ी है वहाँ पर कोई भी इनका नाम सही तरीके से बोल नहीं पा रहा था, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, एंड अपेरेंटली इनके बर्थ सर्टिफिकेट पर तो ORPAH लिखा हुआ है इनके नाम के स्पेलिंग के लिए, लेकिन इसके इनके घर पर, इनके कम्युनिटी में सभी लोग इनको ओप्रा यानी कि OPRAH बुलाना इन्होंने शुरू कर दिया। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द लेटर पी बीइंग बिफोर द लेटर आर और आफ्टर द लेटर आर, और वंस सभी ने इनको ओप्रा कहना शुरू किया उनके लिए, इट वॉज दैट्स इट, दैट्स हाउ शी वॉज बींग कॉल्ड, ओप्रा ओप्रा ओप्रा।

मेरा नाम कुछ और है, बट आई यूज द नेम दैट माई पेरेंट्स गेव मी. लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इफ आई प्रोनाउंस इट इट्स समथिंग एल्स. एनीवेज, तो ये है आज की क्या बकते हो स्टोरी. इफ यू गॉट एनी सच थिंग टू शेयर अबाउट यू एज वेल, डू लेट मी नो 5599 पर अपने नाम के साथ आप मैसेजेस अपने सेंड कर सकते हैं.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में. सबसे पहले आपको याद दिला दे ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है इसी फ्राइडे को होगी 31 जुलाई 7:15 PM से IRST कम्युनिटी हॉल, जहां पर आप सभी 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी पहुंच सकते हैं इसका हिस्सा जो है बनने के लिए. दूसरी ओर श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहां पर होने वाला है अखंड रामायण पाठ सैटरडे 1st and Sunday 2nd of August को. सैटरडे 1st August को यहां पर सुबह 7 बजे से रोट पूजा के साथ प्रोग्राम शुरू होगा, जिसके बाद संडे 2nd of August को दिन में 10:30 बजे हवन और आरती के साथ प्रोग्राम की समाप्ति होगी. आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा है इसमें भाग लेने के लिए. रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स के लिए आप 09836 4647 पर कॉल कर सकते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आप तक लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला. अगर आपको यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह रखने हैं तो इसके लिए इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर कॉल कर सकते हैं. और राम लीला अ डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस 8 अगस्त को रहेगा. डिटेल्स हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करते रहेंगे. और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको आमंत्रित कर रहे हैं इनके 4th न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट के लिए 22nd and 23rd of August को बकनहेड स्काउट्स हॉल पर ये होने जा रहा है. सभी प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स आपको वेलकम किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारियों के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को आप 02109085067 पर कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपको याद दिला दें फ्राइडे 7 अगस्त को 7:30 PM से 9 PM तक न्यूलैंड कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल 45 टोटारा एवेन्यू न्यूलैंड पर होने जा रहा है भगवत गीता डीकोडेड. ये फ्री है आपके लिए अटेंड करने के लिए, बिल्कुल मुफ्त है. यहाँ पर ट्रेंड वेदांता टीचर जो है इनके द्वारा आपको भगवत गीता जो है ये सिखाई जाएगी. चिन्मय मिशन ये आप तक लेकर आ रहे हैं और अगर आपको इसका हिस्सा बनना है या किसी को आप इसका हिस्सा बनने का मौका देना चाहते हैं देन यू नीड टू रजिस्टर. रजिस्ट्रेशन के लिए www.chinmaya.org.nz जो है ये आप विजिट कर सकते हैं. वैसे साथ ही साथ आपको याद दिला दें मेघ उत्सव ये होने जा रहा है और ये खास तौर पर आपके लिए रहेगा 8 अगस्त को 4:30 PM to 8:30 PM माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल पर. इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू टू अटेंड. आप इसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं जहां पर बहुत सी चीज़ें जो है ये होने को है. इट्स अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया के जो मानसून फेस्टिवल का यहां ऑकलैंड में से मनाया जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस लाइवली कम्युनिटी इवेंट और इसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस के साथ, जिनमें ट्रेडिशनल इंडियन डांस और म्यूजिक तो रहेगा ही, अलग अलग तरह के ऑथेंटिक इंडियन खानों का मजा आप फूड स्टॉल से ले सकते हैं. बच्चों के लिए किड्स कोना है, गेम्स एंड एक्टिविटीज सभी उम्र के बच्चों के लिए या लोगों के लिए होगा और साथ में शॉपिंग एक्सपीरियंस भी आपको करने का मौका बिल्कुल मिलेगा. एब्सोल्युटली फ्री है टू अटेंड. सो रिमेंबर 8 अगस्त को 4:30 PM to 8:30 PM आप इसका हिस्सा बन सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए.
5: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
3: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
5: Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road!
4: In just 23 minutes.
5: Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
6: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
7: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
8: क्यों क्या हुआ
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट हाथ लगा तो हमने सोचा आपके साथ इसे शेयर कर ले, जहां पर कोल्ड स्नैप इसके बारे में बातें हो रही हैं इन न्यूजीलैंड. पर्टिकुलरली कोल्ड फ्रॉस्टी मॉर्निंग्स दे आर सेट टू कंटिन्यू अक्रॉस मच ऑफ न्यूजीलैंड, और ये फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक में आप फेस करेंगे बहुत सारे नॉर्थ आइलैंड लोकेशंस में, जहां पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स ऑफ द ईयर आप फेस करने वाले हैं. और अगर देखा जाए तो मंडे को मेरे ख्याल से हैमिल्टन में -2.8 डिग्रीज था, जबकि रोटरुआ में -3.9 डिग्रीज, टोपो फेस्ड -5.6 डिग्रीज, न्यू प्लिमथ में 0 डिग्रीज, एंड ऑफ कोर्स मास्टरटन में -4.4 डिग्रीज, लेविन में -2.6 डिग्रीज टेम्परेचर था, पोरीरुआ में -2.7 डिग्रीज, वेलिंगटन में 1.7 डिग्रीज, एंड क्राइस्टचर्च में -4.7 डिग्रीज जो है ये फेस किया गया. मेड सर्विस के मेट्रियोलॉजिस्ट है डेवलिन लेडन, इन्होंने कहा है कि ये जो कोल्ड स्टार्ट है इज बीइंग ड्रिवन बाय क्लियर स्काइज और लाइट विंड्स विद काम क्लियर नाइट्स. हीट जो है ये एस्केप होता है बहुत आसानी से इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स प्लमेट बिफोर सनराइज. और आपको ये भी हम याद दिला दें कि फ्रॉस्टी मॉर्निंग्स, जैसे कि हमने कहा, ये अभी से लेकर थर्सडे तक प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, और ओवरनाइट लो टेम्परेचर्स जो है दे बिकम लेस सीवियर लेटर दिस वीक. लेकिन अभी के लिए सुबह सुबह सर्दी का मौसम आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ ज़्यादा ही सर्दी का मौसम आप एक्सपीरियंस करेंगे. सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है. एक और एक चीज़ है जिसके लिए आपको एकदम तैयार रहना है, वो है सैटरडे 1st ऑफ अगस्त को होने वाला गरबा नाइट विद राज गरवी लाइव इन ऑकलैंड. आपको मिल रहा है मौका टू एक्सपीरियंस एन इनक्रेडिबल नाइट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड सेलिब्रेशन राज गरवी के साथ, और वाइब्रेंट गरबा एनर्जी. आप ज़रूर इसका हिस्सा बन सकते हैं, ऑल थैंक्स टू लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप, जो कि आपके लिए इस साल के वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशंस लेकर आ रहे हैं. सो अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं, ग्रैब कर लीजिए इन टिकट्स को eventstickets.co.nz. रिमेंबर eventstickets.co.nz आपको विजिट करना है और टिकट्स जो है अपने लिए ले लेना है. सैटरडे 1st अगस्त को महात्मा गांधी सेंटर में ये रहेगा. अगर आपको कोई अन्य डिटेल चाहिए इंक्वायरीज के लिए, स्वप्निल शाह से 02243947 पर आप जरूर बातें कर सकते हैं.
0: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आऊं.
4: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 104.2 FM या रोवा ऐप पर अगर आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. आई वॉज रीडिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपसे बातें करूँ. द गार्डियन जहाँ पर इन्होंने इसे रिपोर्ट किया है एंड अपेरेंटली कहा है कि स्वीडन ऑफिशियली स्क्रीन्स और टैबलेट्स को अब फिजिकल बुक्स के साथ यू नो स्विच कर रहे हैं ताकि हैंड राइटिंग स्किल्स पर काम किया जा सके, रीडिंग स्किल्स पर काम किया जा सके, बिकॉज उसमें एक गिरावट जो है ये देखी गई है. वंस एट द फोरफ्रंट ऑफ हाइपर डिजिटलाइजेशन लर्निंग, स्वीडन ने अब ये ड्रामेटिक टर्न लिया है बैक टू द बेसिक्स इन स्कूल क्लासरूम्स. कंसर्न की ओवर रेजिलियंस और डिजिटल टैबलेट्स और स्क्रीन्स जो है ये दरअसल बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके फाउंडेशनल राइटिंग स्किल्स और जो बेसिकली रीडिंग स्किल्स है उस पर बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है. स्वीडिश एजुकेशन ऑफिशियल्स ने हैवली इन्वेस्ट किया है इन ट्रेडिशनल प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स, और जो नेशनल स्ट्रेटेजी है वो है ये कि वो एम कर सके टू फेज आउट डिजिटल डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 पूरी तरह से, फॉलोइंग अ ड्रॉप इन इंटरनेशनल रीडिंग असेसमेंट स्कोर्स. सो लेट्स सी, मतलब इंटेंशन तो अच्छा ही है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या साबित होता है या ये इनके लिए काम करता है या नहीं, डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में पता चल ही जाएगा. जिस पर डिटेल्स अगर हमारे हाथ लगेंगे तो हम आपके साथ फॉर श्योर शेयर करेंगे. और फिलहाल के लिए कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज का डेली राउंड अप.

0: It's time to demand better. Shift4 delivers lightning-fast transactions and speedy settlements that actually make sense. No confusing financial jargon, just lower fees, quicker cash flow, and 24/7 local support. Shift4. Make the shift.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
4: What's going on?
5: आज का डेली राउंडअप जहां पर RNZ पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार कहा गया है डिफेंस पोस्ट जो है इन्हें एक्सप्लोसिव डिस्पोजेबल डिफेंस पोस्ट के एक्सप्लोसिव्स डिस्पोजेबल यूनिट ने अर्लियर दिस वीक एक डिस्कवरी की ऑफ ऑर्डिनेंस इन नॉर्थ ऑकलैंड और कहा है कि पुलिस ने ये जो रिपोर्ट है रिसीव की थी आई थिंक मंडे को अराउंड 9 AM जहां पर एक डिस्कवरी हुई थी एरावाइटी रोड में इन स्टिल वाटर और न्यूजीलैंड डिफेंस पोस्ट के एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल स्क्वाड्रन जो है इन्होंने इस पूरे मामले को अटेंड किया और फिर जो ऑर्डिनेंस है उन्हें डिस्पोज किया वैसे अर्लियर दिस मंथ भी ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर जो न्यूजीलैंड डिफेंस पोस्ट एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल टीम है उन्होंने और साथ में पुलिस ने मिलकर एक पीस ऑफ मिलिट्री ऑर्डिनेंस जो है से डेटोनेट किया था विच वॉज फाउंड ऑन द शो लाइन ऑफ फॉरेवर बीच और पुलिस ने इस पूरे पैरामीटर को विच वॉज अराउंड अ डिवाइस इसे यू नो काफ़ी सिक्योर्ड रखा था एंड आफ्टर इट वॉज फाउंड ऑन द 14th of July और अगले दिन मेरे ख्याल से उसे डिटोनेट जो है ये किया गया था एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में सो ये अब इसी महीने दूसरी घटना है जो सामने आई है और इसे रिपोर्ट किया जा रहा है इसके अलावा कहा गया है कि सरकार जो है ये फिलहाल इनकार कर रही है टू रिलीज इंडिया माइग्रेशन डॉक्यूमेंट और इमिग्रेशन मिनिस्टर एरिका स्टेनफोर्ड जिन्होंने रिफ्यूज किया है टू रिलीज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट के लीडर विंस्टन पीटर्स ने प्रूव किया है दैट द गवर्नमेंट सीक्रेटली चेंज्ड इमिग्रेशन रूल्स एज पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि FTA जो उन्होंने इंडिया के साथ साइन किया है एरिका स्टेनफोर्ड ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट इज बीइंग केप्ट सीक्रेट बिकॉज इट कंटेन्स कॉन्फिडेंशियल एडवाइस जो दिया गया था टू मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स शी बिलीव्स देयर इज नॉट इनफ पब्लिक इंटरेस्ट टू जस्टिफाई रिलीजिंग इट RNZ की इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि क्यू विंस्टन पीटर्स इस बात को लेकर अपसेट है क्योंकि इनका कहना है कि द इमिग्रेशन इज पार्ट ऑफ ही हैज बीन अगेंस्ट द इमिग्रेशन बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडिया ट्रेड डील फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और वो मानते हैं कि ये जो चेंजेस है कुड मेक इट मच ईजियर फॉर इंडियंस टू कम टू न्यूजीलैंड फॉर वर्क विच ही सेज कुड रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यूजीलैंडर्स उनके डेप्यूटी शेन जोन्स ने कहा है कि वो भी इस डील को क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिस्क्राइबिंग इट एज पॉसिबल जो उन्होंने कमेंट्स किए थे अबाउट द बटर चिकन सुनामी अ कमेंट मैनी पीपल कंसिडर्ड ऑफेंसिव और विंस्टन पीटर्स ने क्लेम किया है कि इन जून ही रेड पार्ट्स ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में एंड ही क्लेम्ड इट शोड दैट एरिका स्टेनफोर्ड अप्रूव्ड इमिग्रेशन चेंजेस दैट वुड फेवर इंडियन सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया था नॉट पब्लिकली अनाउंसिंग चेंजेस बिकॉज दे वर वरीड अबाउट हाउ इंडिया वुड रिएक्ट सो इसका ये मतलब होता है दैट द गवर्नमेंट सेज कि ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले जो है और विंस्टन पीटर्स दे आर रॉन्ग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ स्प्रेडिंग मिसइंफॉर्मेशन टू विन वोट्स प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने भी कहा है कि विंस्टन पीटर्स क्लेम्स वर फॉल्स और उन्होंने नॉर्मल या फिर उन्होंने कहा है कि इट्स नॉर्मल फॉर इमिग्रेशन मिनिस्टर्स टू क्रिएट स्पेशल वीजा रूल्स एज पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स एरिका स्टेनफोर्ड ने ऐड किया है कि विंस्टन पीटर्स के कमेंट्स कुड डैमेज न्यूजीलैंड्स रिलेशनशिप विद इंडिया एंड दैट ही हैज ब्रोकन नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स बाय रिवीलिंग पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अब देखते हैं इससे आगे क्या कुछ इस मामले में सामने आता है, क्या डिटेल्स हमारे हाथ लगते हैं. और अपेरेंटली दिस आर्टिकल इज स्टिल अवेलेबल ऑन RNZ. इन डेप्थ आप जाकर जरूर ये चेकआउट कर सकते हैं, और जैसे कुछ और डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tubo ja, papi ho. Tubo ja.
0: Throwback.
2: थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए, आपके समय के लिए. देखते ही देखते अब आपसे इजाजत लेने का समय हुआ. अभी हम यहाँ से जाएंगे, तभी कशिका जी आएंगी आपका साथ देने के लिए माय टाइम में. इनका साथ जरूर दीजिएगा, सफर का मजा उठाइएगा. एंड आई नो यू नो आज का जो ये दिन है थोड़ा हैवी था, बट उम्मीद है कि आपने आज हमारे साथ प्रोग्राम इन्जॉय ज़रूर किया. एज सेड बिफोर, इफ देयर एनी फीडबैक्स डेफिनेटली फील फ्री टू शेयर विद मी ऑन poojakumar@mediaworks.co.nz. अपने ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं एंड आई लव टू हियर योर फीडबैक्स. पर फिलहाल के लिए वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच आज के हमारे ब्रेकफास्ट शो के सफर में आपके साथ के लिए. अब कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी. मौसम भी आए दिन बदलता रहता है, जैसे कि हमने प्रोग्राम में भी बताया कि बहुत सारे कोल्ड स्नैप्स जो है इस पूरे वीक आप फेस करेंगे. मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग इट विल बी वेरी कोल्ड. दैट्स व्हाई लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योर लव्ड वंस एंड ट्राई एंड स्टे एज वार्म एज पॉसिबल.

0: system.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. इसलिए कहना चाहती हूँ कि बाहर 7 डिग्री टेम्परेचर, पूछो मत. अभी मैं तो यही वंडर करती हूँ, जब पूजा और विजय आते हैं कि कड़कती हुई ठंड में तो क्या हाल होता होगा. आप सब जितने अर्ली बर्ड्स हैं, जितने लोग सुबह सुबह आप आ जाते हैं काम पे, हैट्स ऑफ टू यू. सचमुच भाई मैं काशिका आपका साथ निभाने के लिए आ गई हूँ. और ये देखो, देख कहाँ सकते हो आप, सो नहीं सकते हो. ओके, ये मैं हाथ अपने अच्छे से वार्म कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी वार्म आप तक मैं पहुँचा सकूँ. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मेरा आना मुमकिन हो जाता है. 10 से 12 बजे के बीच में आपके साथ मैं बैठती हूँ, बातें करती हूँ और फिर चली जाती हूँ अगले दिन की तैयारी करने के लिए. लेकिन ये थैंक यू सो मच आप सबका, जितने लोग मुझे इतने दिनों में अभी कम्युनिटी इवेंट्स में मिल रहे हैं और जितने लोग फीडबैक देते हैं, बात करते हैं, आके बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग. वैसे आप कहाँ से सुन रहे हैं? क्या आप हमें रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं या 702 AM? तो बिल्कुल नहीं है अभी. हाँ, 104.2 FM आदत होती ना 702 बोलने की, 104.2 FM के ज़रिए सुन रहे हैं. या फिर आप कहीं और सर्फ कर रहे हैं तो पलट जाओ, क्योंकि देखो आप अगर स्क्रॉल करके देखोगे तो हमारे डिफरेंट म्यूज़िक स्टेशंस आपको सुनाई देंगे और दिखाई देंगे हमारे रोवा ऐप के ज़रिए. चाहे वो हम रिवाइंड है, जूक बॉक्स है, फीजी भजन है, चढ़ती कला है, फीजी कीर्तन संग्रह है, या फिर राहत फ़तेह अली खान जी का एक अमेजिंग सा म्यूज़िक स्टेशन है. बातें जब हम कर ही रहे हैं कॉमनवेल्थ के बारे में, तो स्विम लुई क्लेबर्ट जो है, इन्होंने न्यूजीलैंड का पहला कॉमनवेल्थ का जो गोल्ड है वो जीत लिया है. एंड व्हाट अ मोमेंट इट इज, लेट्स ऑल सेलिब्रेट इट.
0: बचाओ क्या,
3: आवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक से थोड़ी देर में हमारा साथ निभाएंगे वहां के एक्सपर्ट. कोई सवाल 5599 पे टेक्स्ट करें.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट्स अड्डा में ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं फैशन की बातें कर रही हूँ, सब चीज़ों की बातें कर रही हूँ। एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब हम यू नो खूबसूरत लगने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने लगती हैं कि क्या ये इस्टेब्लिश्ड हैं, क्या ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फ़ीडबैक अच्छा है, क्या इनके जो यू नो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सब सही रहते हैं कि नहीं रहते। और ऐसे में एक बहुत ही खूब नाम जो है, अभी लगभग 30 साल हो गए इनको और मेरे साथ सुजय हो चुके हैं, जिन्हें डेफिनेटली मैं अब टेलीफोन लाइन पे लेना चाहती हूँ, फ्रॉम अवारा कॉस्मेटिक्स एंड लेज़र क्लिनिक्स। एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सुजय, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब लिसनर्स को, प्यार भरा नमस्कार आपको भी।
1: हाँ जी, थैंक यू, प्यार भरा नमस्कार आपका एक्सेप्टेड है। लेकिन एक बात बताइए, ये आपको 30 साल हो गए। अच्छा ठीक है, मैं तो ऐड मैंने ही किया है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट आया है, इन्होंने कहा है कि यू नो यू हैव अचीव 30 ईयर्स, बट आपके कस्टमर्स के लिए क्या आप कुछ स्पेशल ऑफर करोगे या कर रहे हैं?
2: Certainly, yes, yes. Why not? At the end of the day, customers are king. So certainly, we have come up with, maybe मैं आपको 3 specials देता हूँ, maybe in terms of different parts of the body. तो सबसे पहला is laser hair removal पे up to 50% off on all laser hair removal treatments. That's the first thing. Second is facial rejuvenation पे हमारा एक बहुत special offer चल रहा है, उसमें 2 चीजें हैं। The first is a Pico laser. So, अगर आप एक Pico laser treatment लेते हैं, तो the other one you get it for free. That is the first thing. Second is glutathione infusion. जैसे अगर आपको अपने face को brighter करना है, more radiant look देना है, powerful antioxidant support देना है, अपने immune system बढ़ाना है, skin को strengthen करना है, density बढ़ाना है, so then you can have glutathione infusion. उसपे भी you take buy one and you get another for free. So aapka laser hair removal ho gaya, aapka facial rejuvenation pe special hai, and the third is the icing on the cake is ki abhyanga massage, which is the whole body oil treatment ya oil massage. Normally 149, but then we are offering it for $69 for 1 hour massage. So ye 3 specials aapke paas hain aur aap bhatpur isse fayda utha sakte hain, कस्टमर्स दे सकते हैं, एंड न्यू कस्टमर्स आर ऑल्सो वेलकम। सर्टली जो ओल्ड कस्टमर्स हैं हमारे, जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनके लिए तो है ही है, बट न्यू कस्टमर्स आर ऑल्सो वेलकम।
1: ओके, तो इट्स हाउ मच फॉर द मसाज अदरवाइज एट योर क्लिनिक?
2: 149, बट वी हैव ड्रॉप डाउन इट टू 69, तो बहुत सुपर सुपर स्पेशल है, एंड रियली बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग बहुत इसको अच्छा, दे आर एबल टू टेक इट, या और जो हाँ जो मसाज करती हैं उनका फीडबैक भी बहुत गजब है, बहुत रियली बहुत गजब है।
1: क्या बात है, तो यहीं आना पड़ेगा।
2: मतलब ऑन द लाइटर नोट मैंने वो मसाज नहीं कराया है, बट क्लाइंट्स का फीडबैक सुनके मतलब क्या है, मुझे भी कराना चाहिए।
1: अच्छा, तो जस्ट अ क्वेश्चन, इस पे एक सवाल मेरा आएगा, तो इज दिस फॉर जस्ट फॉर फीमेल्स और इज दिस आल्सो फॉर मेल्स?
2: नहीं, मेल्स आल्सो कैन डू इट, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, बट देन majority of our clients are females, so yeah, so normally but it is for both, koi dikkat nahi.
1: And aapki clinic mein dono, matlab male and female dono ka treatment hota hai?
2: Yes, absolutely, 100%.
1: So just when we are talking, haan ji, sorry,
2: bolo.
1: Nahi, main ye keh rahi thi ki ye jo treatment wagera aap bata rahe the Pico, can it be done on men? Just a question.
2: Yes, we are just not a beauty. We approach a concern क्या है, problem क्या है, उससे we basically tailor out की क्या solution उसको हम दे सकते हैं. It is just not beauty. आप जैसे पीको क्यों लोग करते हैं, certainly rejuvenation तो करते हैं. अगर उनको कोई concern है, जैसे melasma है, scarring है, maybe wrinkles है, acne scars है, tattoo है, तो पीको हर एक चीज के लिए use होता है. तो अगर कोई problem है, कोई concern है, yes. Glutathione क्यों यूज होता है, क्योंकि लोगों को अगर अपना पिगमेंटेशन हटाना है, अनइवन स्किन टोन हटाना है, तो इफ देयर इज अ कंसर्न वी डू हैव अ सॉल्यूशन.
1: ओह परफेक्ट, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि अवारा कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक में बोथ मेल एंड फीमेल जो हैं या ये जा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. एंड द प्लेस टू गो वुड बी डेफिनेटली एट सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल लेवल 1, और साथ साथ ऑर्मिस्टन मॉल में भी आप पहुँच सकते हैं. आप avana.co.nz की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मिलेगा इन केस यू वांट टू रजिस्टर विद द ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा दे कैन ऑलवेज रिस्पॉन्ड बैक टू यू एंड द नंबर टू गिव अ कॉल वुड बी विच वन सुजय
2: 0800-128-821
1: is the toll free number बस इसे याद रखिएगा और पहुंच जाएगा अवाना थैंक यू सो मच एंड अगले हफ्ते तो आई होप वी हैव नीलू हु विल बी कमिंग बैक अपस्किल करके अपने आप को और भी ट्रीटमेंट्स के साथ शी विल बी बैक विल ट्राई एंड टॉक टू हर एज वेल सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे बाय बाय
2: थैंक यू बाय
0: माय टाइम विद कशिका
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में हैप्पी तो नहीं
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप west side है ना west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
5: क्या?
6: The cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere.
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m. Get 70% off selected stock at Spa World's clearance center sales event this Thursday to Sunday.
8: There's thousands off display models, scratch and dent, and end-of-line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first-come basis.
0: This Thursday to Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance center, 9 Sylvia Park Road.
9: Craving ho rahi hai. Us thick aur creamy dahi ki, jaise ghar par milti thi, to milvate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful. 100% vegetarian, gelatin and gluten-free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy tips बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
10: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience or aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
12: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the USA and Canada. Like Honolulu from $515 one way. LA and San Fran from $725 or Vancouver from $999. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent.
13: Mike here from Novus Glass. When this happens...
14: Novus!
13: Just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it? Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
15: Show us your crack.
16: Ah, Novus!

0: तो आज ऑफिस शाउटआउट में मेरे पास एक ऐसा नाम आया है जो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो नीरज, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं पुकीकोई से, थैंक यू सो मच। इट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस जब लोग कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हम शायद नहीं जा पाते लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच जाती है, और ऐसे में जब आवाज़ पहुँच जाती है तो बस बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप स्पेशली हमें टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं। वैसे एक बात बता देती हूँ, buzz@hamfm.com पे अगर आप हमें ईमेल करते हैं और आपका कोई कम्युनिटी इवेंट है तो हम डेफिनेटली आपकी आवाज़ बन सकते हैं, और अगर आपका इवेंट फ्री है तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा होता है। सो दिस गोज आउट टू यू स्पेशली।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: एक बात तो है कि मेडल टेबल जो है 2026 का अब अच्छा दिखने लगा है, जहां न्यूजीलैंड को एक गोल्ड मिला है, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले हैं, टोटल इज अप टू 10 एंड द टैली फॉर ऑस्ट्रेलिया इज 59, इंग्लैंड इज एट 32, कनाडा इज एट 21।
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: बेटर और लिव बेटर और बेटर लिविंग के लिए मुंबई में जो है अभी मैं कह सकती हूँ मेरे नेबर होने वाले हैं. ओके, क्योंकि जिस जगह ये रहने जा रहे हैं या जिस जगह इन्होंने अपार्टमेंट खरीदा है वो दरअसल बिल्कुल उसी एरिया में है जहाँ पर मैं रहती हूँ. अच्छा, व्हेन आई गो ऑन लेफ्ट ऑफ माय बिल्डिंग के कॉर्नर पे जाती हूँ तो वहाँ पर आई नो दैट सोनू निगम जी का बंगला है. एंड उसके अब ये कौन सी जगह है मुझे जाकर इस बारी गर्मियों की छुट्टियों में मैं जा रही हूँ. एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गो एंड हैव अ लुक के विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन्होंने ये पर्टिकुलर जो एक गोदरेज स्काई शोर जो प्रोजेक्ट है उसमें घर लिया है. ठीक है, अब ये अगर आपको याद है तो इस साल की शुरुआत में तबस्सुम जो इनका नाम है तो इन्होंने भी उसी जगह एक घर लिया था. उस समय उनका वो घर 10 करोड़ का पड़ रहा था लेकिन लुक्स लाइक जब इन्होंने अभी ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में घर लिया है दस 18.29 करोड़ का ये घर ये मुंबई के 7 बंगला वर्सोवा एरिया में है. और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ जो है ये ऑलरेडी एक बड़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी भी, मैं प्रीमियम में तो नहीं रहती हूँ लेकिन हाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड ही बॉलीवुड है. तो ये अगर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अफकोर्स वी दे आर नोन कि किस तरह से ये इंडिया में ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी मार्केट. अब प्रॉपर्टी मार्केट की जब मैं बात करती हूँ तो ये अफकोर्स अब तो नेबर हो रहे हैं हम लोग आपस में. अरे तुम्हारे घर में दही है, मेरे घर में दही का जामुन नहीं मिल रहा. ठीक है, अच्छा वो हो थोड़ा नमक ख़त्म हो गया. काश ऐसा हो जाए. अच्छा नहीं होगा ना ऐसा. ड्रीम करने में कुछ नहीं जाता, मैनिफेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, ऐसा होता है. और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है जब हम लोग नीचे सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई अपार्टमेंट में से जब हमारा एरिया है 7 बंगलोज में वहाँ पे हम सब्जियाँ खरीदने जाते हैं कोई ना कोई स्टार की गाड़ी होती है, कोई ना कोई ज़रूर नज़र आ जाता है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग एंड आई एम वेरी मच मैनिफेस्टिंग कि अनुष्का शर्मा किसी दिन सब्जी लेने के लिए विराट कोहली के साथ आ जाए. हाँ, ड्रीम कम ट्रू. लेकिन मैं तो ड्रीम ही कर रही हूँ क्योंकि ड्रीम इंटरप्रेट करना है मुझे भी आपका. तो 5599 पे आप ज़रूर टेक्स्ट करें. मेरा तो ये ड्रीम था कि भाई मैं किसी दिन ऐसे ही जब गर्मियों में जाऊं घर पर पहुंचूं फिर सब्जी लेने जाऊं तो ये तो मैं मैनिफेस्ट करने लग गई ना.
1: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की. बाली बुला रहा
2: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.

Chapter. Dream Diary. मैंने तो अपना ड्रीम बता दिया अब आपको, अपना ड्रीम सब्जी खरीदना है ना विद विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. बट ठीक है, आपका टेक्स्ट आया और आपने कहा कि एक आपने एम्बुलेंस जो है वो ड्रीम करी. और एम्बुलेंस जो होती है ये एक रिप्रेजेंट करता है जो फीलिंग्स होती हैं अबाउट अर्जेंट अटेंशन, या जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं और आपकी इंटरवीन करना चाहिए आपको उस जगह. अर्जेंट डिसीजन जहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं, कहीं आप कुछ किसी से डील कर रहे हैं, तो ये जो है एक क्विकर अर्जेंट एक्शन के लिए, एक क्राइसिस, एक इमरजेंसी, एक सीरियस सिचुएशन के रिस्पॉन्स के लिए एम्बुलेंस आपको शायद नज़र आती है. आपके जो थाट्स हैं इट्स अबाउट कि किस तरह से आप या तो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, या रेस्क्यू करना चाहते हैं किसी को जो एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हों. एंड द नीड इज़ टू एक्ट क्विकली. ये ड्रीम जो है एम्बुलेंस का, ये सिंबलाइज करता है रीअश्योरेंस, हेल्प और हीलिंग. किसी सिचुएशन की बात होती है जब तब

सो थ्रोबैक में मैं जिस गाने की तरफ आपको लेके चलती हूँ, ये फिल्म है तेरे मेरे सपने, जो कि ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक ऐसी फिल्म थी जो हिट हो गई थी, और उसके बाद तो फिर उन्होंने जो रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री। बट इस फिल्म से एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हमें मिला और वो नाम है अरशद वारसी, और गाने भी वाकई ही कमाल के थे। चलिए उन्हीं में से एक गाना अब आपको सुना रही हूँ।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो मौसम तो ठंडा है एंड इट इज गोइंग टू बी द हाइज ऑफ 13 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 3 एंड इट फील्स लाइक 10 डिग्रीज राइट नाउ 5:34 PM पर सनसेट बताया जा रहा है. फ्रॉस्टेड सुबह की शुरुआत हुई है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid-morning Maza.
0: Bajao kya?

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: तो जब बातें कर ही रहे हैं कि क्या खास हो रहा है, भाई मेरे पास बहुत कुछ खास है, लेकिन आप कुछ खास कर रहे हैं तो बताइएगा. ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि करण औजला आने वाले हैं और मेरे पास एक आइडिया है जहां पर मैं कह सकती हूं कि इसका डबल पास जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस सुनते रहना पड़ेगा हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. और मैं काशिक आपका साथ निभाने वाली हूँ 12 बजे तक.

ईट बेटर लिव बेटर. और एक बात तो है कि यू नो ये कोल्ड सोर्स जो होते हैं बहुत जल्दी और ये वापस लौट कर आ जाते हैं. बट डू यू थिंक दैट दे आर कंटेजियस और नॉट? अब ये कोल्ड सोर्स जो हैं आप नोटिस करते हैं एक ही जगह एक ही स्पॉट पर हमेशा आते हैं. दैट इज़ बिकॉज इट्स कॉज्ड बाय द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस HS.

0: वी अब ये बॉडी में रहते हैं फॉर द लाइफ. अब ये इनिशियल इन्फेक्शन होता है और ये वायरस जो है आपकी नर्व सेल्स के अंदर चुपचाप पड़ा रहता है, कभी कभी एक्टिवेट रीएक्टिवेट हो जाता है एट टाइम्स, और उसकी वजह से कोल्ड सोर का आउटब्रेक आना शुरू हो जाता है. कोल्ड सोर कॉमनली जो कॉज किया जाता है, इट कैन बी ट्रिगर्ड ड्यू टू वेरियस थिंग्स, जैसे कि स्ट्रेस है, इलनेस है, फटीग है, हार्मोनल चेंज है, आपका कुछ ट्रॉमा है, या बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर आपको हो रहा है. इसका कोई क्योर तो है नहीं, बट इज़ अ वे आप इसको इसके आउटब्रेक को कम कर सकते हैं और आपके सोर्स ज़्यादा जल्दी हील हो सकते हैं. ये कोल्ड सोर्स जो होते हैं दे आर कंटेजियस. पहले एक वार्निंग साइज देते हैं, थोड़ा टिंगलिंग या थोड़ा बर्निंग होता है. आज जब तक ये पूरी तरह से सोर नहीं हो जाता, अपनी स्किन को नॉर्मल नहीं लाता, तब तक ये टिंगलिंग फीलिंग आपको रहती ही रहती है. ये वायरस जो है ये स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में, जैसे कि इफ़ यू आर टचिंग ईच अदर्स लिप्स और किसिंग, या फिर कॉन्टैक्ट ऑफ माउथ, एक ही बॉटल से पानी पीना, कटलरी, लिप बाम, टावल्स, इस तरह की चीज़ें. और ये जो है ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, आप बच्चों को तो कम से कम किस मत कीजिएगा. एनीवन जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको, एंड यू हैव एन एक्टिव कोल्ड सोर, तो ये क्या होता है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बच्चे के लिए हो जाती है. इसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंटीवायरल क्रीम्स जो हैं आपको मिल जाती हैं और ये आपके वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोक सकती हैं. एक फार्मासिस्ट के पास अगर आप जाते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कंसल्टेशन के बिना, तो दे विल नॉट गाइड यू. बट इसकी कुछ टैबलेट्स होती हैं जो आप हेल्प कर सकते हैं. और ये जो कोल्ड सोर के पैचेस होते हैं ये हेल्प करते हैं हील करने में, एक बैरियर जो होता है वो क्रिएट करने में, ताकि ये और किसी तक ये स्प्रेड नहीं हो. और ये एक्सपीरियंस जो होता है, जो रिकरिंग कोल्ड सोर्स होते हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी स्ट्रेस मैनेज करके, आपकी नींद और आपकी जनरल हेल्थ, एंड SPF 50+ और लिप बाम जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, ये कंटिन्यूसली करते चले जाइए. इफ़ यू आर अनश्योर कि आप ये ठीक से नहीं कर पा रहे, माय रिकमेंडेशन इज़ प्लीज़ गो एंड सी द GP. 6 words स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट.
1: ड्राइविंग यू होम, The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Four Square. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
6: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event this Thursday to Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
7: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
6: There you have it, up to 70% off selected stock, and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event this Thursday to Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
8: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jaiku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jaiku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jaiku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.

0: Mike here from Novus Glass. When this happens,
1: Novus.
0: Just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
2: Show us your crack.
3: Novus.
4: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
5: एक बात तो है मेरी आज के सिक्स वर्ड थोड़ी स्टोरी जो लगता है इमोशनल सी हो गई है या मैं कह सकती हूँ प्यार भरी हो गई है. रीज़न इज़ दैट आपने जो मुझे लिख कर भेजा है एंड आपका नंबर है 2230. आपने लिख के भेजा है ही हेल्ड माई हैंड थ्रू एवरीथिंग. आई थिंक दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. इट्स अ लव स्टोरी अनटोल्ड और या एक लव स्टोरी बहुत ही खूबसूरत जो है. लेकिन एक स्टोरी आप भी क्रिएट कर सकते हैं एक एपिक अमेजिंग से इवेंट का हिस्सा बनने के लिए. करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड्स पाकरीना में 25 अगस्त के दिन लेकर आने वाले हैं और इनके स्पेशल गेस्ट हैं इकी, जो एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल नाइट आपके लिए दोनों मिलकर लेकर आ रहे हैं इनके इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के लिए. आपको क्या करना है, कितना कुछ आप करण औजला के बारे में जानते हैं. सो मेरा सिंपल क्वेश्चन होगा, आपको KA लिखना है, करण औजला शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, आंसर आपका है क्या करण औजला का रियल नेम करण औजला है, येस और नो. बस एज सिंपल एज दैट. मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूँगी. कितना इजी. अगर कल आपने माई टाइम सुना होगा तो आज आपको उसका आंसर मिल गया होगा. ठीक है, 25 अगस्त के दिन है और साथ साथ आप अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट टिकट्स एंड अबाउट द इवेंट जानना चाहते हैं hum.rowa.nz के ज़रिए आप डेफिनेटली क्लिक कर सकते हैं livenation.co.nz के ज़रिए भी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
4: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

लेकिन एक बात है कि जो एक फोर स्क्वायर है थेम्स में, उसके ओनर को एक फाइन हुआ है ऑफ 44,000, जहां दो माइग्रेंट वर्कर्स को 60,000 उन्होंने उनसे मांगे टू गेट अ जॉब. अब ये जो दो वर्कर्स थे हु पेड 60,000 ईच, अपनी फैमिली यू नो के टाइज के लिए, और साथ साथ ये सोल बिजनेस ओनर जो थे ये न्यूजीलैंड में आए, एंड उसके बाद जुलाई 2023 के आसपास ये पैसा यू नो इट वाज पेड इन इंडिया इन 7 इंस्टॉलमेंट्स. नाउ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी मेंबर जो हैं हेलन वैन रूटन, इन्होंने ऑर्डर किया, वो जो कंपनी है जिसका नाम है ए धारणी एंटरप्राइज लिमिटेड जो ट्रेड कर रहे हैं एज फोर स्क्वायर मार्टिना, दे आर सपोज टू पे अ पेनल्टी ऑफ 32,000 एंड सिंह को अ पेनल्टी ऑफ 12,000. और ये जो है इनको कहा जा रहा है कि ये इट्स नॉट राइट, क्योंकि ये मैंने सुना था बहुत पहले कि लोग पैसे देकर इमिग्रेशन करवाते हैं और फिर यू नो उनको फिर जॉब मिल जाती है यहाँ पे, ऑल दोज थिंग्स. अब यू नो दे आर सो वल्नरेबल पीपल जिनको ये वीज़ाज चाहिए होते हैं और वो नई कंट्री में आना भी चाहते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. और अब ये नाम मैंने जानबूझ के लिया है सो दैट यू नो आप लोग जब भी यू नो इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट करें, बताएं, हमें भी ज़रूर बताएं, एंड वी'd लाइक टू इन्फॉर्म दोज पीपल दैट ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं. आप शायद ये क्वाइटली कर रहे हैं, लेकिन हम तो बताएंगे ज़रूर कि आपने ये गलती क्यों की है.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: वैसे अद्भुत बात तो ये है कि मुझे आपके साथ शेयर करना है कि कैसे हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं, चीज़ों को जैसे जो बच जाता है उन्हें कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन इससे पहले आपको बता देती हूँ कि कमिंग अप नेक्स्ट इज़ 1st of August के दिन महात्मा गांधी सेंटर में अब ये होने वाला है अमेजिंग सा राज गढ़वी का सेलिब्रेशन विद सीइंग हिम लाइव ऑन द स्टेज. तो ये गरबा होगा, कुछ बहुत ज़बरदस्त. गरबे की रात में आप जा सकते हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता प्रांत, श्री ग्रुप आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. इवेंट्स टिकट्स .co.nz के जरिए आप टिकट्स खरीद सकते हैं. ज़्यादा कोई इंक्वायरी करनी है तो 022-439-4736 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

यू नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग घर में बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन आपको पता है अगर आप ब्रोकली लेकर आते हैं और ब्रोकली की जो स्टेम्स या डंडियाँ होती हैं ना, या जो कैरेट के टॉप्स होते हैं, इनको आप कभी मत छोड़ें. इनको छोड़े नहीं मतलब फेंके नहीं, क्योंकि इनको अगर आप ब्लेंड कर दें ऑलिव ऑयल, नट्स, लेमन और लहसुन के साथ, तो एक आपके लिए ज़ीरो वेस्ट पेस्टो तैयार हो जाता है. अरे इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है, मैंने कल ही ट्राई किया, तो ये ब्रोकली की जो स्टेम होती है उसके अंदर एक अलग सी फ्रेशनेस होती है. गाजर के जो टॉप का पार्ट होता है, यू नो जो उसका मुंह होता है या हेड होता है, वो उसको अगर आप ब्लेंड कर लें ऑलिव ऑयल, नट्स, लेमन और लहसुन के साथ, तो एक अच्छा सा आपके लिए पेस्टो बन जाता है. अब ये आप क्या कर सकते हैं, आई मीन यू कैन ट्राई इट ऑफ विद एनी काइंड ऑफ बिस्किट्स, हार्ड जो आपको ब्रेड्स मिलती हैं, आपको सेवर यू नो सेवर होते हैं आपके, या फिर आपको डिप्स के लिए जब इस्तेमाल करना होता है, सो दे वर्क लाइक अ मिरेकल. डू ट्राई इट आउट, इट रियली वर्क्स. मैंने तो किया है तो मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा चलता है. वैसे कम्युनिटी में क्या हो रहा है खास ज़रूर हमें बताएं. ऑकलैंड रामायण संस्था मासिक रामायण कथा जो है इसी फ्राइडे के दिन 7:15 बजे 53 स्किप्टन स्ट्रीट मांगरी में होने वाली है. इसके अलावा 1 और 2 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे से आपके लिए श्री राम मंदिर में सैटरडे को 7 बजे से पूजा शुरुआत होगी. 8:45 पे रामायण का अखंड पाठ शुरू होगा और संडे को सुबह 10 बजे ख़त्म किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए रामलीला लेकर आ रही है. मास्टर अशोक से संपर्क करें 021-179-5459 पे. और इसके साथ साथ मेघ उत्सव जो है, आप ये वाइब्रेंट जो है मॉनसून फेस्टिवल इन्जॉय कर सकते हैं, जहाँ कल्चरल परफॉर्मेंस, फूड स्टॉल्स हैं आपके लिए. 8 मई को माउंट अल्बर्ट वॉर मेमोरियल में 4:30 से 8:30 बजे होने वाला है. एंड दिस इज़ अ फ्री इवेंट, डेफिनेटली यहाँ पहुँच जाए. पिछली बार मैं गई थी, बहुत बहुत इन्जॉय भी किया था.

Throwback. तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार का शिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार। आपके दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए आ रहे हैं लंच बॉक्स में केतन, इनका साथ जरूर दीजिएगा। तो मैं अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। सो कीजिए स्वीकार का शिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार। आपसे मेरी मुलाकात होगी हम बार के दिन यानी कि बुधवार के दिन। So look after yourselves. This is Kashika signing off from the Ham Studios. Take care and stay warm.

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: हो गई इंतजार की।
2: डिब्बा खुल गया
3: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
4: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा, फिर यही तो होगा।
3: डिब्बा खुल गया।
4: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
7: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
10: At Bunnings,
11: there's some really easy things you can do to modernise your kitchen. You'll be surprised at how little it costs, and they just look amazing. Whether you own your own home or whether you're renting, rejuvenate your kitchen and make it look fabulous.
12: Get your kitchen sorted with a Practa trimmable utensil tray, only $15. A Mistral White cordless kettle, $19. And a very handy Caboodle spice tray, just $15.
11: Bunnings makes DIY easy.
13: Bunnings Warehouse.
11: Lowest prices are just the beginning.
14: टाइम हो चुके हैं दिन के ठीक 12।
15: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
16: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. More retailers are accepting buy now, pay later, but many still have mixed feelings about it. Retail NZ's latest survey found 47% of its members now offer the credit option. CEO Carolyn Young says while it's increasingly popular, the charge fees are much higher, so almost 38% think it isn't worth it.
17: It isn't making a difference in the size of the basket that people are purchasing.
16: A new online tool has been launched here to help people know if their water is fluoridated. The Fluoridation Dashboard brings together information from 67 councils. Canterbury University Associate Professor Tim Chambers says all users have to do is type in their address.
18: It'll tell you whether or not your water supply is fluoridated, and it will tell you what the fluoride levels are in those supplies and how they compare to other water supplies across the country.
16: And there's been a slight jump in the number of people employed in the past month. Stats NZ figures show filled jobs rose 0.1% in June to 2.35 million. Primary industry roles led the charge, increasing by 0.7%. In sport, a celebration of Kiwi golfer Ryan Fox winning the Open Championship Major is just getting underway in downtown Auckland. Thousands of fans set to pack out Takutai Square at Britomart to catch a glimpse of Fox and the Claret Jug.
19: It'll be really nice, and I'm also really glad that we've got the weather we've got for it. It will be pretty incredible. I have had a few people message me that I know really well that are making the effort to come out, which is really cool, so I'm looking forward to it.
16: Yeah, cool day but stunning across Auckland today. And Lewis Clairbert thinks his gold medal winning performance in the 200 metres butterfly at the Commonwealth Games earlier today was his best ever.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Droskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: वेदर के हाल चल जान लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है बाहर, काफी सनी है आज। थोड़ी आपको सदरली विंड्स मिल सकती है लाइट, बट यस 14 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 4 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। सनसेट होगा 5:34 पे।

0: जाओ क्या।
1: लहू लहान हुआ है फलक, ये कैसा लोहा पिघला है। एक सूरज डूब गया पीछे, एक सूरज सामने निकला है।